فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

وضرب

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमी यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101.
3: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: This is FM 101.

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। ए

0: पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ. AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन.
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101।
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above.

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शो कॉल्ड सिटी वाइब्स और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने, तमाम सराहने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। नौ बज के 42 मिनट हुए चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो हमारी टेलीफोन की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। इट मीन्स कि आज के दिन, ईद के पहले दिन, सुबह की इस पहर में भी बहुत सारे सुनने वाले अभी मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं, दिलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जनाब, अभी आपसे बात की जाएगी कुछ ही देर के बाद और आपसे पूछा जाएगा जो आपसे सवाल किए हैं। सो कोशिश मैं ये करूँगा कि उनको दोबारा से रिपीट कर दिया जाए। जब मैं बात कर लेता हूँ, आज सुबह एक्चुअली जब नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ मैं आ रहा था और मैंने देखा कि कुर्बानी जैसे अमूमन रस्मी तौर पे की जाती है हमारे लाहौर की, स्पेशली बात की जाए पाकिस्तान की जो इलाकों की बात की जाए, सो अच्छी बात है, खुले मैदान में की जाती है नमाज़। ईद की नमाज़ भी खुले मैदानों में पढ़ी जाती है। सो कुर्बानी जब हम खुले मैदान में या किसी जगह पर करते हैं, स्पेशली जब गली मोहल्ले में की जाती है, सो एक चीज़ का हम जो ख़्याल है ना वो नहीं रखते हैं, वो हम ख़्याल इस चीज़ का नहीं रखते कि हम सफाई सुथराई का, हाइजीन का, बेसिक हाइजीन का ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता। सो खून जो होता है, जो आलाइशें होती हैं जानवर की, वो हम ऐसे बेजा छोड़ देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आलूदगी फैलती है और वही आलूदगी मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो वजह बनती है। इसके साथ साथ कुछ वबाई अमराज फूटते हैं और यू नो कि स्मेल और इस तरह के और मामलात होते हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो कुर्बानी की जब बात की जाती है, कुछ ऐसे मजहबी फरीज़ों की बात की जाती है, अब जब अपने अकायद की बात की जाती है, तो हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान ना अपने अकीदे का, अपने मज़हब का, अपने नज़रिए का जो है ना एक एम्बेसडर होता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपने किसी भी अमल, किसी भी एक्ट के ज़रिए से कोशिश ये करें कि अपना कोई भी हम अमल करें ना, उसके ज़रिए से हम मस्बत पैगाम दें, हम कुछ ऐसा अच्छा पैगाम दें, कुछ ऐसा अच्छा करें कि लोग उसको सराहें, उसको चाहें और अप्रिशिएट करें। सो सफाई जो है, बिल्कुल इसके हवाले से कहा भी जाता है, सफाई हमारा जो है वो निस्फ ईमान है। तो इसके साथ साथ हमने ख्याल ये भी रखना होता है कि सफाई के साथ साथ हमने जो भी आलाइशें होती हैं, जो भी मामलात होते हैं, जब हुकूमत पंजाब की बात की जाती है, स्पेशली मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इनकी जानिब से खसूसी इकदाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये काम किया गया है कि रियासती तौर पर, सरकारी तौर पर जो हैं, जो आलाइशों को ठिकाने लगाने वाले जो बैग्स हैं ये फराहम किए जा रहे हैं। तकरीबन 15 लाख जो बैग हैं, मैं पढ़ा था आज, वो तकसीम किए जा चुके हैं और ऐसे ही ये जो मामला है ये सिलसिला जारी रहेगा। सो इसके अलावा भी जो सरकारी गाड़ियां हैं कूड़ा उठाने वाली, आलाइशों को ठिकाने लगाने वाली, ये भी अगर आप जो हेल्पलाइन है वो मैं जल्द आपको बताऊंगा, तो आप इस हवाले से सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। हम हमेशा इस वजह से भी गंदगी ऐसे ही अपने घर के बाहर या किसी खुले प्लाट में, किसी ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जिसने लेके जाना होगा खुद ही ले जाएगा। तो कोई भी गंदगी को हाथ नहीं लगाता है और क्या होता है नतीजतन कि वही गंदगी जो है, वही आलूदगी जो है, वो उन तमाम तर मसाइल का बन बनती है जिसकी वजह से हमारी जो नेकी है ना, जो नेकी हम रहमत की नीयत से करते हैं, कोई जहमत बन जाती है। तो हमेशा हमने कोशिश ये करनी है और स्पेशली ईद के हवाले से, इस कुर्बानी के फरीजे के हवाले से हमेशा हमने कोशिश ये करनी है, इन तीनों दिन के अय्याम में हमने ये देखना है कि हमारी वजह से, हमारी इस नेक अमल की वजह से, हमारे इस काम की वजह से, कुर्बानी की वजह से किसी के लिए भी कोई मसला ना बने, किसी भी तरह की जो आलूदगी है, जो पोल्यूशन है वो ना फैले। सो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो सरकारी हेल्पलाइन है इस हवाले से, आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से, हमने वहाँ पर रब्ता करना है। सो सुथरा पंजाब के हवाले से जब बात की जाती है, सो हमारे जितने भी रज़ाकार हैं,
तो इन तमाम की जो छुट्टियां हैं मैं पढ़ रहा था कि मंसूख की जा चुकी हैं, और खसूसी तौर पर इनको हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से गंदगी को जो है वो एक सही जगह पर जो है मुंतकिल करने के हवाले से इन्होंने बिल्कुल दिन रात एक करके काम करना है। और मैं रात को देख रहा था, सुबह देख रहा था कि किस तरह से डेडिकेशन के साथ ये तमाम जो रजाकार थे, तमाम जो वर्कर्स थे, सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से, लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। सो आप तमाम रजाकारों को, तमाम वर्कर्स को मेरी तरफ से, रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, FM 101 की तरफ से जो है सल्यूट है, सलाम है। सो ऐसे ही काम करते रहें, मेहनत करते रहें। सो बतौर शहरी आप तमाम सुनने वालों से मैं ये कहना चाहूँगा, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो रजाकार हैं, तमाम जो वर्कर्स हैं, इनके साथ आपने तआवुन करना है और इस तरह से गंदगी को नहीं फैलाना कि इनको समेटने में या उठाने में मुश्किल हो। सो बैग जो हैं वो आपको फराहम किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं। सो अगर नहीं भी हैं तो मैं आते हुए भी देख रहा था कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो हैं वो कैंप्स लग चुके हैं और वहाँ पर ये जो बैग्स हैं इनकी तस्वीर वहाँ पर जारी है, वहाँ पर आप ले सकते हैं, बिला मुआवजा ले सकते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो भी आपको हो सकता है कि वहीं पर मिल जाएंगे। तो इस हवाले से अगर आप कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, शिकायत का इंदराज करवाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने कोई गंदगी जो है, जो आलाइश आपके इलाके में, आपके घर के बाहर या कहीं पर फेंक दी है, सो आप सुथरा पंजाब की जो हेल्पलाइन है यहाँ पर रब्ता करके आप बिल्कुल जो है वो शिकायत फरमा सकते हैं और आपकी शिकायत का जो है इंशाल्लाह अजाला किया जाएगा। सो ये हिदायत, ये मामला जो थे वो बिल्कुल ज़रूरी थे। वेल हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। आपने मुझे ये बताना है कि क्या क्या आपने किया और क्या क्या प्लान्स हैं। और सबसे अहम सवाल मैंने जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि आप अपनी उम्र के किस हिस्से में पहुंच चुकी हैं, कि आप ईदी देने वालों में हैं या ईदी लेने वालों में हैं अभी तक। सो ये आपने मुझे बताना है, हमें जान के अच्छा लगेगा। वेल अभी हम बढ़ते हैं ट्रैक की जानिब और जैन जुहेब की आवाज़ शामिल कर लेते हैं, कहते हैं रांझे आवे। इसके बाद वापस आएंगे, बात कर लेंगे आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं। सो इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस आते हैं। इस ट्रैक के बाद आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।

0: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
1: शुक्रिया, आपने FM 101
0: किया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 140,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम न रहे। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आई हस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आंख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।

0: FM 101. Tune into the one above. One above.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: हर इंसान का हक है कि उसकी ज़िंदगी रोशनियों और उम्मीद से भरपूर हो। अपने इर्द गिर्द की दुनिया और इसकी रंगीनियों को देखने और महसूस करने में ही जिंदगी का लुत्फ है। अलशफा ट्रस्ट पिछले 34 साल से इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान के हर कोने में आँखों के मयारी इलाज की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल के क्याम का बुनियादी मकसद उन लोगों तक रसाई है जो इलाज का खर्च उठाने के मुतहम्मिल नहीं है। अपने ज़कात और अतियात अलशफा ट्रस्ट को दें और किसी की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने।
9: आप सुन रहे हैं FM 101।
8: क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1,40,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आंख का डॉक्टर मौजूद है। अलशिफा ट्रस्ट का बुनियादी मकसद इस कमी को पूरा करना और पाकिस्तान के हर कोने में आंखों के मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम करना है ताकि कोई आंख रोशनी से महरूम

0: हैं। अब हमारे अस्पताल गिलगित, हवेली लखा और खसूसन लाहौर में कायम होने जा रहे हैं। अलशिफा ट्रस्ट आय अस्पताल लाहौर के तवस्सुत से अब एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन बनाया जा सकेगा। इस मकसद में हमारा साथ दें और किसी की जिंदगी में रोशनी बिखेरने का वसीला बने ताकि हर आँख पुर उम्मीद और हर मुस्तकबिल रोशन हो।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: I love FM 101.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: You are listening FM 101. Tune into the one above.

ओके जनाब, एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अज़हा यानी कि बड़ी ईद की, ईद कुर्बान की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, वक्त हुआ चाहता है बल्कि होने वाला है आपसे इजाज़त चाहने का। तो एक और कॉलर हम शामिल कर लेते हैं और साथ ही साथ जनाब बिल्कुल एफ एम 101 की खसूसी नशरियात के हवाले से, ईद के पहले दिन के हवाले से, इस सिलसिले की पहली कड़ी यानी कि मेरा आपके साथ ये साथ बिल्कुल अपने इख्तिताम तक आन पहुंचा है और स्टूडियोज़ में बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं जो हैं वो मुझे आ रही हैं। बहुत अच्छी, ये कहने का मतलब ये कि वाइब मुझे नज़र आई है, महसूस हुई है। आज शीबा मलिक जो हैं वो स्टूडियोज में मौजूद हैं और मेरे बाद यानी कि राइट आफ्टर माय शो आपका साथ देंगी, बहुत सारी बातें करेंगी, हल्ला गुल्ला होगा, मस्ती होगी और आपकी ईद को मज़ीद खुशगवार मज़ेदार बनाने के हवाले से बातें की जाएंगी। वेल, मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त और ईद के हवाले से वही पैगाम जो कि मैंने पिछले साल भी कहा था, दिया था कि जानवर की कुर्बानी तो हम हर साल करते हैं, हर बड़ी ईद पे करते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम करते हैं, लेकिन इस बार इस बड़ी ईद पे, ईद कुर्बान पे हमने अपनी अपनी अनाओं की, अपने हसद की, तकब्बुर की, लालच की कुर्बानी जो है ना, अपने अंदर के बुरे इंसान की कुर्बानी हमने दे देनी है। ठीक है, इसी बात के साथ मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। जिंदगी ने साथ दिया, सांस ने वफा की, तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बानो मेहरबान।

0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
9: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। You're listening to FM 101, अबले बले ओशा ओशा।

FM Anuma. FM Anuma Radio Pakistan Lahore se janab mujhe kehte hain aapki RJ aapki host aapki Toshiba Malik aapke saath aur badi Eid ki badi khushiyan Eid Mubarak. बड़ी सारी खुशियाँ और जितना मर्जी हम लोग जो है ना कोशिश कर लें कि हमने जो है साफ सुथरा माहौल रखना है, पर नहीं, असी टीट हाँ, फुल ऑन टीट. और सीएम साहिबा ने इतनी ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं ना, एफर्ट्स की हुई हैं लाहौर को हम साफ रखेंगे. फ़ाइन तक भी कहे हुए हैं कि अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो क्या कुछ होगा, बट हम पाकिस्तानी जिंदाबाद, हम कहते हैं ठीक है, फ़ाइन नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, लाइक सीरियसली. एनीवेज, आई जस्ट होप एंड बिलीव आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे. और वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज फ्रॉम केंट टू हियर बहुत सारा सफ़र था और उस सफ़र में मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं. और पता नहीं क्यों दिखावा ही रह गया है. हम कुर्बानी अल्लाह की ज़ात के लिए करते हैं, रब की ज़ात के लिए करते हैं, और दिखावा बहुत ज़्यादा है. मतलब लोग लिटरली घर के दरवाज़े खोल खोल के गोश्त काट रहे हैं और प्रॉपरली जिसको दिखा रहे हैं कि हम काट रहे हैं, ठीक है, और रोला डाला हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है कि पता चले इधर गोश्त कट रहा है. क्या यार, लाइक सीरियसली, एहो जी कुर्बानी रब मुँह कहता है मैनू नहीं चाहिए. और फिर ऐसी ही सूरत में मैं ये कहती होती हूँ कि और रब जो है नीचे उतर के पाकिस्तानियों को बोले प्लीज ना करो, मैनू इंज नहीं चाहिए. एनीवेज, 11 बजे से 1 बजे तक मेरा आपका साथ रहने वाला है. ईद का पहला दिन है 27 मई 2026. आरजे शिबा मलिक आपके साथ, और ईद की धुआंधार जो है यहाँ पे सेलिब्रेशंस होंगी. और मुझसे पहले अभी मुस्तफ़ा जो है नेवी ब्लू कुर्ते के साथ यहाँ पे है. और आई होप ओपनिंग शो किया था आप लोगों ने, उसको भी इंजॉय किया होगा. और उसके बाद मैं फिर चल सो चल सिलसिला चलता ही रहेगा रात 2, 3, 4, 5 बजे तक. डबल 447 उन पे मैसेज करेंगे. फेसबुक हैंडल है facebook.com/FM101Lahore. लाहौर में नहीं है तो भी आप दुनिया के किसी भी कोने से लाहौर में शामिल हो सकते हैं, ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं. यू कैन फील एट होम, यू कैन फील एट लाहौर, यू कैन फील एट पाकिस्तान. And if you don't want to feel anything, just खलास सुकून से सो जाएं. कुछ लोगों का ये मशगला है कि उन्होंने कुर्बानी वाली ईद पे, मीठी ईद पे, बस उन्होंने सोना ही है. हाँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक टारगेट ज़्यादा होगा. जिधर कुर्बानी नहीं हो रही वो शॉपर लेके दूसरों के घरों में पहुँचेंगे पहुँचेंगे इकट्ठा करने के लिए. और एक चीज़ और भी है, जोक्स असाइड, कुर्बानी जो है इसलिए नहीं है, एक तो रब की ज़ात के लिए है और उन सारे हकदारों के लिए है जिन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. आपकी कुर्बानी का गोश्त उन घरों में जाना चाहिए, ना कि वापस आपके फ्रिज में आना चाहिए. और यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल उल्टा है. जब फ्रिज खुद माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है कि हुन मेरे अंदर गुंजाइश नहीं है, फिर आप लोग बाकियों में बांटना शुरू करते हो. तो ऐसी कुर्बानी आप सब लोगों को पता है, मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं, सारे लोग समझदार हैं. तो ऐसी कुर्बानी रब को बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो वापस पलट के आपके अपने घर में आ रही हो, घर से बाहर नहीं जा रही है, जो लोग डिज़र्व करते हैं उन तक नहीं जा रही है. तो वही बात जो मैं अक्सर कहती हूँ कि चलते फिरते हम बेज़मीर मुर्दा ज़मीर लोग हैं. चलो जी, शुरू करते हैं फिर शो. हियर वी गो. पीछे

बड़ी खुशियाँ और गीत खुशी दे गावा ईद मनावा सराइकी गाना है वो सामने मेरे खुद ही आ गया, मैंने कोई एफर्ट नहीं की, कभी कभी एफर्ट करनी नहीं पड़ती तो खुद ही चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह अगर आपके घर में गोश्त नहीं पहुँच रहा तो वेट करें, एफर्ट ना करें, आ जाएगा, पहुँच जाएगा। और हाँ, कुछ कुछ जगहों पर खुशबुएँ भी आ रही थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। वेल 50,000 जो है वो फाइन है, आप लोगों को बताते चले, अगर आपकी गली आपका मोहल्ला जो है वो गंदा है और किसी के घर के सामने लाइशें हैं, कचरा है, कुछ भी है, तो फाइन। अगर आपके घर के सामने कोई दूसरा भी रख के चला गया तो फाइन आपको लगेगा। बी केयरफुल, वॉच अराउंड एंड देखिए कि आसपास आपके क्या हो रहा है। और आपको पता है कि ड्रोन कैमरास के साथ भी प्रॉपर जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा इन सारी चीज़ों को। तो फॉर दैट यू नो एफर्ट जो है मरियम साहिबा ने बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट किया है, उसके लिए तो वी सल्यूट, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि बहुत अच्छा, सच में बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। उसके बावजूद भी अभी कुछ जगह हैं लगता है कि उनको फाइन लगेगा, तो उनको समझ आनी है कि नहीं भाई थोड़ा होश करें। हमारे साथ होता है ऐसे ही है, जब हमें फ़ाइन लग जाता है ना फिर हम हाई हाई करते हैं साथ, फ़ाइन पे करते हैं और फिर हमें चीज़ें स्मूथली करने की आदत हो जाती है। खैर, हियर वी गो विद दिस गीत खुशी देख।

हाई जी, 4471 पे मैसेजेस देख लेते हैं। हमें मैसेज किया है, ओके, कोई असरब है, उन्होंने मैसेज किया है कि ईद मुबारक जी आपको और आपकी सारी टीम को, आपको भी ईद मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे ईद वाले दिन एक तो शो सुनना और हमारे साथ रहना, फिर घर के भी सारे काम देख रहे हो ना, एंड स्पेशली ये वाली बकरा ईद जो है, कुर्बानी वाली ईद जो है, इस पर तो बहुत सारा काम होता है। अच्छा, वैसे मैं उन जियालों से, अगर तो आप भी अपने घर में इस तरह की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप गोश्त कसाई आपके घर में बैठा है, गोश्त काट रहा है और आप बाकायदा दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना सा पूछना चाह रही हूँ, ये आपकी क्या लॉजिक क्या है, मतलब क्या चीज़ है, क्या साइंस है ये आपकी? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई मी बस आउट ऑफ नो सेंस मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं जवाब चाहती हूँ कि ये क्या आप करना चाह रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, बस इतनी सी बात है मेरी कि मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा जी, आबिद हैं, ईद मुबारक पाकिस्तान, ओके जी, थैंक यू। फिर उसके बाद और कौन है, सलमा है, ओके जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं साथ हैं और जाइए, बहुत सारे लोगों ने तो कलेजियाँ बना के जो है वो नाश्ते भी कर लिए होंगे, है ना, दैट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ओके, हियर वी गो नाउ, गाना कौन सा मैंने निकाला था, अच्छा ईद के गाने कुछ इस दफ़ा ज़्यादा आए नहीं हैं, पुराने ही हमें ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ रहे हैं, ईद पे आके मिल जानी, अच्छा ओके, और नया गाना आया है अभी 16 घंटे पहले ही आया है अंजम मुख्तार का ऑफिशियल, ज़रा देखें तो सही कैसा है ये गाना। एंड प्लीज़, ये इसलिए नहीं लगा रही कि आप लोग उदास होते, अगर आपको कोई ईद मिलने नहीं आया तो मुंह चुक के थे उत्थे रोने पा दो, इसलिए नहीं ला रही मैं।

FM 101.2 पाकिस्तान लाहौर, आरजे शिबा मलिक आपके साथ। ईद स्पेशल इज गोइंग ऑन, आप लोग भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। अच्छा गाना है, ईद आई आसमानी मिल जानी, अच्छा गाना है। सराई के अच्छे गाने हैं और ये 16 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है। मुझे लगता है आज सारा दिन ये चलेगा और खूब चलेगा क्योंकि गाना अच्छा है। और हम आरजे, हमारे हाथ कोई गाना आ जाए तो बस फिर आ ही जाता है। ओके, हियर वी गो विद अनदर बीट। ओके,

0: In Hawaii, we have a term, kuleana.
1: Only dancing once.

Delicious, welcome back. Okay, Eid ki special transmission is going on from FM 101.2 Pakistan Lahore se. Aur aap log hamare saath hain aur Eid mana rahe hain aur hum puri bharpoor tarike se Eid mana rahe hain. Aur aap bhi hamare saath shamil hain. Facebook pe dekh lete hain kaun kaun dost hai, kaun kaun hai jo hai hamare saath shamil hua hai. So let's have a look on. Okay. गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इंतहाई गर्मी है. मतलब करम की दुआ है, मेहरबानी की दुआ है, या अल्लाह रहम कर दे. अच्छा, कुछ लोग साथ साथ ये भी दुआ कर रहे होंगे कि या अल्लाह रहम कर दे, बारिश भी हो दे, या अल्लाह गोश्त भी रहमत पा दे साढ़े घर. मुस्तफ़ा, तुमने कोई शॉपर वॉपर इकट्ठे किए हैं? नहीं. कह रहे नहीं. अच्छा, ओके. अच्छा, इस तरह की बड़ी वीडियोस और मीम्स वैसे आई हुई हैं. लोग कहते हैं हाँ हमारी फुल तैयारी हो गई है, फिर वो यू जेब से शॉपर निकाल रहे हैं. ऑलराइट जी, हमारे साथ है मुंडा सियालकोटी, वसीम अवान और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक. ओके जी, मोहम्मद शेर हैं, आपको भी ईद मुबारक. अकबर खान है कराची से, ईद मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद हफीज़, ईद मुबारक. फरहद मेमन, ओके, खताइयों के साथ. नहीं, खताई नहीं, ये क्या है, कोई पता नहीं, कोई स्वीट ही है, टेस्टी लग रही है. ओके, मिठाइयों के साथ. अच्छा, ये वैसे मीठी नहीं है, बकरा ईद है. इजाज़, आपको भी ईद मुबारक. थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल ऑफ़ यू. ईद वाले दिन ट्रांसमिशन में साथ होना, शो में साथ होना, ये बड़ी बात होती है कि आप लोग साथ साथ हमारे रहते हैं. क्योंकि घर में भी मसरूफियात होती हैं, उसके बाद आपने अपने फेवरेट आरजे का शो भी सुनना है, ट्रांसमिशन में साथ साथ भी रहना है, प्लस मैसेजेस भी करने हैं, लॉट मोर, यू नो, अच्छी खासी जॉब है ये. खैर, हियर वी गो विद दिस नाउ. क्योंकि ईद है तो इसी तरह की बीट्स चलेंगी. अगर आपके भी दिमाग में इस तरह की कोई है तो ज़रूर बताएं.

अरे 13 घंटे पहले आया है। अच्छा सराइकी आए हैं सारे गाने, तजम्मल का गाना आया है। ओके चलो ठीक है, प्ले करते हैं। वी गो विदेश। अच्छा आई वॉज ट्राइंग के गाना जो है वो लगाएं, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि गाना अभी नहीं लगाएंगे, बिकॉज 3 मिनट के बाद जो है न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद वापस आएंगे, फिर ये वाला गाना लगाएंगे। ईदाइयाँ ते सजन नहीं आए। ठीक है। अच्छा वैसे ऐसे क्यों कहते हैं, ये क्यों नहीं गाना बनाई, ईद आई मेरी शॉपिंग नहीं हुई, ईद आई बकरा नहीं आया, ईद आई है चूड़ियाँ नहीं आई, ईद आई है, फिर यही क्यों कहते रहते हैं यार सजन नहीं आया। मतलब कि ठीक है, और नहीं आया बस ठीक है, गोली मारो छोटो। हाँ तो और की रोना ही डाल के रख देते हैं। अच्छा आप लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं फेसबुक पे, और किस किस ने मैसेज किया, फिर उसके बाद जो है शामिल होंगे। न्यूज़ की तरफ जाएंगे। ईद स्पेशल इज़ गोइंग ऑन ट्रांसमिशन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, आरजे शिवा मलिक आपके साथ हैं, और आज का दिन जो है स्पेशल ईद ही है, सो दिस इज़ मोस्ट स्पेशल। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है, और ना ही मुझे किसी और स्पेशल चीज़ के बारे में बात करनी है। जैसे कल हज का दिन था तो उसी के बारे में हम लोग ने ज़्यादा बात की थी, सो आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। अच्छा ओके कौन है। अच्छा ओके राजा जुल्कुनैन के आनी ने कहा है कि मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ, ईद की मुबारक हो। वल जी बहुत शुक्रिया। इफ्तखार अहमद ने मैसेज किया है, तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। हाँ आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कौन है। अच्छा काइंडली 4471 पे मैसेज करते हैं, तो ये सस्पेंस वाले गेम ना किया करें, मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को भी पैसे अगर लगा रहे हैं, आपका मैसेज आपके नाम के साथ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, रादर कि आप सिर्फ एवं हवा में मैसेजेस जो हैं वो कर दें, और फिर आरजे कह जी फलाने मैसेज किया है, फलां किसने मैसेज किया है। तो ये कौन है। 2 मिनट रह गए, बल्कि 1 ही मिनट रह गए बाकी के मैसेजेस। खबर का भी मैसेज अभी आया, मैंने देखा है, जस्ट सॉ दैट कि ईद का मैसेज आया है। तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। इतना लंबा सॉन्ग, उफ मैं भी तंगी आ गई, मैंने बंद ही कर दिया है। सुपर शॉपर लेके कब आऊँ, शॉपर लेके कब आऊँ, आ जाओ पहुँचो, और तुम लोग पहुँचो उधर जाके गोश्त सारा इकट्ठा करो, फिर इधर आ जाते हैं हम लोग रेडियो के ग्राउंड में पार्टी शार्टी कर लेते हैं। चौधरी अल्ताफ, मैडम साहबा ईद मुबारक। वल जी आपको भी ईद मुबारक है, डिसनल मैडम साहबा, मैं ही कह दिता है थानू, मैं पैसे देने ने थोड़े। अच्छा जी तेरे सोने सोने मुखड़े तो बाय जाकिर का सॉन्ग। ओके ठीक है प्ले करते हैं, बट राइट नाउ वी गो फॉर न्यूज़।

us again. Assalamu alaikum and good afternoon all of you. FM 101.2 Pakistan Lahore se RJ Shiba Malik aapke saath. The Eid special transmission is going on. Tere sone sone mukhde te Zakir Ali ka bhi jo hai gana mil gaya hai aur Tajammal ka bhi gana hame mil gaya hai. Eida aayan te wohi hai jo ke nahi hua. अच्छा जी, फिर उसके बाद किस किस ने हमें ज्वाइन किया है, आप लोग फेसबुक पे हमारे साथ हैं, मैसेजेस आ रहे हैं धड़ाधड़. ओके दैट्स ग्रेट. ओके

गाइस लिसनर्स वेलकम बैक। ओके जी, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन इज गोइंग ऑन और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, ईद मुबारक आप सबको। और हमारे साथ साथ हैं बहुत सारे लोग। ओके, कुछ लोग जो नहीं आ सके। ईद मुबारक शिबा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं यार। बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ, हाज़िरी लगवाना ज़रूरी थी और तुम्हारी महफिल में भी आना ज़रूरी था। ओहो, केड़ी महफिल में लाइए। ओके, बतूल का मैसेज था। अच्छा जी, ज़रियोन ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शिबा, अल्लाह आपको सलामत रखे, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, एहतशाम ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक शिबा। हमारे मैसेजेस भी देख लें, आपकी महफिल में आ चुके हैं, आपके शो में भी आ चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा जी, मज़ेदार खानों की खुशबू है जो हैं वो हम तक आ रही हैं, लग रहा है ऑन द वे खाना है। शिबा सॉन्ग आपके लिए ओनली, विच सॉन्ग? आज ईद थी, कोई न्यू फ्रेश पिक लगानी थी पेज पे, आपने पिक लगा दे भाई। ये मुझे मुस्तफ़ा भी बोल रहा था कि आपने नई पिक्चर लगानी थी, मैंने बोला पिक्चर अभी ली नहीं है पर पिक्चर अब ले लेते हैं। ओके ठीक है, मतलब हद है यार, लगानी तो न्यू ही चाहिए थी मुझे, वैसे अभी लगाती हूँ, ठहरो, आज नई पिक्चर ही लगा के जाऊंगी। महरीन, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। कल कहाँ थी तुम, शो में नहीं आई हो, सब खैरियत थी? ओके, नसीर है हमारे साथ बलूचिस्तान से, आपको भी ईद मुबारक जी। ओके, अच्छा ये वाला गाना मेरे लिए था, ठीक है। लो जी, फरहाद मेमन, ईद की वो देख लो, देखची में गोश्त डाल के वो भी पिक्चर अपलोड कर दी है, अल्लाह खरवे थे क्या नहीं। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे, ऐसे कौन करता है, नहीं कौन करता है ऐसे वैसे। मलकू का भी तो एक गाना था ईद का, मलकू के तो अक्सर गाने ईद पे आते हैं। हाँ ईद, हाँ है ना, 2 साल वाले का। ओके, ये 2 मंथ्स पहले आया है, इस ईद ते माइया, नहीं ये नहीं मैंने चलाना, ये सैड है लग रहा है। अच्छा ये वाला देखते हैं, तेरे तो बगैर क्या है। मलकू के भी वैसे ना इसी तरह के सारे गाने होते हैं, अंदरों अंदरी गाल लाई जा रहा वे। बदले लिए जा रहा है, कुछ ना कुछ बोली जा रहा है।

वेलकम बैक। ओके जी, सो हियर वी गो। बड़ी आशिक मिजाज इस गाने की भी अपनी वाइब्स हैं सीरियसली। ओके, अब ये वाली जो लिस्ट आ गई ना हमारे सामने गानों की, इसमें अच्छे अच्छे गाने भी हैं। तो बात वही है ना कि एक मैडम का अच्छा गाना लगा लो ना, तो फिर उसके बाद सारे अच्छे गाने ही आ रहे होते हैं। सिरदा सौदा, ओके चलो ये भी लगा लेंगे। अच्छा, आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू टेक लाइव कॉल्स, लेकिन फिर मैंने कहा अब आप लोग मैसेजेस पे भी आके यही कह रहे हैं ईद मुबारक, तो कॉल पे भी आपने यही कहना है ईद मुबारक। अच्छा ठीक है, ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक द लाइव कॉल्स लेकिन इस गाने के बाद। हाँ जी, पिक्चर अपडेट जो है वो मैंने कर दी है, और पिक्चर जो है वो अब लग गई है नई वाली। तो जिन लोगों को हो रहा था कि जी हम नई वाली पिक्चर लगाएं, लगा दी है। सो हैव वी गो विद दैट न्यू पिक्चर। ओके, बतूल ने मैसेज किया है, यार बहुत ज़्यादा सोचो, एक टांग किचन में है और एक शो में है, इमेजिन करो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। हाउ स्वीट, फॉर दैट ओनली आई कैन से दैट यार लॉट्स ऑफ लव। यही तो मैं एफर्ट है जिसका जिक्र कर रही हूँ। मैम जी आज सॉन्ग ज़्यादा और आप कम बोल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि गाने भी निकालने पड़ रहे हैं ना। अच्छा जी, फरहान इकबाल हैं, अस्सलाम वालेकुम, हिस्सा अपना अपना, इसने भी पिक्चर डाल दिया, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम फीलिंग ग्रेट एंड ईद मुबारक टू यू। कहीं आप मुझे ही याद तो नहीं कर रही कुछ देर पहले? हाँ हाँ, मैं सारे ऐसे लोगों को याद कर रही थी जो शो में नहीं आए हैं। ओके, खबर आज टाइम से आ गया है, ईद थी कोई न्यू, हाँ न्यू पिक्चर लग गई है। ऑलराइट ठीक है। जरियोन कह रहा है कि शिबा मैं कुकिंग वैसे अच्छी करता हूँ, आप शो के बाद आ जाइए खाना हमारी तरफ। ओ थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस दावत आम का, शुक्रिया। ओके,

ईद स्पेशल इज गोइंग ऑन नमा नमा बेली. अच्छा सराय की गाना है. ठीक है ओके. राइट सारा रोला ये भी हो गया था. सिरदा सौदा सीते माया पता नहीं ये कौन सा है. नहीं मैडम का गाना किधर चला गया है. उफ दिस सिस्टम. अच्छा जी अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं सो यू कैन कॉल और जो है शो में शामिल हो सकते हैं. 111-000-101 इज़ अ नंबर एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द शो. और ईद मुबारक वंस अगेन.

0: So, अभी अभी जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम वेरी डार्लिंग फ्रेंड. शी इज आस्किंग कि अच्छा कैसे तुझ तक गोश्त पहुंचाया जाए. मैंने कहा बस वो कहते हैं ना नियतें हो तो रास्ते बन ही जाते हैं. ओके मैं और मुस्तफा भी यही बातें कर रहे थे, हम हंस रहे थे इसी बात के ऊपर. अच्छा जी. ओके अखियां तेरी लाइव कॉल. अगर आप लोगों ने बात करनी है तो लाइव कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम.
1: कैसी है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रही, कहाँ से?
1: मैं विस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से. इतनी शिद्दत से आपको कॉल कर रही थी.
0: ओह माय गॉड, शिद्दत से कॉल की है तो कॉल मिल भी गई है.
1: मैंने कहा आपके दिल में क्या, अल्लाह रहम डाल ही देगी यार. कौन है कब से पागल की तरह कर रहा है, मैं उठा ही नहीं.
0: एक्चुअली गाना लगाया हुआ था तो गाने का भी मुझे बड़ा मजा आ रहा था. आई वाज लिटरली वाचिंग दैट. लेट मी पुट माय हार्ट ऑन योर हार्ट.
1: मैंने जिंदगी में पहली दफा कॉल की है.
0: ओह हाउ स्वीट, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया.
1: तो इसका कोई हल नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत है? वैसे ये नॉर्मल ही होता है ये एकदम से इतनी ज्यादा.
0: हाँ ऐसे होता है जब एक्साइटेड होते हैं ना हम तो एकदम हो जाता है ये.
1: अब आपने थोड़ी सी बात करनी है मेरे साथ.
0: तो मैं कर तो रही हूँ. कौन सी बात करनी है मैंने आपके साथ?
1: यही कि आप इतनी अच्छी लगती हैं और ये जो मेरी आवाज कांप रही है ना ये उसी वजह से हो रहा है.
0: अरे जस्ट काम डाउन, काम डाउन. ठीक है, डीप ब्रेथ. पानी पास है तो एक दो घूंट पानी के भी पी लो. अब ये बताओ कि क्या कर रही हो. ठीक है,
1: मैं आपका शो सुन रही थी और मुझे काम भी था सब कुछ छोड़ छाड़ के. कल मैंने कॉल इतनी की आपने नहीं पिक की, फिर वो कल
0: इसलिए ना मैंने बोला क्यों नहीं कॉल पिक की, तुम्हारी तस्वीर आ रही थी इसलिए मैंने.
1: तो ना मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको सुना था ना, फिर मैंने तब भी मतलब आपको सुना, मैंने कहा नहीं बस अब ये मेरी है और मैं इनकी.
0: ओह माय गॉड.
1: हाँ इतनी इतना चिल करती हैं और हमें भी करवाती हैं इतने, मतलब आवाज बहुत अच्छी है आपकी.
0: थैंक यू सो वेरी मच विस्मा. मुझे एक बात बताओ, झूठों का दिन तो नहीं है? एक बात बताओ, झूठ बोलने का दिन तो नहीं है?
1: नहीं मैं झूठ नहीं बोलती, ये खुशामद हो तो वो तारीफ में जमीन आसमान का फर्क.
0: अब तुम बताओ, तुम तारीफ कर रही हो खुशामद कर रही हो?
1: मैं तो तारीफ कर रही हूँ.
0: हाँ स्वीट, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही हूँ. मैंने कहा तुम्हें थोड़ा सा इजी कर दूँ क्योंकि तुम थोड़ी सी ज्यादा वो वार्म्ड हो रही थी, तो मैं तुम्हें इजी कर रही हूँ. ठीक है.
1: अच्छा, और मैंने पता नहीं कितनी बातें कर ली थी आपने कॉल की, वो एकदम फैसले वो हार्ट बीट तेज हुई.
0: अब मैंने कॉल ले ली तो अब तुम्हें बातें समझ में नहीं आ रही. नहीं लेती तो तुम परेशान हो रही थी.
1: नहीं आप ना कॉल लिया, आप बहुत गलत करती हैं, बहुत जुलम करती हैं ना आप.
0: नहीं मैंने कल कॉल्स ली थी, दो तीन हफ्तों के बाद कॉल्स ली थी. तो फेसबुक पे मैसेज कर दिया करो.
1: अच्छा हम गरीबों के पास नहीं है ना मोबाइल वो वाला.
0: ओह अच्छा चलो ठीक है. ओके अब मैं जो है कॉल लिया करूंगी. ठीक है.
1: हाँ मैंने आपसे बात करनी, अगर आप कॉल लेंगी तो मैं लगी रहूंगी, कॉल करती रहूंगी.
0: ठीक है ओके डन. बिस्मा की एक्सक्लूसिव फरमाइश पे हम कॉल लिया करेंगे.
1: हाँ जी ठीक है. आपका शो जो एक दिन ही होता है?
0: एक दिन ही हो रहा है. और एक दिन क्यों हो रहा है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हो जाएगा एक दो दिन तीन दिन, देखते हैं.
1: जो एफएम रेडियो 101 के जो मैम हैं ये सर हैं जो उनके हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कम से कम आपको तीन चार दिन तो दे भाई, या आप हमारे लिए आए.
0: अच्छा ये भी लकीली ऐसा हो गया कि मैंने कल भी शो किया, आज भी, और कल शाम को 5 बजे भी है मेरा शो.
1: कल शाम को 5 बजे?
0: हाँ
1: 5 to 7.
0: हाँ तो 5 to 7 भी है कल, तो ये तीनों दिन जो है मुलाकात होगी. कल तो तुमने नहीं सुना था?
1: नहीं कल मैंने सुना है तो बता रही.
0: तो कॉल्स तो मैंने ली थी ना, कॉल्स तो मैंने ली थी कल.
1: नहीं ना लगी, मुझे लगता था मेरी लगी भी नहीं कभी, फिर आज मैंने ट्राई किया. कल लड़कियां भी आई थी, एक लड़की नई आई थी आयशा.
0: दो लड़कियां नई आई थी कल. हाँ
1: हाँ तो मैंने भी तीसरी ने भी आना था.
0: तीसरी की बारी आज थी, तीसरी की बारी आज थी ना.
1: हाँ और आप तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब जाती है. मीन्स होता है ना एक इंसान होता है, देखो हम पहचान लेती है जो दिल होता है ना ये बस सच्ची गवाही देता है.
0: yes, दूर आप ये बस सच है. हाँ.
1: फिर भी जो है ना मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब जाती है.
0: थैंक यू सो वेरी मच डार्लिंग. थैंक यू.
1: पर कैसे मिल सकती हैं वो ना? अब एक बात बताऊं, सर डोक्स ने वो बताया था कि आपने अगर वो कमीशन
0: इंटर्नशिप अगर आप भी आरजे बनना
1: की
0: चाहते हैं।
1: है
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: मैंने सबमिट भी करवा दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम हो गए हैं
0: नंबर है,
1: सिलेक्ट कि नहीं?
0: नंबर है ना,
1: जी नंबर
0: तो
1: तो मैंने
0: बस फिर
1: दिए हैं,
0: तो बस जो
1: तो वो
0: दिए
1: कब
0: हैं
1: आएगा,
0: उन्हीं पे
1: कब
0: कॉल
1: डेट का?
0: आएगी।
1: दुआ करें मेरा मेरी सिलेक्शन हो जाए, फिर मैंने बस आपको ही मिलना आके पहले।
0: ओके, तुम वैसे भी मिलने आ सकती हो, कोई इशू नहीं है।
1: मतलब आपसे मिलने देंगे वो?
0: हाँ बिल्कुल, मुझसे मिलने देंगे, क्यों नहीं मिलने देंगे।
1: अच्छा चलिए ठीक है, मैं मामा से बोलूंगी, मुझे जाना है अपनी फेवरेट आरजे
0: ठीक
1: को
0: है,
1: लेने। बस
0: ओके। और ईद का
1: बहुत
0: दिन था,
1: शुक्रिया
0: अगर
1: सब
0: तुम आज ही आ
1: सुनने पर।
0: जाती तो तुम आज भी मिल सकती थी, क्योंकि ईद का दिन है और ऑब्वियसली पीपल कैन कम, लिसनर कैन कम, तो हो सकता था।
1: जी, आप
0: चलो।
1: डॉक्टर तो नहीं है?
0: नहीं,
1: मतलब आप ऐसे क्या करती हैं
0: मैं
1: ये
0: वैसे क्या
1: आरजे
0: करती हूँ, अब
1: की?
0: मैं बताती हूँ, हमारी हो रही है कॉल, लंबी बिस्मा, बहुत सारा प्यार,
1: एक
0: एंड
1: मिनट
0: वंस
1: एक
0: अगेन।
1: मिनट
0: ओ
1: एक
0: सुनो सुनो
1: मिनट
0: सुनो,
1: एक मिनट
0: लड़की
1: एक मिनट एक
0: तुमने ईद
1: मिनट
0: मुबारक नहीं कहा मुझे।
1: ईद मुबारक, वही आपने कहा था कि मैसेज में भी सब ईद मुबारक कहेंगे, कॉल्स में भी ईद मुबारक। मैं क्या कॉल्स लूँ, आप भी मेरी तरह ही है कि नहीं क्या बात करनी है कॉल्स पे, याद करो ना, ऐसे हो
0: नहीं,
1: थोड़ी ही
0: अब
1: है बस
0: देखो, तुमने
1: नो।
0: मैसेजेस नहीं किए तो तुम कॉल पे आई हो, तो तुमने तो कहना ही था ना।
1: नहीं, मैं पूरा बैलेंस खत्म कर देती हूँ, 100 रुपये तो बस मैसेज करने पे लग जाते। और आप वो एक आपने, मैंने पूछना था कि आपने ये कौन से रखे हुए लोग, एक ही इंसान वो बतूल आपकी है, वो एहतशाम पता नहीं क्या, इनके साथ ये बातें करती रहती हैं
0: ये
1: आपकी
0: इनके
1: होती
0: मैसेजेस आते
1: फोन
0: हैं, ये
1: पे।
0: मैसेजेस करते हैं, 4471 पे
1: तो आप
0: इनके
1: डबल फोन
0: मैसेजेस।
1: ट्रैवल तो मैं भी तो करती, तो आपने कभी भी मेरा
0: कहाँ है
1: नहीं
0: तुम्हारा
1: देखा।
0: मैसेज, किधर है?
1: आज मैंने नहीं किया तो आज आप घर कहाँ है?
0: नहीं आया मैसेज मुझे, जो
1: एक
0: 4471 पे
1: मिनट,
0: आते हैं वो सारे पढ़ते हैं हम।
1: आपका स्टार कौन सा? आपका स्टार पीसी तो नहीं है जो मेरा स्टार है?
0: टॉरस, टॉरस
1: तो यानी फेब में आप पैदा हुई है ना,
0: मई में, अभी
1: फरवरी
0: 9
1: में?
0: को मेरी बर्थडे गई है।
1: मुंह को ओहो, पता होता तो फिर कॉल तो आपने उठानी नहीं थी क्या, मिस कर दिया
0: क्यों
1: आपको?
0: नहीं थी उठानी? अब तुम्हारी तस्वीर थोड़ी आ रही है। नहीं बिस्मा, इंशाल्लाह हम फिर भी बात करेंगे, ठीक है,
1: इंशाल्लाह
0: और कल
1: ताला
0: भी
1: मैं
0: बात।
1: अपनी आवाज और तस्वीर के साथ होंगी एक दिन हाजिर, आपको मिलूंगी
0: इंशाल्लाह
1: जरूर,
0: इंशाल्लाह
1: जो मुझे अच्छे
0: इंशाल्लाह,
1: लगते हैं ना, मैं कहती हूँ उनसे जरूर मिलूंगा, पता नहीं क्या
0: ओके,
1: मेरे
0: अच्छी
1: दिल
0: बात
1: में
0: है।
1: है।
0: और जो दिल करे वो कर लेना चाहिए, अब जो है वो ऐसे नहीं करना
1: मैंने सुना
0: चाहिए।
1: आपकी एक बेटी भी है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अच्छा आपकी एक ही बच्ची है,
0: हाँ।
1: मतलब आपका एक ही बेटी है, मीन्स होते हैं ना बच्चे होते हैं
0: नहीं
1: एक
0: नहीं
1: टाइप
0: मेरी एक
1: के।
0: ही बेटी है।
1: अच्छा चले, अल्लाह ताला उसको नसीब अच्छे करे, उसे
0: आमीन।
1: कामयाब करे और आपको ऐसी खुश रखे, आप मुस्कुराती रहे और हम भी आपको देख कर सुनकर मुस्कुराते
0: आमीन
1: रहे।
0: सुमा, आमीन। थैंक
1: ईद
0: यू, अपना
1: मुबारक
0: बहुत ख्याल
1: सबको,
0: रखो, ईद
1: मेरे तरफ से ईद
0: मुबारक।
1: मुबारक, अल्लाह हाफिज।
0: हाफिज।

0: बिस्मा, बिस्मा की कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई है. नॉर्मली मेरी कॉल जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पहली दफ़ा कॉल की और लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, तो हमने कहा थोड़ा सा ईज कर देते हैं. और एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं ना कि आपने मेरी कॉल नहीं ली, अच्छा सीरियसली यहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर वाला नहीं है सिस्टम कि नहीं जिसकी वजह से कॉल ली जा सकती, तो अगर होता भी तो बिस्मा फिर भी मैं तुम्हारी कॉल ना लेती. ओके, तंग कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, बस की हाल है? देखो
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक. कौन गल कर रहे
1: हैं? मेरा नाम बशीर अहमद है, चुमिया मस्जिद निमको वाला गल कर रहे हैं.
0: अच्छा जी, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक.
1: खैर मुबारक, तुम्हें ईद मुबारक हो. शमसी ग्रुप वालों से गल कर रहे हैं.
0: अच्छा जी, चलो जी ठीक है. ओके, और की हो रहा है, सब ठीक ठाक?
1: हाँ जी, हम तो गर्मी है बाहर, हम तो लमका लम्बे सुते पे.
0: अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक है. ओके,
1: टोन किया तो ताड़ा प्रोग्राम चलान दिया थे. अब बाजी कॉल भी करा ना, बड़ी लंबी कॉल की थी बाजी ने.
0: पहली दफा कॉल की थी और फिर थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी, तो फिर तारुफ थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है. इस वजह से. और क्या मसरूफियात है, क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं हो रहा, बस गर्मी है.
0: चलो ठीक है जी, गर्मी जो तुसे सत्तू पियो, ठंडा पानी पियो, मौजा करो, ते रेस्ट करो. ओके, अल्लाह
1: हाफिज़.
0: हाय सत्तू से मुझे याद आ गया, मेरा अपना दिल कर रहा है. सुमेर ने मैसेज किया है, ईद मुबारक प्यारी लड़की, माशाल्लाह अच्छी लग रही हो. ओके थैंक यू, ईद मुबारक. शिबा कैसी हैं? सब दोस्तों को सलाम, ईद उल अदा मुबारक. आपको भी सबा ईद मुबारक. थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ईद विशेज, जो लोग कर रहे हैं मैसेजेस. लोशे मैम, शिबा जी सो प्रीटी, थैंक यू सो वेरी मच. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आई हेट दिस, वल्लाही आई हेट दिस. अच्छा जी, सारा रोला है अखियां दा है. ओके okay. अच्छा नदीम अब्बास के 4 से 5 ऐसे गाने हैं जो आंखों पे हैं, पता नहीं इनको किसी ने कह दिया है कि तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, या ये किसी की आंखों के पीछे पागल हो रखे हैं जो आंखों पे ही गाने बनाते चले जा रहे हैं. अच्छा गाना भी है, कॉल्स भी है, टाइम कम है सो ले लेते हैं कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी कौन?
2: जी मैं मोहम्मद आमिर, लाहौर.
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
2: बस जी दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह ताला करम. आप सुनाएं क्या हाल?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का.
2: आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक.
0: जी आपको भी ईद मुबारक,
2: क्योंकि बहुत देर से आप इस वक्त बैठी हुई हैं प्रोग्राम कर रहे हैं.
0: 11 बजे से
2: आपकी आवाज में क्या नाम है, बड़ी एक ताजगी और बहुत एक क्या उसको बोलते हैं, एक बड़ा ही एक अजीब सा पान है कि आप थकी नहीं है आप आवाज.
0: हाँ शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का. माशाल्लाह भी बोल देते होते हैं ऐसी बातों में ना, माशाल्लाह भी बोल देते होते हैं.
2: वो माशाल्लाह ऑलरेडी हो जाता है जब किसी की तारीफ करो, तो तारीफ जो होती है ना.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह बोलते हैं. बड़ी दफा ऐसे हुआ है कि मेरी तारीफ हुई, अगले दिन मेरा गला बंद हो जाता है, मेरे गला खराब हो जाता है.
2: इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कभी,
0: इंशाल्लाह.
2: हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गला खराब होना, क्योंकि इंसान के बस में नहीं है बीमार होना, हो जाता है.
0: ठीक है,
2: सही है ना. इसलिए और आप सुनाए क्या हाल है? माशाल्लाह गाने आपके अच्छे गाने थे. एक गाना जो मैंने वो 15-20 मिनट का, तो मैंने कहा यार ये कब खत्म होगा, अभी तक खत्म ही नहीं
0: हुआ. वो आरिफ लोहार वाला, मैं खुद तंग आ गई थी उससे, फिर मुझे बंद करना पड़ा. मैं क्या माफी दे दो, मैं ही ला बैठी हूँ गाना.
2: तो वही ना, तो इसलिए. अच्छा मैं, मेरी अगर छोटी सी फरमाइश पूरी कर दे, क्योंकि मैं एवर टाइम जो है ना, मेरा जो फेवरेट सिंगर है ना वो है अबरार उल हक. ठीक है, तो क्योंकि मैंने अबरार उल हक के शोज भी देखे हैं, और एक टाइम था जब उसकी हर किस
0: अबरार का गाना कौन सा,
2: कोई भी जो सब एवर टाइम जो है ना, मेरा जो फेवरेट सिंगर है ना वो है अबरार उल हक. ठीक है, तो क्योंकि मैंने अबरार उल हक के शोज भी देखे हैं, और एक

दैट्स इट फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही. अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी टुमारो कल शाम को 5 बजे. सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए. अभी कोई और आ जाएंगे. ईद की सेलिब्रेशन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान से जारी हो सारी है रात गए तक. एंड वंस अगेन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ शिबा मलिक की तरफ से. ईद उल अज़हा वंस अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो. प्रोग्राम का लास्ट एक डेडिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू. समवन अभी दुआ में रहे थे, उन्होंने फरमाइश की थी. सो हियर वी गो. So, leaving you with this, take care, Allah Hafiz and hats of lads.

अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। सारे ब्राह्मणों, सारे यारों, सारे दिलदारों, सारे मन ठारा नू वड्डी ईद मुबारक। लो जी, जिथे जिथे मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो मेरी आवाज़ नू सुन रहा है, उसनू आखांगा ईद उल अज़हा मुबारक। और दुआ करांगा कि अल्लाह पाक तुहाडा हर दिहाड़ा ईद दे बराबर करे, ईद दे भरिया खुशियां दे भरिया बनावे। वैसे तो हर दिन ईद होंदा, जिस दिन बंदा कोई गुनाह ना करे, लेकिन अज एक खास दिन है। तो खास दिन की मुनासबत नाल अज तुहाडा मेरा साथ रहेगा पूरे 3 बजे तक। मैनू आख दे जे आरजे गुलाम अली जावेद। तुहानू की आखदे ने तुसी आप दसना है, तो तुहानू मैं दसदा जावां कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर दे स्टूडियो तो जिहड़ी आवाज़ सुन रहे हो, आवाज़ है गुलाम अली जावेद दी। अज का दिहाड़ा काफ़ी मसरूफ ते अच्छा खासा थकावट वाला दिहाड़ा होना, खवातीन वास्ते भी ते मर्दां वास्ते भी। तुहानू मैं सारयां नू पता है कि अज कुरबानी का दिन है, कुरबानी करनी है, गोश्त वंडना है, गोश्त पकावना है, गोश्त संभालना है। एक काम तो तुसां पहले कर लिया, मैनू पता है तुसां फ्रिज बड़ी चंगी तरह साफ कर लिया, ठीक करा लिया, खाली भी करा लिया, तो ठंडी पूरी कर लिया। अगली गल भला क्यों की है, तुम भी पता है तो मैं भी पता है। लो जी, इस ईद के दिहाड़े ते तुम बहुत सारिया मुबारक प्रोग्राम के आगाज के सुना भी एक सोहना जहा गीत ते बाकी गल्ला करदे आ तुहाडे नाल। इस तू बाद कॉल भी कर सकोगे, मैसेज भी कर सकोगे, ते नाल भला तुसीं की कर सकोगे, कमेंट भी कर सकोगे। तो सुनो जनाब, ईदा आईया ने और ईदा आईया दे नाल तुसा मेरे नाल रहना है।

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

लो जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। और आरजे गुलाम अली जावेद तुहाडे नाल है ईद स्पैशल प्रोग्राम दे नाल। और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तुहाडे वास्ते एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर दे स्टूडियो तो। ईद स्पैशल दे विच मैं तुहानू सारयां नू ईद मुबारक आखसां। ईद मुबारक दे नाल नाल ईद दे जिहड़े इस ईद दे जिहड़े तकाजे ने असां जरूर पूरे करने ने, तुहानू वी पता, मैनू वी पता, लेकिन नाल नाल मैं याद दहानी जिहड़ी उह करवाई जा सकां। तुसीं अगर प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहुंदे हो सकदे हो। और प्रोग्राम दे विच शामिल होण दा तरीका है कि तुसीं मैनूं कॉल करोगे, मेरा नंबर है 04221100101, इस पर कॉल करो या फिर मैसेज करो। और मैसेज करने का तरीका है कि तुसी मोबाइल की राइट ऑप्शन मैसेज दे विच जाना है, सब तो पहले डायल करना है 101 यानी 101 डायल करोगे, उस तो बाद की करना है, थोड़ा जी स्पेस देनी, मैसेज लिखना है, नाम लिखना है, तो सेंड करना 4471 यानी 4471। तो फेसबुक पर भी तुसी कमेंट्स करके दस सकते हो कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और मेरे प्रोग्राम दे विच शामिल ने फरी चुबुर जी, तू फरी भाई बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया फरी, तुसी प्रोग्राम में शामिल होए हो, अपनी चाहत मुहब्बत का इजहार किया, तो अल्लाह पाक तुम सलामत आबाद रखे। हूँ जनाब पूरे घंटे दे विच लाइव कॉल मैं लवांगा, अज ईद का दिहाड़ा, ईद वाले दिहाड़े तो फिर चलनी चाहिए ना, लाइव कॉल चलती रहेगी, नाल नाल तुहाडे नाल गपशप भी चलेगी, नाल गाने भी चलेंगे। और दसोगे तुसी कि ईद वाले दिन स्पैशल डिश कीड़ी बनाते हो, गोश्त तो हर कोई पकाता है, लेकिन गोश्त पकावण दे भी अपने टैक्टिक्स ने, वो जिहड़ियां डिशां ने अगे वो कई मजीद डिशां बन जांदियां ने, तुसां दसना कि शौक नाल कीड़ी पकाई जाती है या कीड़ी खाई जाती है, ये सानूं तुसी दसोगे। साडा नंबर है 04221100101, ते नाल फिर फेसबुक ते कमेंट कर देना या फिर 4471 ते मैसेज कर देना। तो इब्रारुल हक दा गीत सुना भी तुहाडे नामे करिए, ते बाकी गल्लां फिर इस तो बाद। और तुसी कॉल कर सकते हो, लाइव कॉल चलेगी तुहाडी, हुण ऑफ एयर कॉल नहीं होनी बल्कि लाइव कॉल होनी है, जिस दी भी मिली जदों भी मिली।

0: शुक्रिया, आपने FM 102। जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
7: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

लो जी अली अमन जा टकते ने, मैं क्यों ईद मनाऊं, वो लोग ही नहीं रहे जो ईद हुआ करते थे। हाय हाय हाय अली अमन की हो गया ईद वाले दिहाड़े एडा दुखी मैसेज, वो भी ईद वाले दिन इंज ना करो इंज ना करो। दिल मिले ना मिले मगर हाथ ज़रूर मिला लिया करो, आज ईद उल अज़ा का दिन है मेरे दोस्तों, अमीर गरीब सभी को दावत पर बुला लिया करो।

0: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, बिस्मिल्लाह,
1: क्या हाल चाल है?
0: ठीक ठाक। कौन है साडे नाल?
1: बखर दी आवाज है सर।
0: ओए इंशाल्लाह बख्त बुलंद होवी है।
1: आमीन आमीन।
0: क्या हाल है बे?
1: बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक। आई ते अगले ने लाया होना भाई, इतना जनाब बोटियां कट्टो आ छिलो है ना?
1: जी जी मन समझ नहीं है।
0: मैं क्या आई तक ना लाया होना कुर्बानी दे के, कुर्बानी करो, गोश्त बनाओ, बंडो।
1: सवेरे सवेरे वो सिलसिला होंगे।
0: अच्छा,
1: ते बस फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाते। कोई
0: की कुर्बानी की थी आज?
1: कुर्बानी बकरे दी।
0: आई थे रखो तो कले कले खा गए हो है?
1: सजी
0: बना
1: लो।
0: ठीक हो गया। तो ईद वाले दिन फेवरेट डिश केड़ी तैयार कर दे?
1: अच्छा, मैनू जी पसंद है ना जाती तौर पर इस तरह बनाई दी कि थोड़ा जहा ना पानी पा दें, फिर गोश्त पा के फिर थोड़ा जहा नमक पा दें, कड़ाई दी पकदा रहें, जो तैयार हो जाते बस होर मिसाला नहीं ऐड कर दे।
0: ठीक हो गया। अच्छा अज ना जरा इन्हों दसो साढ़े सुनने वाले कि जी बखर की मखसूस रोटी है वड्डी, वह कितना एक वड्डा साइज होंगे, किमें पकती, वह भी दसो ना लोगों को इनफॉर्मेशन हो जाए।
1: बिलकुल पतली रोटी होंगी खुशी और हर मौके बनती है, फिर इस छोटे पीस बना के अखबार पैक करके अपने मेहमान
0: रोटी
1: शौकिया तौर
0: शुगल 2.5-3 फुट तक भी ले जाने। जी जी जी बिल्कुल।
1: रूटीन ही तकरीबन
0: 2-1।

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: मेरा यार नहीं आया।
1: यार आप कोशिश करें कि गोश्त जो है ना वो देके आए यार को, तो हो सकता है वो आ जाए, उसको थोड़ा सा बताएं।
0: चलें हम यार को मना के भी लाते हैं और कोशिश करते हैं यार भी आ जाए। वेल मेरा यार तो आ गया, अरहम आ गया जी प्रोग्राम में, तो अरहम हम तो मिल हमने तो मिल लिया एक दूसरे को। चलें एंजॉय करें ये खूबसूरत गाना, मिलते हैं आपको इस गाने के बाद।

0: जब किसी
1: I love FM 101.
0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
8: Smile and dial 111 FM.

0: Welcome back once again, and you're listening to Radio Pakistan FM 101. I am your host and dost RJ Arambhat, और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हम हाजिर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे
1: अली रजा। राइट अवे जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है, ईद का पहला दिन है, ईद उल अज़हा आप मना रहे हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से मना रहे हैं। जब मैं घर से स्टूडियो की तरफ निकला तो लाहौर की सड़कों की जो सफाई है वो बड़ी बेहतरीन और बड़ा ज़बरदस्त एक इस दफ़ा देखने में आया। कहीं पे मुझे आलाइशें नज़र नहीं आईं, कहीं पे मुझे कुर्बानी जानवरों की खालें नज़र नहीं आई पड़ी हुई। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सफाई के जो सिस्टम है, सफाई का जो निज़ाम है, सुतरा पंजाब और LWMC ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से और हर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े आला अंदाज में उसको अपनाया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मैं लाहौर की सफाई आपने देखी? लाहौर
0: बिल्कुल
1: की
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ शहरियों ने भी, बल्कि अभी मैं आ रहा था तो नहर पे मैं देख रहा था बाकायदा तौर पे जो नौजवान थे, जो जितने भी लोग इंतज़ामिया के थे, वो बाकायदा तौर पे लोगों के साथ रुक रुक के गाड़ियों में उनको खालें दे रहे थे या जो भी चीज़ें मामला थे, और वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन ख़ास तौर पे मैं कोशिश ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अगर आप उनके लिए जा रहे हैं और वो आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, तो उनके लिए एक पानी की ठंडी बोतल,
1: हाँ,
0: क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर वो सिर्फ हमारे लिए एक्टिव
1: आपकी खिदमत में मसरूफ,
0: हमारी खिदमत में मसरूफ हैं, तो हम ऑल्टरनेटली उनके करें। और बिल्कुल, और ये सिर्फ इस साल नहीं बल्कि लास्ट ईयर भी आपके सामने था कि किस तरह जो थी मरियम नवाज साहिबा ने किस तरह के इकदाम किए, और वो अब नजर आ रही है। और ना सिर्फ पंजाब के लोग बल्कि पंजाब के बाहर के जो लोग हैं,
1: बिल्कुल
0: बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, वो भी मिसाल दे रहे हैं कि पंजाब में जो काम किए जा रहे हैं वो काबिले जो हैं तारीफ हैं।
1: जीरो 4221001 हमसे रबते का नंबर है। facebook.com/FM101 लाहौर का पेज हाजिर खिदमत है, पोस्ट अपलोड हो चुकी है। आज हमने अपनी ज़बरदस्ती पिक्चर बनवाई है रज़ा से और पिक्चर हमने अपलोड कर दी है ऑफिशियल फ़ैन पेज पर। आइए कमेंट करें, लाइक करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, और आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। और गाने आपके लिए बड़े ज़बरदस्त से हम चला रहे हैं, गानों को भी इंजॉय करें, हमारी बातों को भी इंजॉय करें। अच्छा, अगर हम ईद का पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ होता है,
0: बहुत ज़्यादा मसरूफ़।
1: आपने तो बताया कि आपने कुर्बानी आज नहीं की, कल करेंगे आप कुर्बानी।
0: बिल्कुल ऐसी है, मैंने तो अपना बता दिया, लेकिन आप बताएं ना, आपका कैसा रहा दिन, आपका जो है ससुराल डे, क्योंकि आप शादीशुदा भी हैं तो ईद पे अमूमन एक ससुराल डे भी होता है।
1: हाँ।
0: आज का दिन क्या मसरूफियात हैं और ससुराल डे कब है?
1: मैं सोच ही रहा था आप ये सवाल कब पूछेंगे। अच्छा, ससुराल डे जो है ना वो बड़ी ईद पे, वैसे तो दोनों ईदों पे दूसरे दिन ही होता है। पहले दिन की जो मसरूफियात है ना, आज की जो मेरी मसरूफियात रही वो सुबह उठ के सबसे पहले तो ईद की नमाज़ अदा करने के लिए गए, और घर वापस आए तो फिर अपने खूबसूरत और कीमती जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा ख्याल है कोई हमारे जब से हम कुर्बानी कर रहे हैं ये हिस्ट्री में को पहली ऐसी ईद थी कि हमने बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम फ्री हो गए।
0: अच्छा।
1: आप अंदाजा करें कि हम 8:30 बजे बिल्कुल फ्री थे।
0: हैं?
1: हाँ जी।
0: ये कौन सा कसाई था?
1: ये कसाई बहुत आला था।
0: अच्छा। उसको भी लग रहा है आपने पहली सेटलमेंट कर ली थी ईद से पहले।
1: अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको, आधा कसाई मैं था।
0: अच्छा।
1: आधा काम मैंने किया, आधा उसने किया।
0: वैसे इस ईद पे तो जो घर के मर्द हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बच्चे नौजवान हैं, वही होते हैं कसाई, कसाईयों के।
1: यकीन करें कि बहुत मजा आता है अगर आप खुद अपने हाथ से अपने जानवर को कुर्बान करें और उसका गोश्त बनाएं और अपनी मर्जी का गोश्त बनाएं, जिस तरह आप अच्छा गोश्त बनवाना चाहते हैं, ना कि उसकी जो बोटियां हैं उसको खराब किया जाए। कुछ मिक वाली बोटियां भी होती हैं, उसमें से मिक निकल जाती है जब सही कसाई ना आपको मिले, तो ये सारे सीन होते हैं। तो मेरी तो कोशिश रहती है कि अपने बिल्कुल खुद बनाऊं, और जो भी कसाई या जो भी मेरे साथ हेल्पर होते हैं कोशिश रहती है उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखूं कि यार क्या कर रहे हैं।
0: अच्छा, अमूमन होता ही है ना कि जब कसाई बना रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि घी वाला गोश्त अच्छा है ना, जरा ये जो पुट की बोटी है,
1: हाँ,
0: या ये जो चांपे हैं ये साड़ू फिर दे दो।
1: हाँ।
0: ये वाला सा, तो ये आपके साथ एक्सपीरियंस इस बार हुआ है?
1: अच्छा नहीं, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं वहाँ से उठता ही नहीं हूँ जब तक सारा गोश्त मैं बनवा ना लूँ। और जब मैं गोश्त बनवा लेता हूँ उसके बाद उसके सुनत तरीके के मुताबिक तीन हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अपना होता है, दूसरा हिस्सा करीबी रिश्तेदारों का होता है, और तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा और आपके हमसायों का। तो इस तरह से जो है वो तीन हिस्से किए और फौरी तौर पे मैंने पैकेट्स बनाए क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। और कुर्बानी तो आप कर लेते हैं, कोई 10 बजे फ्री होता है, कोई 12 बजे फ्री हो जाता है, कोई 3 बजे फ्री हो जाता है, लेकिन कुर्बानी करने के बाद गोश्त को संभालना, उसको बांटना, उसको तकसीम करना, उसको उन मुस्तहिक अफराद तक, लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात होती
0: ये
1: है।
0: ये बहुत बड़ा मरहला होता है, और इसके अंदर जो है फिर इस गर्मी में निकलना और फिर जाके दे के आना बहुत बड़ी बात है। और अब बात इसार और कुर्बानी की चली है, तो इसके साथ साथ ये भी कि कोशिश करें कि कुर्बानी के साथ साथ अपनी अना को भी कुर्बान करें,
1: अपनी अना को भी कुर्बान
0: करें, अपनी मैं को भी कुर्बान करें, और कोशिश करें कि लोगों के साथ घुल मिलें और अपने रिश्तेदारों से जाके बात करें, उनके साथ उनको बैठे टाइम दें। और अच्छा, आप ससुरालडी के बारे में कुछ कह रहे हैं?
1: अच्छा, वो कल होगा यार, वो कल होगा। अब आप पीछे ही पड़ गए हैं।
0: नहीं, मैं जाना चाह रहा हूँ जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाके कैसे आपको ट्रीटमेंट मिलती है ईद के दिन?
1: यार पता क्या बात है, ट्रीटमेंट जैसी भी मिले,
0: अच्छा,
1: एक म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है और एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, चाहे आप ससुराल में जा रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आपके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक इज्जत का रिश्ता होना चाहिए कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कि आप एक अलग अपने मिजाज में, अलग एटीट्यूड में अपने ससुराल या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और आपका एटीट्यूड ही मान नहीं है, आप कह रहे हैं कि मुझे तराजू में तोला जाए, मुझे एक बादशाह की कुर्सी पे बिठा दिया जाए, मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए, मुझे फलां प्लेट में खाना दिया जाए, मुझे फलां गिलास में खाना दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरा ख्याल है हमें रिश्तों से दूर भी कर देती हैं एक दूसरे के, वो जो फिर रिश्तों में जो एक रिस्पेक्ट का अंसर होता है ना, वो नहीं होता, फिर
0: नहीं होता,
1: वो एक डर का अंसर बन जाता है, और एक ऐसी बात वो होती है, ऐसा एक रिश्ता कायम हो जाता है आपका कि यार अगला बंदा कह रहा होता है कि यार ए कदो जाए ते कदो साड़ी जान छड़े। अच्छा, एक दफा ना पता क्या हुआ,
0: अच्छा,
1: मैंने ना किसी को गोश्त लेने के लिए आ जाते हैं, आपको पता है गरीब गुरबा,
0: बिल्कुल,
1: वो उनकी कोशिश होती है कि गोश्त, क्योंकि हम हमारी कोशिश होनी चाहिए वो हम तक ना पहुँचे, हम उन तक पहुँचे। अच्छा, एक दफ़ा ना बड़ा फ़नी सीन हुआ, एक भाई साहब आए तो मैंने उनको गोश्त दे दिया। अब जब मैंने उनको गोश्त दिया, वो कहते एक शॉपर भी दे दें।
0: अच्छा
1: अच्छा, मैंने शॉपर भी दे दिया, फिर कहते भाई नू डबल शॉपर कर दो, गोश्त बहुत ज़्यादा। मैं कह यार क्या हुआ, ठीक है, आपको पता है रश जब होता है फिर आप कहते हैं यार सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाए, मिल जाए। तो मैंने कहा यार क्या बात है, यार क्या बात की तुमने, आखिर करती हूँ। अच्छा, बातों का सिलसिले को थोड़ी सी ब्रेक ना लगा दें, गाना ना चला दें,
0: गाना प्ले कर दें,
1: हम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं यार,
0: हम अभी तो बोलना शुरू किया था। हाँ। तो देखे ना, वक्त का पता नहीं चल रहा, 5:00 तकरीबन कोई
1: 26 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल,
0: और आवाम जो है हमारे साथ जुड़ी है, और आप अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो 04211100101 आपके और हमारे रबते का नंबर है। लाइव कॉल्स इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और फैमिली पेज हमारा फेसबुक है, वहाँ पर जाके आप लोग अपने होने का एहसास दिलाएं। अगर आप अपने महबूब के बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं ईद के हवाले से, वो भी आप हमें बता सकते हैं, 44741 पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, अपने मैसेज बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे जाके 101L स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पैगाम और उसको भेज दें 44741 के ऊपर। और अब जो ट्रैक हम प्ले करने जा रहे हैं वो है
1: ये खूबसूरत गाना है, आई आई
0: आई आई,
1: इंजॉय करें खूबसूरत ट्रैक। ये गाना उन तमाम समातों की नज़र जो लाहौर में कहीं ना कहीं ड्राइव करते हुए, और लाहौर की जो आज की ड्राइव है इसको एंजॉय करते हुए, लाहौर की खाली सड़कों को एंजॉय करते हुए, ये गाना उन तमाम खूबसूरत से खामोश लिसनर्स के नाम।

0: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
1: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
2: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
3: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
4: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
5: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
6: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की और मेरे साथ साथ मौजूद हैं
1: आरजे अरहम बट एंड यू आर लिसनिंग टू ईच स्पेशल शो। और आप की जो ऑफर कॉल्स हैं वो आ रही हैं हमें गाहे बगाहे, और आप लोग जो हैं प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और अली भाई, लोग क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं?
0: वेल जी, हमें रिमशक की कॉल आई है और रिमशक कह रही है प्रोग्राम बहुत मज़े का है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं सारा दिन काम कर करके थक गई थी और अब मूड फ्रेश करने के लिए आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। सो रिमशा, सुनते रहिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का।
1: इसी के साथ साथ आप लोगों को हमारी बड़ी ईद पे एक अनाउंसमेंट भी है, जो कि पहले भी अनाउंसमेंट हमारे जितने भी आर्जेस हैं वो करते रहे गाए बगाए, लेकिन एक अगर आप ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं और आप अपनी बात के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो रेडियो पाकिस्तान FM 101 आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जो कि मिड ऑफ जून से शुरू होने जा रही है। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है हमारी जानिब से, और इसमें हमारे नामी ग्रामी ब्रॉडकास्टर्स जो हैं आप लोगों को ट्रेन भी करेंगे और बताएंगे कि अपनी बात कैसे कहनी है और एक ब्रॉडकास्टर कैसे बोलता है, उसकी सारी तरबियत जो है वो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म से दी जाएगी, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। जैसे कि इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा था ना कि लाहौर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्तनद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दो ही हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी और एक रेडियो पाकिस्तान, और उसी के सिलसिले को आगे लेके चल रही है रेडियो पाकिस्तान FM 101।
0: जी हाँ बिल्कुल, आरजे एंड ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है और इसमें जो उम्र की हद है वो 18 साल से 28 साल है और तालीम की जो हद है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सो आप ग्रैब करें ये खूबसूरती अपॉर्चुनिटी, और अगर आप आवाज़ की दुनिया में आना चाहते हैं और आवाज़ की दुनिया में अपना जादू जगाना चाहते हैं, FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के ऑफिशियल फैन पेज पे जाएं, वहाँ पोस्ट इस हवाले से अपलोडेड है, क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमारा जो उस इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उसके उस पर आप अप्लाई करें। ये बड़ी ज़बरदस्त अहम अपॉर्चुनिटी है नई आवाज़ों के लिए,
1: खास तौर पे जो स्टूडेंट्स मैथ्स मीडिया के स्टूडेंट हैं और उनको अभी आगे हॉलीडेज हो जाएंगी, जून जुलाई अगस्त तक उनको छुट्टियां होती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग जब फील्ड में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कैमरा शाये हैं, हमारे बात करने की के पास अल्फाज नहीं है, तो ये आप लोगों को एक प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फिर हम कहते हैं कि जी हमारे लिए कोई इदारा कुछ कर नहीं रहा, तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं तो हम इनको अवेल अच्छे तरीके से करें। और यकीन जाने कि जब से ये मैं बात अपने नहीं करा, लेकिन जब से रेडियो पाकिस्तान FM 101 की फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बनाऊँ, तब से सब कहते हैं कि जी आपके बोलने के तरीके में बहुत बेहतरी आई है, और रेडियो पाकिस्तान आपको ये चीज़ सिखाता है कि क्या नहीं कहना।
0: बिल्कुल,
1: ये तो सब सिखा देते हैं कि आपने क्या नहीं, कि आज के दौर
0: क्या कहना है,
1: बेतकल्लुफ हो जाते हैं, लेकिन मेज़बान की प्रॉपर एक तरबियत होती है, और ये अपॉर्चुनिटी नौजवानों को मैथ कम्युनिकेशन के खास तौर पे स्टूडेंट्स को अवेल करनी चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही, और मुझे अभी अभी वो एक मंजर याद आ रहा था जब मैं अपना शाम का प्रोग्राम कर रहा था और अरहम आप कहीं से चलते चलते स्टूडियोज में एंटर हुए और मैंने आपके चेहरे को देखा और मैंने कहा आप
1: और ये मेरे ख्याल से गालिबन
0: दो साल पुरानी बात है। और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने फिर आपको वेलकम कहा और आपने तब भी मेरे साथ कंबाइन शो किया था और हमें बहुत मज़ा आया था,
1: बहुत मज़ा आया अली भाई। जब देखें ईद पे जो है ना वो मज़ा ये आता है कि एक तो ईद का तो खुशी होती है, लेकिन ये कि आरजेस के साथ जब आप कंबाइन प्रोग्राम करते हैं
0: जी हाँ,
1: उसका जो लुत्फ़ है वो दोबारा हो जाता है, और फिर जो इंटरेक्शन होती हैं और जो बातें होती हैं वो जो है वो उसकी लीनी होती। अब मुझे ये भी बताएं कि एक बात कि आप जो हैं इतने स्मार्ट हो रहे हैं, और मतलब क्या फिटनेस का राज है, अभी मुझे तो इतने पहले से फिट लग रहे हैं, तो ये जरा सीक्रेट मेरे साथ भी शेयर करें। और इस ईद पे क्या खाएंगे गोश्त के, इस ईद पे अभी डाइटिंग चल रही है?
0: यार मेरी बात सुनो, आप मुझे रोस्ट कर रहे हो?
1: नहीं रोस्ट नहीं कर रहा, जो मैंने देखा है ये मैंने बड़े दिनों बाद देखा है तो शायद, लेकिन लग रहे हैं माशाल्लाह काफी फिट लग रहे हैं।
0: अच्छा मैं कहाँ से आपको फिट लग रहा हूँ?
1: पेट आपका कम हुआ पहले से?
0: अच्छा यार असल में टाइम जो है ना, इंसान के पास टाइम हो, वक्त हो, तो सब कुछ हो जाता है, और अगर आप फोकस रखें अपने किसी भी गोल पे तो आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। वेल मैंने पिछले कुछ दिनों से, एक महीना होने वाला है, मैंने इस चीज़ पे फोकस रखा हुआ है कि यार थोड़ी सी हम डाइट की तरफ भी जाते हैं, थोड़ी सी हम जिम भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी जाते हैं। रनिंग जो एक वक्त में मेरा बड़ा एक मेरा मशगला रही है और मुझे बड़ा शौक था रनिंग का, जॉगिंग का एक क्रेज था उस टाइम में। मैं बैडमिंटन खेलता था और बड़ी दूर दूर हम भाग के जाते थे कि यार आज मैच है फलां जगह पे, तो हम पैदल ही चले जाते थे। अब तो बाइक के बगैर हम किसी मार्केट में नहीं जाते करीबी, तो उस वक्त हम पैदल ही बहुत दूर दूर खेलने के लिए चले जाते थे। लेकिन जैसे ही बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, इंसान की जिंदगी जो है वो बदल के रह जाती है। कोशिश कर रहे हैं
1: और वो उसका असर जो है नजर आ रहा है। और बाज़ों का ऐसे भी होता है ना कि अभी आप ये ईद का त्यौहार है, ईद के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ना वो डिमांड करते हैं कि जी कलेजी बने, कुछ लोग कहते हैं कि पाए बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है भुना हुआ कीमा बनाओ, कुछ कहते हैं चांपे। तो ईद के ऊपर इस ईद पे डाइट करना जो है ना वो बड़ा
0: वो मुश्किल है बाकी बहुत मुश्किल है। और जैसे आपने बात की ना जो डिशेज आपने गिनवाई है, पहले तो ये बात है कि ये सारी डिशेज सुन के ना मुझे भूख लगती है, ठीक है और भूख शदीद किस्म की लग गई है। एक वो कहते हैं ना अचानक बिरयानी और अचानक भूख लग गई आज, ठीक है। तो
1: प्रोग्राम के बाद फिर बनाते हैं प्लान।
0: हाँ, अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि भूख तो लग गई है। और डिमांड्स भी होती हैं फिर बड़ी ईद पे ना कि फलां जो चांप की बोटी है ना वो उसकी वो बिरयानी में डालनी है, पुलाव में डालनी है, ठीक है ना। और जो पुट का गोश्त है ना वो भी मुझे बना के देना, उसका जबरदस्त सा ना थोड़ा। हाँ, फिर जो कीमा है, कीमे के जो कबाब बनते हैं, क्या बात, वो तो मेरे फेवरेट हैं। और कीमे का जो नान लगता है, ओए होए होए होए, व्हाट्सएप भूख की शिद्दत तो बढ़ रही है।
1: आप मेरे चेहरे पे देख नहीं रहे,
0: व्हाट्सएप आपके चेहरे पे बड़ी रूहानियत आ चुकी है। और ये जो डिमांड्स होती है ना, ये जो ख्वाहिशात होती हैं, ये बड़ी ईद पे हम करते हैं। और जब कुर्बानी करते हैं फिर हमारा फोकस होता है कि यार वो जो पाए है ना उनको जरा जल्दी से उसको बनवा लें और वो बनवा के रखें, और उसको जरा जिस दिन मौसम ज्यादा अच्छा हो ना, ज्यादा हसीन मौसम हो, उस हसीन मौसम का मजा और दुबाला करने के लिए वो फिर पाए बनाए जाते हैं। और सुबह का नाश्ता जो है ना वो पाए के साथ किया जाता है,
1: गरम गरम कुल्चा
0: साथ,
1: ऐसे डिबो के ये करके ये गया और पाए जो है खा रहा इंसान।
0: बिल्कुल। बट साहब एक टाइम में ना, बल्कि आप भी लोग करते हैं देहातों में, पाए पकाने के लिए एक स्पेशल किस्म की तैयारी की जाती है।
1: बिल्कुल ऐसी है।
0: और पाए पूरी रात
1: उसको गलाया जाता है।
0: हाँ, पूरी रात वो पकते हैं। खैर वो गल तो जाते हैं लेकिन वो एक हल्की आंच पे पकते रहते हैं, और वो जितना पकेंगे वो उतने ही ज्यादा लजीज बनेंगे,
1: और उसका जो शोरबा है ना सारी गेम उसकी।
0: बिल्कुल।
1: कुछ लोग ठीक है बनाते हैं, अच्छे पाए भी बनाते हैं, मगर आजकल जब मैंने पाए चखे, तीन गर्मी सर्दियों की बात है, वो शोरबे के अंदर वो जो एक जो पाए की जो लज्जत है ना वो मतलब वो
0: ओ कहते हैं लाल बोटी यार, लाल बोटी पाई नाल,
1: सुभान अल्लाह।
0: और खाद भी पा दे
1: सर मुझे,
0: ओ जी लोरी है उन्ने आ
1: लोरी है पाएं लोरी है ने लोरी।
0: अच्छा लाहौरी है वैसे जो है ना, अगर दिन में 1,000 रुपया कमाते हैं ना और वो 800 रुपया खाने पे लगा देते हैं। ये बात है बिल्कुल है। और ये बातें मैं किससे कर रहा हूँ, बट से कर रहा हूँ,
1: और वो बट जो खाने में।
0: हाँ बिल्कुल। चलें एक गाना भट साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो, अगर रोटी से ध्यान हट सके तो एक गाना चलाते हैं। और एक थोड़ा सा पुराना गाना है लेकिन एक मजे का गाना है, अली जफर की आवाज है, और एक टाइम में मेरा बड़ा फेवरेट गाना रहा है ये। ओ क्या कहने चाय भी आ चुकी है, ओहो चाय आ गई है, और चाय का जो खूबसूरत सा मग है वो उस मग से ज्यादा खूबसूरत मुझे चाय लाने वाला बंदा लग रहा है। चलें इस गाने को एंजॉय कीजिएगा, हम चाय को एंजॉय करते हैं। आप सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: Moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101.8 पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज है आरजे अली रजा की और मेरे साथ साथ मौजूद हैं आरजे अरहम बट।
2: यस आई एम हियर एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो हैं सुन रहे थे गाने और चाय को हम पी रहे थे, और अब हमारे साथ लाइव कॉलर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: कौन साहब, कहाँ से?
3: वाबडा कॉलोनी गुड्डू जिला कश्मोर से, मोहम्मद हनीफ शाह।
2: जी अनीफ साहब, क्या कहना चाहेंगे ईद मुबारक पहले तो आपको?
3: खैर मुबारक आपको और आपके तमाम सुनने वालों को और जितने आपके साथ मौजूद हैं सबको
1: खैर मुबारक। जी बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। हनीफ साहब, आपकी ईद कैसी गुजर रही है?
3: हमने तो सादगी से ईद गुजारी है। पहली ईद भी सादगी से गुजारी थी, ये ईद भी सादगी से मना रहे हैं।
1: अच्छा माशाल्लाह। और कुछ कहना है आपने ईद के मौके पे?
3: प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं यार, कुछ नेटवर्क का कुछ मसला हल करें। आपकी आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। पहले भी दो चार दिन लाहौर के अंदर ऐसे था, फिर हमने आरजे डाक से कंप्लेंट की थी, उसके बाद फिर सही था।
1: अच्छा,
3: अभी तीन चार दिन हो गए हैं, बिल्कुल आप लोगों की आवाज कम आ रही है हमारे।
1: कम आ रही है? कितनी कम है?
3: बहुत कम है।
1: हमें बताएं, हम और जोर से बोल लेते हैं।
2: हम जोर लगा के
1: आप बताइएगा, आप ठीक आ रही है?
3: नहीं, वहाँ से आपके बोलने का मसला नहीं है, यहाँ से कोई मतलब के आवाज का मसला है।
1: वो ना पता क्या, मैं बताता हूँ आपको, कोई तार हिली होगी, वो तार जोड़ते हैं फिर हम।
3: तार जोड़ें या कंप्यूटर की आवाज बढ़ाएं या कोई मसला है?
1: ये तार जो है, जब तक दिल की तार दिल से नहीं जुड़ेगी तब तक कैसे मसला हल होगा?
3: हाय हाय, दिल की तार मुश्किल से जुड़ती है।
1: लेकिन वही तो जोड़नी है आपने। हाँ, हमें भी तो पता चले कि हनीफ साहब ने कॉल की है।
3: देखिए हमने तार जोड़ी है तो कश्मीर से भागते भागते पहुंचे हैं ना।
2: बहुत शुक्रिया जी,
1: थैंक यू सो मच, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आपसे मोहब्बत करने लग गया हूँ आपसे।
3: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
1: खुश हैं अब आप?
3: मैं पहले भी खुश था।
1: अब अगर मैं खामोश भी रहूंगा तो आपको मेरी आवाज आती रहेगी।
2: दिल के जो रहते
1: हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। 04211100101 हमसे राब्ते का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु ते सब तो बंदे अब्दुल हमीद सुका बार वाले आलो सारे नु ईद मुबारक।
1: ओ सानू ते कह लो ईद मुबारक, असि फिर कॉल बंद कर दी यार। अरहम कॉल बंद करो, अरहम बटन दबा यार।
4: नाजला कदी नहीं बंद करनी, बट साहब ईद मुबारक अली नगर, ईद मुबारक भाई।
1: नहीं नहीं, हम ईद नु ईद मुबारक।
2: नहीं नहीं नहीं, तुहाडे बेलिया नु फरुखाबाद वाले सारे नु ईद मुबारक।
4: हां कहना क्या बात है,
1: खोर की हाल है, ठीक हो?
4: अल्लाह का बड़ा शुक्र। अनीफ शाह वेखन ना कितने तीसरे चौथे जिले च बैठा फेसबुक से सुनिया करे ना हमेशा एडी दूर से आवाज साढ़े तेन जा रही जमे साढ़े फरुखाबाद।
1: फरुखाबाद बैठे हैं, बर्फी वाली दुकान साड़ी है। हाँ क्या बात है, अज बर्फी बनाई कनी?
4: बड़ी बनाई।
1: चलो कोई किलो साडे लो खा लेना, पैसे भी साडे लो अपनी जेब च पा लेना। मैं फरुखाबाद एक दफा ही गया सा, वो भी मैं भूल के चला गया सा। मैं किते होर जाना सी, मैं फरुखाबाद पहुंच गया। और जब मैं फरुखाबाद पहुंचा तो मैंने बात सुने ना, मैं जब फरुखाबाद पहुंचा तो मैंने वहां से किसी से पूछा कि यार ये मैं कहां हूँ, तो बंदा कहता जी यार तुसी फरुखाबाद आ गए हो भाई। मैं क्या, मैं फरुखाबाद आ गया? मैं क्या, मैं तो जाना सी वो गुजरांवाला का कोई नौशहरा विरका वाली साइड पे कोई था, मैंने उस साइड पे जाना था। मैं फरुखाबाद बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी अमीर साहब, बहुत शुक्रिया।
4: खुश रहो।
1: वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, रफाकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ते बर्फी खा लेना ते पैसे पा लेना जेब विच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
5: अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम।
1: ओ अस वालेकुम अस्सलाम, आयमा बेग आ चुकी हैं
5: जी।
1: आयमा बेग?
5: नहीं जी, मैं तो मारा बेग हूँ।
1: अच्छा, आप हमारा बेग हैं। ओके ओके ओके आयमा, हमारा क्या हाल है आपका? क्या हुआ क्या हुआ?
5: मैं खूबसूरत बात कर रही
1: हूँ। आप खूबसूरत बात कर रही हैं, चले हमें तो हमारा से बात करनी थी, फिर कॉल काट दो यार।
2: कॉल काट दें, कॉल काट दें।
5: वो फिर पता नहीं कहीं बैठे के साथ तो नहीं चलेगी।
1: हमारा हमारा मुझे ये बताएं आयमा, हमारा खूबसूरत मुझे ये बताएं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है?
5: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। आपको, अरहम भाई को, सब सुनने वालों को ईद मुबारक। ये मेरी ईद वाले दिन पहली कॉल है।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: लेकिन इतना लेट हम ईद क्यों विश कर रहे हैं? हम तो आप सबको फौरन ईद कह रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले जो है ईद मुबारक नहीं कह रहे।
5: भैया आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
2: मेरी आवाज बहुत कम आ रही है? अब आ रही है।
5: हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं?
2: मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इतना लेट ईद क्यों विश कर रहे हैं हमें?
5: ईद विश,
2: इतना लेट विश क्यों कर रहे हैं? लेट विश क्यों कर रहे हैं?
5: बिजी थे ना सुबह के, इस वजह से।
1: अच्छा अच्छा,
5: आपने आज आपने आते ही कहा ना कि आपका कोई यार दोस्त सहेली दूर है, तो मेरी वाकई आज मेरी बहन नहीं आई 101 पे, मुझे इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा।
1: बहन? अच्छा, कि कौन सी बहन है?
5: आज ज़ैनब डॉक्टर।
1: ओ ज़ैनब, कल आएगी ज़ैनब? मेरा हाल है कल भी नहीं आई।
5: मुझे आज ईद ईद नहीं लग रही, वो हर शो पे शो करती है, आज नहीं आई।
1: ये कैसी ईद है ना तेरी दीद है,
2: है।
1: ये कैसी ईद है
2: ना तेरी दीद है,
5: बस ये ईद ईद ही नहीं है।
1: चले चले, बहुत सारी दुआएं हैं, और ज़ैनब अगर सुन रही होंगी तो ज़ैनब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयमा अमारा और खूबसूरत के ख्वाब में आ जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: बहुत शुक्रिया।
1: नहीं नहीं, हमने बिल्कुल तवज्जो से सुना है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
2: बहुत शुक्रिया।
5: आपने हनीफ भाई की बात को तवज्जो से नहीं सुना, मजाक में उड़ा दिया, ऑनलाइन सुनते होंगे, उनकी

0: बताओ ना जरा पहले मुझे।
1: शरारती जानवर का
2: एनर्जी एनर्जी ज्यादा लग रही है आज।
0: अच्छा अब तो मैंने खा लिया, अब क्या हो सकता है? मैंने वाकई भेड़े का खाया।
2: नोट कर लिया हमारा ने।
0: मैंने ना वो थोड़ा सा, मैंने इतना नहीं खाया लेकिन मैंने थोड़ा सा ना भुना भुना वो बनवा के ना कोई 4-5 बोटियां सिर्फ खाई अभी।
2: अभी तो आपने इनिंग्स का स्टार्ट किया था।
0: चलें चलें ठीक है, हमारा बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: अच्छा सा गाना जानवी के नाम लगा,
0: पहले हम बुरे लगा रहे हैं। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक कसाई भाई साहब को भी दावत दे रखी है। 6 बजे की न्यूज़ ब्रेक के बाद हम उनको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहेंगे। तो आपने 101 के साथ साथ रहना है, हमारे साथ साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना जी। यार हम आपसे मेरा एक सवाल है
2: जी। जी जी जी हुकम।
0: आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि आपको मेरे साथ ईद का शो आज करने का मौका मिलेगा?
2: मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, जब मैं छोटा सा था ना, जब मैं मैट्रिक में था तब मैं आपको सुनता।
0: ये बचपन की ख्वाहिश 55 में आगे पूरी हुई है।
2: मतलब कि आज से कोई तकरीबन 6-7-8 साल पहले तो मैं सुना करता था आपको, तो मैं सोचा करता था कि एक दिन कुछ ऐसा दिन आएगा कि मैं अली रजा साहब के साथ बैठ के प्रोग्राम करूंगा, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है।
0: बस रोना नहीं है, रोना।
2: आई एम फीलिंग सो लकी लाइक, लेकिन
0: बस उड़ ना जाना भाई।
2: लेकिन मुझे आपके साथ प्रोग्राम करके बहुत मजा आता है। वसीम साहब के साथ किया है, शिबा के साथ किया है, और फिर मुस्तफा के साथ किया, लेकिन आपके साथ जो एक वाइब है ना वो एक नेचुरल वाइब है। और अभी हमने देखे प्रोग्राम की कोई डिस्कशन नहीं।
0: अच्छा अरहम, ये किस किस को कहा है तुमने?
2: ये मैंने वैसे तो सबको ही कहा है, लेकिन ये अभी ये दिल से बात निकल रही है।
0: चलें थैंक यू सो मच अरहम, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इतनी आपने मोहब्बतें निचावर की हैं कि मेरे से नहीं संभाली जाएंगी, मेरी मेरी जो है वो जेब कम पड़ जाएगी। मैं कहाँ रख के इनको लेके जाऊँगा? अरहम बैच
2: बैच।
0: अच्छा जी, एक हमारे पास ट्रैक है, उसको चलाते हैं, और न्यूज़ ब्रेक का भी टाइम होने वाला है, तो न्यूज़ ब्रेक की जाने भी जाएंगे इस्लामाबाद, और लौट कर वापस आएंगे, बातों का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। आरजे अली और आरजे अरहम आपके साथ साथ मौजूद हैं, और ठीक 7 बजे तक।

0: सूरज के किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आरजे अली रजा की और आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ईद का पहला दिन है और पहला दिन खूब आप इंजॉय कर रहे हैं और अपने कीमती जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, एफएम 101 की नशरियात को इंजॉय कर रहे हैं। एफएम 101 से कंबाइंड शोज ईद के दोनों दिन बल्कि तीनों दिन बड़े जोश व खरोश के साथ जारी और सारी रहेंगे। वेल, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि हमारे पास आज हमने मधु किया है नासिर कसाई को। सो नासिर कसाई को हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम
0: नासिर भाई, क्या हाल है?
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी नासिर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? नासिर भाई ये बताएं कि आप नस्ली कसाई हैं, असली कसाई हैं या फसली कसाई हैं?
1: जी जी वालेकुम अस्सलाम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। जी सर, हम नस्ली कसाई हैं और माशाल्लाह हमारे जो अब्बा थे वो भी कसाई थे होते थे और हमारे जो दादा बू थे वो भी कसाई थे और हम भी इसी पेशे को आगे लेके चल रहे हैं और हम भी फुल टाइम जो है ईद पे कसाई होते हैं।
0: अच्छा।
1: वैसे मेरी जो है वो दुकान है करियाने की, लेकिन ईद पे हम जो है वो कसाई,
0: ईद पे कसाई का काम करते हैं।
1: जी ईद पे कसाई का काम।
0: तो फिर तो आप गोश्त बिल्कुल सही नहीं बनाते होंगे, खूब लूटमार मचाई होगी आपने।
1: ये कैसे कह सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं?
0: मैं कह सकता हूँ, अपने मुंह से कह सकता हूँ भाई।
1: नहीं, आप अपने मुंह से तो कह सकते हैं, लेकिन आप हमारे कस्टमर से पूछे ना, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है और हर साल हमसे जो है वो ईद पर, बड़ी ईद पर जो बकरे हैं, वेड़े हैं, ऊंट हैं, हमसे ही करवाते हैं।
0: आप से ही करवाते हैं? ऊंट भी कर लेते हैं आप?
1: जी मैं ऊंट भी कर लेता हूँ।
0: अच्छा, क्या रेट चल रहा है ऊंट का इस साल?
1: इस साल जो है वैसे जो हम जो है वो 2500 में भी कर देते हैं ऊंट।
0: 2500 में?
1: 2500 में भी कर देते हैं, लेकिन बाज़ू का अगर कोई
0: कहना होगा आपने 2500।
1: जी हाँ जी जी जी 25000, सॉरी 25000।
0: एक सारा दिन वैसे गिन गिन के ना आप, कोई आपको जीरो का फर्क महसूस नहीं हो रहा?
1: वो सारा देखिए गर्मी इतनी है इस वजह से, और आपने रेडियो बुलाया और आप पानी भी नहीं पिला रहे तो।
0: नहीं नहीं, आपको पानी पिलाते हैं। अच्छा अच्छा नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि इस ईद पर कितनी बुकिंग्स आपने पकड़ ली हैं?
1: देखिए मेरी डायरी जो है वो फुल है, मुझे मतलब याद नहीं, अभी भी लड़के गए हुए हैं, आपने मुझे इधर बुला लिया है, लड़कों को मैंने भेजा हुआ है, उन्होंने बच्चे जो है गिराए हुए हैं तो बच्चे वो कर रहे हैं वहाँ पे, तो बस इसके बाद जाके मैंने फौरन जाके छुरी फेरनी है।
0: अच्छा।
1: और उतनी देर वो लाते शाते पकड़ के बैठे हुए।
0: आपका काम सिर्फ छुरी फेरने का?
1: जी मेरा काम छुरी फेरने का है, हलाल करने का।
0: सबसे आसान काम तो आपने लिया हुआ या सबसे मुश्किल आई?
1: एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस। वो जानवर को जो है तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मैं ऐसे छुरी फेरता हूँ कि जानवर जो है बिल्कुल भी जो
0: आप तकलीफ नहीं देते?
1: मैं तकलीफ नहीं देता।
0: अच्छा
1: जी जी जी।
0: अच्छा मुझे ये बताएं,
1: आप मुझसे सवाल कर रहे हैं बार बार, क्या हो गया आपको? कोई बात करें इसके अलावा भी आप मुझसे ये सवाल?
0: हम फिर कॉलर को लेते हैं लाइन पे,
1: ले ले
0: कॉलर आपसे बात करते हैं।
1: ले कॉलर को।
0: कॉलर हमारे भाग गए हैं। 04-2111-0011 हमसे रबते का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। नासिर कसाई को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दे रखी है। अच्छा नासिर भाई, कॉल हमें आ गई है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
0: वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, क्या हाल है आपका?
2: मैंने कहा अरहम भाई कह रहे हैं कि ना फौरन से, कोई ईद मुबारक नहीं कह रहा इसलिए मैंने फौरन से पहले कह दिया।
0: अरहम भाई तो थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं, हमारे पास नासिर कसाई मौजूद हैं, उनसे आप कोई बात करना चाहेंगी?
2: अल्लाह माफ करे, ये तो मुझे लग रहा है अरहम भैया की आवाज़ है।
0: नहीं नहीं, ये नासिर कसाई हैं, अरहम जरा काम गए हैं। नासिर कसाई से कुछ कहना है आपने?
1: हेलो,
2: चलिए उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक, कौन बात कर रहा?
2: ये नहीं नहीं, ये कसाई कोई नहीं है।
0: अच्छा आपको इस दफा कसाई मिल गया या नासिर को भेजे?
2: नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
0: अच्छा
1: आपने मुर्गियां ज़बह कर ली? मुर्गियां?
2: हाँ जी मुर्गियां कर ली।
0: नासिर भाई क्या करें यार, मुर्गी बकरा ज़बह,
1: बकरा ज़बह कर ली मुझे।
2: ये जो आपने जो कसाई बुलाया है, इनकी आवाज में थोड़ी खराबी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही इनकी।
0: असल में इनको ना नजला जुकाम हुआ हुआ,
1: गर्मी बहुत है ना बेटा, बेटा गर्मी बहुत है बाहर इस वजह से।
2: तो सिर्फ पानी पीना सी ना थोड़ा सा नॉर्मल।
1: हाँ जी पी लिया पानी शानी,
2: ठंडा पानी ना पीना सी।
0: अच्छा नासिर कसाई से कोई और सवाल करना चाहती हैं आप?
2: आज कितनी कुर्बानी की थी इन्होंने?
0: कितनी कितनी अब तक कितने जानवरों को चूड़ी फेर चुके हैं?
1: 350 तो मैं डायरी में लिखकर आया हूँ, 350 को तो मैं
0: साढ़े तीन सौ
2: वैसे इनके लहजे से ना मुझे लग रहा है कि जो इनकी उम्र काफी ज्यादा है, दांत भी लगता नहीं है।
0: हाँ ये छिगे हो चुके हैं।
1: देखे देखे दिल जो है ना वो जवान होना चाहिए, उम्र उम्रों में कुछ नहीं रखा। और माशाल्लाह ऐसी उम्र में अली तुम्हारे जैसे जो है ना तकरीबन 4-5 लोगों को मैं अपने एक हाथ से उठा लेता हूँ।
0: अच्छा मुझे ये बताएं नासिर कसाई साहब, ये छुरी फेरते हुए आपके हाथ कांपते हैं?
1: नहीं बिल्कुल नहीं कांप, कुछ नहीं कांपता।
0: अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल है, मैं सवाल पे सवाल करी जा रहा हूँ, एक एक मेरे सवाल का आपने जवाब देना है। वो सवाल ये है कि हम अक्सर अक्सर ये देखते हैं,
1: क्या देखते
0: हैं? आप जैसे जो कसाई होते हैं ना, जो आप जैसे कसाई जो जो साल में एक दफा जाते हैं और बकरा जीवा करने चले जाते हैं, और फिर वो जाके पता क्या करते हैं आप जैसे कसाई?
1: क्या करते हैं?
0: कभी कोई रान उठा के ले जाते हैं आप, कभी गोश्त सेपरेट करते रहते हैं।
1: ऐसी बातें नहीं,
0: आपकी नजर होती है जो मालिक होते हैं ना उनके ऊपर, कि मालिक की नजर हटे तो दुर्घटना घटे।
1: और मैं
0: आपकी नजर होती है कि बस मालिक इधर उधर देखे तो मैं गोश्त जो है वो साइड पे लगाऊं। आपने आज कितना गोश्त साइड पे लगाया, ये हरकत की आपने आज?
1: देखें ऐसी बातें नहीं पूछते होते, लाइव नहीं पूछते होते, नहीं पूछते होते बार बार, आप क्यों पूछे जा रहे हैं मुझसे? लेकिन ये देखे ना ये जो शॉपर,
0: अब मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता दो,
1: शॉपर आप देख रहे हैं ना?
0: हाँ, ये जो शॉपर आपने ला के रखा है
1: ये वही है।
0: इसमें क्या है?
1: इसमें पुट है, पुट की गोश्त है, इसमें रान है, इसमें बहुत कुछ है।
0: अच्छा।
1: और ये मैं फ्रीजर में इसको रखने लगा बस, और इसके बाद जाके फिर मैंने बारबेक्यू करना अपने जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं उनके साथ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, एक तो आप जानवर ज़िबा करने के इतने पैसे ले रहे हैं और ऊपर से आप गोश्त भी सेपरेट करी जा रहे हैं, ये क्या तरीका कर रहे हैं?
1: मेहनत है ना सर, मेहनत में अजमत,
0: मेहनत गोश्त साइड पे लगाने की मेहनत करते हैं आप
1: सर, कुर्बानी करने की भी तो मेहनत है,
0: तो उसका आपको मुआवजा नहीं मिलता
1: सर? देखें जितना मुआवजा मिलता है उतना बच्चों को भी चले जाता है, हमारे साथ और बच्चे भी तो होते हैं ना।
0: अच्छा।
1: उनको भी तो हमने को पैसे दे रहे हैं।
0: आपकी टीम में कितने लोग हैं?
1: छोटू है, अली है, हसन है,
0: चलो गिनते गिनते सुबह हो जाएगी, कॉल लेते हैं।
1: 4-5 साल के
0: बच्चे
1: हैं।
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम अली रजा भाई जान, मोहम्मद
0: जी, तारिक साहब, तारिक साहब वेलकम करते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं, क्या हाल है आपके?
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपके लिए और करम हजरत पाक का। तो सबसे पहले तो आपको, आपके पूरी मैनेजमेंट को, आपकी पूरी टीम को और सबको दिलो मनो रूहो ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक,
1: ये जरा ये मोहतरम से कहें कि इसकी जरा ट्रांसलेशन भी कर दे, इतनी उर्दू बोल रहा
3: हूँ। नासर भाई आपकी गुफ्तगु से अंदाजा हो गया कि तुसी सिर्फ छुरी फेरन वाले हो, तुसी तजर्बाकार के साहब नहीं हो।
1: डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, देखे बुक को जो है।
0: वाह जी वाह, हमारा कसाई पढ़ा लिखा है।
1: नहीं नहीं, मैं देखे ना बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता हूँ माशाल्लाह, इतने सालों से मैं उनके साथ,
0: वो कदम ही बड़े होते होंगे।
3: छुरी फेरन लई बड़ा कुछ करना पैंदा, फिर बंदे नूं बड़े बड़े पापड़ वेलने पैंदे।
0: अच्छा तारिक भाई, आपको कसाईयों से कभी कोई गिला रहा हो या कोई गिला करना चाहते हो? ये जो हमारे सामने कसाई भाई बैठे हैं नासिर भाई, इनको गलती से आज हमने बुला ही लिया है, तो कोई बात करना चाहते हैं?
1: गलती? आपने मुझे 125 में स्कॉले दी, ठीक है 600 आपने मैसेज किए कि प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज मेरे शो में। देखिए मैं एक घंटे का स्केड्यूल, आपकी वजह से मुझे तकरीबन 2 लाख का नुकसान हुआ इस घंटे।
0: अच्छा मैंने 125 कॉले की मैसेज किए, अब जो मैंने आपको 2000 देना था ना वो आपको नहीं मिलना। आप
1: 2000?
0: हाँ।
1: अच्छा
0: हाँ जी,
3: 2000 इनसे ले लो,
0: इनसे लेना। तारिक भाई कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: बथेरी छुरी फेरी यार, 2000-4000 की कड़ी गल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कुछ
3: 300 छुरी कहते फेर के आया।
0: ये पता नहीं ख्वाबों में छुरी फेरते हैं क्या क्या करते हैं ये
1: पूरा पूरा
0: ये लोगों की जेबों को छुरी तो नहीं फेर रहे?
1: पूरा लाहौर जो है ना मुझसे कुर्बानी करवाता है, पूरा लाहौर जो है ना
3: अली रजा भाई जान
0: जी जी,
3: सियाने कहते ने ख्याली पुलाव पकाना ते घ्यो घट घ्यो पाउना पीपा ही पाओ पूरा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अब नासिर साहब को हमने बुला तो लिया है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं इनका क्या करें। हम
3: देख लें, अगर तो ये गैर तजर्बा कार है, अगर जानवर पुट्ठा सीधा काट दिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा फिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: देखिए बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर अगले साल कुर्बानी एडवांस बुकिंग जारी है, अगर आपने अगले साल करवानी है।
3: नासिर भाई आप जैसे लोग तजर्बा करते हैं, लेकिन अगले का काम भी हो जाता है।
1: नहीं नहीं, हम ऐसे तजर्बे बिल्कुल नहीं करते सर, हम अच्छा काम करते हैं, मेयारी काम करके देते हैं।
0: अच्छा, ये आप दावा कर रहे हैं?
1: नहीं नहीं सर, आप हमारे क्लाइंट रिव्यूज फेसबुक पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं।
0: अच्छा,
1: आप हमारी
0: आपने अपनी वेबसाइट भी बनाई
1: है? हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाके क्लाइंट रिव्यूज पढ़ें, आपको फीडबैक नजर आएगा वहाँ पे कि हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको कितने सेटिस्फाइड है पूरे लाहौर में।
0: बड़ा वेल एजुकेटेड कसाई है।
3: अली रजा भाई जान, एक दफा चांस देना चाहिए हर इंसान।
0: चलें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं चांस देना चाहिए, वो तो हमने भी इनको दिया, पछता रहे हैं हम। चलें खैर।
3: तो फिर नालारी है ना जिंदगी च काटे भी ते बातें।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
3: अल्लाह ताला तुहानू सारेयां नू सलामत रखे, तुहाडी पूरी मैनेजमेंट नू सलूट ते सब नू
1: मेरा सलाम। मेरी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
0: सोना पाकिस्तान,
1: सोना पाकिस्तान।
0: ये मेरी बात सुने, आप कॉलर के साथ इतने फ्री क्यों हो रहे हैं?
1: मैं देखे इधर इधर, मैं अब कुर्बानी तो करने आया नहीं, बात करने आया हूँ। आप बात, आपकी घंटी बज रही है बार बार, वो देख लें आप।
0: यार घंटी मेरी बज रही है, आपको क्या फिक्र हो रही?
1: आप घंटी देखे ना कौन है? देखे मेरे फैंस मुझे कॉल कर रहे होंगे और वो मुझसे बात करना चाह रहे होंगे।
0: आपके कहाँ से फैंस आ गए? अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
4: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: बिस्मा लाहौर से आपको वेलकम करेंगे या ईद मुबारक कहेंगे?
4: खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
4: जी अभी ट्यून किया और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ कौन बात कर रहे हैं।
0: अली रजा बात कर रहा हूँ आपके साथ।
1: आपको कोई नहीं पहचानता।
0: और ये मेरे सामने नासिर कसाई बैठे हुए हैं।
1: ये आपको आपको कोई जानता?
0: ये कसाई, नासिर कसाई से पूछ रही हैं या मुझसे पूछ रही हैं?
4: आपसे मैंने बोला है, कैसे हैं आप दोनों?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नासिर कसाई की तबीयत थोड़ी खराब है।
1: मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो इसमें बेटे कैसी ईद गुजर रही है आपकी?
4: ईद अच्छी गुजर रही है, तैयार श्यार होके हम छत पर अभी में।
1: तो आपने कलेजी वगैरह बना लिया?
4: आप सच में कसाई
0: हैं? हाँ, इनकी वेबसाइट भी है, ये बहुत मंजे हुए कसाई हैं।
1: मैं हूँ हर साल में एक बार 3 दिन के लिए बनने वाला कसाई। वैसे मेरे करियाने का स्टोर है और साथ साथ जो है मैं ये पार्ट टाइम काम भी करता हूँ।
0: अच्छा,
1: कसाईयों का।
4: अच्छा,
0: इनसे कोई सवाल करना
4: तो
0: चाहेंगी आप?
4: आरजे नहीं है? आप आरजे भी है?
1: नहीं नहीं, आरजे नहीं हूँ। आरजे क्या होता?
4: आरजे यही जो अली भाई है।
0: आज ये तो मैं हूँ, ये तो कसाई हैं, पता नहीं कहाँ से रास्ते में हमें मिल गए और इनको हम उठा के इधर ले आए हैं। अब हम पछता रहे हैं क्यों इनको ले आए हैं। आप इनसे कोई सवाल करना चाहेंगी?
4: मतलब आप जब कुर्बानी करते हैं, जब आप ज़िबह करते हैं जानवरों को, तो आपकी जो छुड़ियाँ होती हैं वो तेज की होती है? आवाजें आती हैं कर कर कर करके ऐसे, जैसे आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। जैसे हम किचन में अक्सर मेरी मम्मा जो है ना, वो छुरी की जो आगे नोक होती है ना, उसको रगड़ के वो ऐसे कर देती हैं।
1: देखिए, मैंने
4: उसकी धार को कम कर देती।
1: मैंने तो छुरी इतनी तेज की होती है कि साल पहले तेज करके उसको रख देता हूँ और ईद वाले दिन उसको निकालता हूँ।
0: अच्छा, और उसको जांगे लग जाता?
1: नहीं नहीं, वो मैं एलुमिनियम फॉइल के अंदर रखता हूँ ताकि वो बिल्कुल भी जो है वो किसी किस्म का जंग ना उस पे लगे। अच्छा। देखे ना, साइंस पढ़ा करे आप अली भाई, साइंस ने कितनी तरक्की कर लिया। तो मेरी छुरियाँ अच्छा तेज ही रहती है, साल भर तेज करके पहले ही रख देता हूँ, क्योंकि एट टाइम पे मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई कांट टेक रिस्क।
0: ओके,
4: अच्छा, अभी आपकी छुड़ियाँ तेज होती हैं तो ये हाल है। तो अगर तेज ना हो तो फिर क्या ही हाल हो बेचारे
1: जानवर।
0: ये फसली कसाई मुझे लग रहे हैं, ये नस्ली नहीं लग रही, ये मुझे फसली लग रही
1: है। नस्ली कसाई है, नस्ली कसाई
4: बलैती है वो
0: वाली। ये बलैती है, ये वो वाले कसाई हैं जो जो शाम का जो वक्त होता है ना, जब तो ये मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं, भाई करवाना बकरा सस्ते में कर दूंगा।
1: हम अपनी व्हाट्सएप, हम पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पे
4: कह रहे हैं ना, फॉइल पेपर, ये
1: ईद में आने से पहले, बड़ी ईद आने से पहले हम कैंपेन शुरू कर देते हैं। हम पहले करते हैं एक फेसबुक एडवर आते हैं जिसमें मैं अपनी पूरी क्लाइंट रिव्यू सारी चीज़ें वो बताता हूँ,
0: ठीक है,
1: और उसके बाद फिर एक भाई आपका एक पर्सनल वीडियो बनाता है और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और फिर भाई को ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। और अभी देख रहा, पहले आपको बताया कि तकरीबन 300 ऑर्डर मैं कर आया हूँ और 100 अभी रह गए हैं, तो इसके बाद जाके मैंने वही कुर्बान कर।
4: पहले दिन ही आपको 300 ऑर्डर मिल गए हैं।
1: अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का करम है।
0: ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको ऑर्डर देते हैं।
1: हाँ जी,
4: आप हैं कि जब से हम लाहौर से हैं, तो आप कहाँ से हैं?
1: मैं भी अल्लाह की सरजमीन से हूँ, लाहौर से हूँ, बागात के शहर, शहरों के शहर, जामियात के शहर, शहर है लाहौर।
4: अच्छा अच्छा, अली भाई ये वाकई कसाई
0: है? ये कसाई है, ये लाग तो कसाई ही रहे थे, जिस तरह इन्होंने छुड़ियां और टोका और ये सारी चीजें पकड़ी हुई थी, ये कसाई लाग रहे हो। सारे पे इन्होंने साफा बांधा हुआ था और थोड़े थोड़ा खून भी लगा हुआ था इनके इनके कपड़ों पे, तो मैंने कहा यार कसाई ही लगते हो भाई, आ जाओ।
1: 125 मिस कॉल किए आपने अली भाई मुझे बुलाने के लिए, ये भी तो बताए
0: यार।
1: 200 मैसेज
0: वो गलती से कर गई हो गई होंगी, मैंने तो कभी बैलेंस ही नहीं करवाया यार अपने,
1: पता नहीं मुझे क्यों आपकी इतनी कॉलें आ गई।
4: मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है।
0: चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच।
4: ना एक मिनट
0: जी, जी
4: आप सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं?
0: हम गाना प्ले करने लगे हैं, एक
4: तो एक मेरे लिए कर दे कोई अच्छा सा।
0: चलें, ये गाना है हारून की आवाज में, महबूबा, ये गाना आपके नाम, ठीक है?
1: अंता महबूबा महबूबा महबूबा।
0: ओ भाई बस कर दो,
4: बिल्कुल भी अच्छी नहीं है
0: ये। बस भाई सुन ली अपनी तरीफें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: महबूबा महबूबा,
4: ईद मुबारक,
0: खैर मुबारक, खैर मुबारक,
1: मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। आपने अगर बकरा वगैरह कराना हो तो मेरी वेबसाइट विजिट करें।
4: आपका नाम नासिर?
0: नासिर कसाई,
1: नासिर कसाई www.com।
4: ओके थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह हाफिज। यार आप कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री हो रहे?
1: सर आपने मुझे बुलाया क्यों है?
0: आपसे दो चार बातें करने के लिए आपको बुला के लिया है, आप तो एक आरजे बन रहे हैं इधर।
1: नहीं मैं आरजे होता क्या? ये आर और जे का मतलब क्या?
0: ये मैं आपको बताता हूँ, ये गाना सुनिए जरा।
1: चलो जी गाना सुन लेते हैं।
0: Enjoy this beautiful track. इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं। नासिर कसाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आप बातें कर सकते हैं। कोई और 5 मिनट ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे।

0: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं
1: ओ भाई नासिर कसाई साहब, क्या हो गया आपको? आप क्या कर रहे हैं यार? एक मिनट खामोश रहें। ओके जी सर, वेलकम बैक वंस अगेन। आप प्रोग्राम में आपको एक दो फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप इतना भी अफसुरदा ना हो ना नासिर भाई, कैसे आप फेस एक्सप्रेशंस बना रहे हैं मुझे? ना ना रोए ना रोए ना रोए ना नासिर भाई। जाते जाते अब जाने वाले हैं।

0: जाए
1: चला जाते हैं।
0: क्या कहने अरहम भी आ चुके हैं। अरहम वेलकम करते हैं। अरहम यार आप कहाँ चले गए थे? अरहम आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ यार। ये नासिर कसाई को तो भगाओ ना यार, ये माइक पे आओ आप। नासिर
1: आप कौन है भाई? मैं अरहम हूँ, आप कौन है सर?
0: और नासिर भाई आप जाओ, आप अरहम सीट लो यार।
1: जी मैं ले लेता हूँ, आप अरहम हैं? अच्छा अच्छा अच्छा ओके जी, चले सुनने वालों हैं, बहुत शुक्रिया अली आपका, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया।
0: ठीक है, अब चले जाएं।
1: अरहम को दे देते हैं माइक और वो बात करेंगे। ईद अच्छे से मनाएं और कुर्बानी के लिए हमें बुलाएं।
0: ठीक है आप जाओ यार,
1: अल्लाह हाफिज।
0: अरहम यार शुक्र है तुम आगे, वेलकम करते हैं आपको वंस अगेन। अरहम कहाँ चले गए थे यार?
1: बस सर एक छोटा सा काम था, तो बस मुझे बताया गया था कि कोई और भी मेहमान आपको ज्वाइन करेंगे।
0: जी जी,
1: तो
0: वो यही मेहमान थे,
1: वो ये मेहमान थे,
0: यही थे।
1: अच्छा मैं सुन रहा था प्रोग्राम बीच में।
0: अच्छा,
1: तो ये अपनी तशहीर कर रहे थे लग रहा है बार बार काफी।
0: हाँ,
1: सीजनल कसाई नहीं लग रहा था मुझे।
0: अच्छा,
1: मुझे ऐसा लग रहा था कि बस ये रुके सुके से कसाई हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा अरहम कॉल हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
2: जी। अली रजा भाई क्या
0: जी,
2: सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, बहुत बहुत
0: खैर मुबारक। खैर कौन बात कर रहे हैं?
2: नासिर भाई को भगा दिया आपसे।
0: और नासिर भाई बातें ऐसी आप कर रहे थे, मर्सिडीज पे आके किस किस चीज पे वो आगे थे, तो वो तो आप अपनी गाड़ियां हमें बताने लग गए थे। तो अपना नाम बताइएगा।
2: मैं अदरीस बात कर रहा हूँ लॉर्ड।
0: अदरीस साहब हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। नासिर भाई हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं सुन तो रहे होंगे, कोई उनको पैगाम देना चाहते हैं?
2: माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है।
1: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया भाई। ये आए इनको भी ईद मुबारक कहते हैं।
0: अरहम भाई आपको भी
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और कैसी गुजरी ईद, क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात है?
2: कुछ नहीं, बस रेडियो सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे
1: हैं। ओके, रेडियो सुन रहे हैं
2: या बच्चों का शोर सुन रहे हैं बस?
1: ओके, बच्चों का शोर सुन रहे हैं, वो तो सुनना लाजमी है ईद के ऊपर, बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए।
2: बच्चों की ईद होती है ना, बच्चों की मजे होते हैं।
1: सही सही सही,
2: बच्चों का शोर सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं घर पे बैठे।
1: चलें, बहुत शुक्रिया जी इदरी साहब आपने कॉल की।
2: आप सबको सब सुनने वालों को मेरी तरफ से
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक लाइन अप है, छोटी सी ब्रेक है। तो आपने कहीं जाना, मानवान के साथ साथ रहना है। मिलते हैं आपको एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
3: तेरह जून पीसी होटल लाहौर, आइए ट्रस्ट आई अस्पताल का अंधेरा

0: बट और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे
1: अली रजा। और हम मुझे सच सच बताओ, ये जो आप बाहर गए थे
0: जी जी,
1: क्या खा के आए? सच बताना, सच बताना।
0: इतना कुछ खाया है, इतना कुछ खाया है मैंने। आपने मैंने
1: यार हमारे बगैर खा लिया?
0: नहीं, असल में मैं एक मीटिंग पे गया था तो उन्होंने मेरे सामने कीमे वाले पराठे रख दिए थे और साथ चटनी थी और साथ फिर बोतल थी। तो मैंने कहा कि जी मैं पहले मीटिंग, तो फिर मैंने कहा होती रहेगी, खाना
1: पहले
0: देर नहीं करानी चाहिए, तो खाना खा के जो ऐसी बहाने में आ गया हूँ। और आपको मेरी एनर्जी लग रही है ना पहले से, कितनी अच्छा, हाई है।
1: हाँ बिल्कुल, आपकी एनर्जी बहुत हाई है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मीटिंग आपकी कोई गोश्त वगैरह इकट्ठा करने के हवाले से थी?
0: बस ऐसी
1: ही है ना, मैं पहुंच गया हूँ।
0: इन दिनों पे ये जो मीटिंग्स है ना, वो इसी तरह की मीटिंग्स होती हैं। और हमारे साथ एक कॉलर कर गए कॉल, तो अगर आप हमें हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 04211100101 रब्ता कर सकते हैं। तो आप भी बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही।
2: जी वालेकुम सलाम, खुश आमदीद
1: जी। एम रजा चौधरी, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तरफ से आपको और सभी सुनने वालों को, एफएम की पूरी टीम को बड़ी मुबारक।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक।
0: बुरा किया जो तेरे वादे पर एतबार किया, वो वादा ही
2: किया, वादा ही किया जो वफा हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं अमृता चौधरी साहब, ओकाड़ा का मौसम कैसा?
2: बहुत
1: गर्मी
2: लग पता गया।
1: प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
2: हाँ जी, प्रोग्राम नेट पे सुन रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: तो रुक रकैया करके।
1: अच्छा अच्छा,
2: मतलब कि आज ना नेट का बहुत इशू है इधर, क्योंकि लाइट जा रही बहुत है। आज नमाज पढ़ने गया तो उसी टाइम लाइट चलेगी, तो सब पसीने पसीने हो गए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो और कुछ कहना है आपने ईद के हवाले से?

0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है मेरे साथ?
1: सर बोबी जट गल कर रहा सर।
0: बोबी जट गल कर रहे हैं तो करता रहे।
2: बोबी जट, क्या हाल चाल है आपके?

0: टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में। तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org। सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
1: वेलकम बैक वंस अगेन एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान FM 101। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आरएम बट, और मुझे पता चला है कि नासिर कसाई ने इतना बोर किया है। और अली भाई, आपकी वैसे हिम्मत थी क्या, आपने उसको बर्दाश्त जिस तरह किया ना। खैर, जितने भी मुझे लग रहा है कि ना, ये जितने भी कसाई हैं ना, ये सारे सीजनल कसाई होते हैं, ये फसली कसाई होते हैं, सीजनल
2: नहीं सही कसाई भी होते हैं। और कुछ ऐसे प्रोफेशनल कसाई होते हैं जो मिनटों में आपका जो है ना जानवर वो ज़िबा कर देते हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो गोश्त भी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर
3: जी। वालेकुम सलाम, मोहम्मद सदीक झंग से।
2: जी सदीक साहब, झंग का मौसम कैसा है?
3: हाँ जी बेहतरीन, बड़ी गर्मी जबरदस्त पै रही, तकरीबन 44-46
2: को लस्सी लुस्सी पियो, कोई कोई सत्तू बना के पियो ते मौजा मानो।
3: ते बहुत बहुत मुबारक सारी टीम नु।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक जी।
3: ते 2-3 छापर मैं भी भेज दूं उसके लिए।
2: 2-3 बस
1: बस इतने?
3: अभी आप ऑफिस हेड को कह रहे थे ना
2: सदीक, सिद्धू सिद्धू ऐसे करता है कोई अपने साथ? 2-3 शॉपरों से मेरा क्या बनेगा?
3: इसका मतलब है कि बहुत बड़े पेट वाले हैं आप
1: तो। इनको कैसे पता चला?
2: ये इनको इनको पता नहीं कैसे पता चला, लेकिन शॉपर जरा भी रखो वड्डा रखो। ठीक है
3: और जी सब करिए तो ठीक है। बहुत मेहरबानी है,
2: बहुत मेहरबानी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखिए थोड़ा गुजरा करके 04-2111-000-101 हमसे रब्ते का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अपने इख्तिताम को है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम सलाम, कौन है मेरे साथ?
4: अली रजा भाई, मैंने अभी आपको कॉल की थी, रोजीना बात कर रही हूँ।
2: अच्छा
1: जी रोजीना,
2: क्या रह गया था?
4: मुझे मैंने काफी देर बाद किया है,
2: तो 5-7 बजे तक टाइम यही है, लेकिन जुमे को आता हूँ।
4: ओके, और बाकी भी मुझे आज की टाइमिंग

0: है उनकी जो सेटिस्फेक्शन है और वो हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। तो इसी जब आपको कोई एक बंदा कह देता है ना कॉल करके कि जी आपका प्रोग्राम सुन के खुशी हो रही है, मजा आ रहा है, तो फिर वो हमारे आने का
1: वो दिन हमारी ईद का दिन,
0: हमारे लिए ईद का दिन होता
1: है। वेल हमें अरहम मैसेजेस भी आए हैं और मोहम्मद हफीज हफीजुर रहमान भकर से सुन रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी शाहदरा से सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं जी सुपर डुपर शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हमें मैसेज आया है मोहम्मद हफीज़ का, ईदगाह जनूबी भक्कर से हमें सुन रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमें सुन रहे हैं मलिक मोहम्मद आदिल, ईद उल अधा मुबारक टू ऑल आरजे एफएम 101 टीम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एम रज़ा चौधरी हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मुकारा। और हम आपके पास कोई मैसेज है, एक आध पढ़ दें
0: मेरे पास जी। वसीम साहब का मैसेज है, आरजे नहीं है ये, मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा शो है। उसके साथ साथ अली अदील कहते हैं कि आप दोनों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इसके साथ साथ डी जे वसीर है, ये पता नहीं वसीर है, मेरे फेसबुक पे मैसेज है कि आप दोनों कंटिन्यूसली बोलते रहे हैं, गाने नहीं प्ले किए। हमने गाने तो प्ले किए हैं लेकिन ठीक है आपने नहीं सुना।
1: ये सारा काम ना नासिर कसाई ने आ गया
0: ये नासिर कसाई ने किया,
1: ठीक हो गया। अच्छा हमें ताहिर अजीज सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। साजिद इलियास सुन रहे थे, एम इजाज अली सुन रहे थे, मोहम्मद हफीज़ सुन रहे थे, रियाज भट्टी सुन रहे थे, मोहम्मद हफीज़ रहमान भक्कर से सुन रहे थे, हमें शाजिया सुन रही थी, साइमा सुन रही थी गुजरामाला से, उसके अलावा हमें सादिया सुन रही थी
0: लाहौर, पूरा पाकिस्तान का,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें रियाज भट्टी सुन रहे थे, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमें

0: हम इस शो को कंक्लूड करें, अब माइक आपके हवाले है।
1: बस मैं ये कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें और उन लोगों के लिए कोशिश करें जो लोग सही मानों में मुस्तहिक हैं। और आपकी और हमारी इंशाल्लाह इसी तरह मुलाकात होती रहेगी। कल भी रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 के बेहतरीन शोज़ हैं और इसके बाद अभी भी नशियात का जो सिलसिला है वो जारी सारी रहेगा। अली भाई आपका शुक्रिया, रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 का शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच अरहम,
1: दिस इज़ आर जे अरहम बट साइनिंग ऑफ।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड शेयरिंग माइक विद यू। थैंक यू सो मच जी अदील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मुआवनत के लिए। रजा आपका बहुत शुक्रिया।

और 101 की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, हमारी प्रोड्यूसर मैडम सीनियर प्रोड्यूसर खदीजा मुराद आपका बहुत शुक्रिया, FM 101 इंचार्ज FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर जुबैर बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा साहब, सर आपका थैंक यू सो मच, आपकी आपकी मावनत का, आपकी गाइडेंस का, आपकी हेल्प का, थैंक यू सो मच सर। राइट भाई जी, ये था आज का प्रोग्राम, आई होप आपने आज का प्रोग्राम बहुत बहुत इन्जॉय किया होगा, हमने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और थैंक यू सो मच इबाद खान स्पेशली, आपका बहुत शुक्रिया। वेल सामिन, ये था प्रोग्राम, और ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, अपनों के साथ मनाने का त्यौहार है, और इस ईद कुर्बान पर कुर्बानी के अलावा अगर सबसे ज़्यादा फजीलत वाला और सवाब वाला काम है वो ये है कि किसी भी रूठे हुए रिश्तेदार को मना लिया जाए, कोई भी आपसे रूठा हुआ है, कोई भी आपसे नाराज़ है, उसको आप मना लें। इसी बात के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। वंस अगेन मेरी तरफ से और अरहम की तरफ से और FM 101 की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आरजे अली रजा एंड आरजे अरहम भट साइन ऑफ सेइंग बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक।

0: बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ एई पावर द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन
3: हमसे है रोशन ये जहां
4: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं.
3: फिर वही बात, पहले ही दो बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी.
2: आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं.
4: ये सब गलत फहमियाँ हैं, हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती. मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता.
0: खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है. खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं.
4: सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो.
5: मतबासन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब.
6: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है. ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है. लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं. तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है. तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं. नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
7: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है.
8: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है.
9: जबकि
10: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबाबंदी से आने वाला ऑप्शन बनाएं.
11: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है.
12: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें.
0: खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें. मतवाजन खानदान खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब.
13: सुनते रहिए FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
3: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
4: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
5: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
6: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
7: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
8: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: फलकते कैसा ये चांद निकला,

0: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल का साथ। किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आँखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई हस्पताल इन्हीं आँखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओ और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है,
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबाबंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।

0: सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
1: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
2: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
3: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत आबादी, हुकूमत पंजाब।
4: There's music.

0: And then there's magic. One Above, FM 101.
1: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
2: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
3: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
4: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
5: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
6: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
7: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
8: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

0: 10 से 12 बन गई मशीन.
1: Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked.
2: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक.

आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: Turn your radio dial, but keep it normal.
1: Hello everyone, this is Sairi Sayed. I wish you and all of your family members a very happy Eid, and may this be a very delighted and jaunty event for all the listeners of FM 101. Thank you.
2: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
3: अब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
4: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
5: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
6: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
7: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मंसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
8: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
9: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
10: खानदानी मंसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: All right, assalamu alaikum. FM 101 Radio Pakistan ke Lahore studio se aap sun rahe hain Eid special with RJ Docs. I won't call it a night therapy because there gonna be no therapy, no emotional talk, nothing. Aaj ki raat sirf Eid ki baat RJ Docs ke saath. और आवाज़ किस दुनिया में जिन सवातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही यकीन नासन तरीके से मुकम्मल किया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा. और आज का ईद का दिन दैट वाज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड डेज पूरे साल में, एंड आई लव दैट. और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तमाम पाकिस्तान में जहां जहां तक मेरी आवाज़ जाती है सब सुनने वालों के लिए, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं. और इस यकीन के साथ कि खालिक कायनात आपको इस तरह की ढेरों ईदें देखनी नसीब करे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, हंसते मुस्कुराते रहें. और खालिक अपने प्यारों के सदके आपकी ज़िंदगी को आसान रखे. जिस कदर आपका और मेरा ये स्टे यहाँ पर है, हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें और दूसरों के लिए नफ़े का बाइस बने. और बहुत सारी दुआएं ख़ास तौर पे उन मेरे फोर्सेस के जवानों के लिए, फ़ौजी जवानों के लिए, अफसरान के लिए, जो आज के दिन भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए. हमें यकीन करें अनडाउटेडली बहुत फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हैं अपने खालिक और मालिक का कि हमें पाकिस्तानी बनाया और फिर खालिक ने आप लोगों को चुना कि आप वतन अजीज़ की हिफाजत पर मामूर हुए. और हमने इस ईद को बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े सुकून के साथ, बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, मनाया, ये जानते हुए कि हमारी पाक अफवाज के जवान अफसरान हिफाजत के लिए मौजूद हैं. तो खालिक से ये इल्तजा है, दुआ है कि आप लोगों की मौजूदगी से आप लोगों के घर वालों की आंखों को इसी तरह से ठंडा और शाद रखे. वक्त हो चुका है 10:27 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये जो आवाज़ आपकी समातों से टकराती है ये है आज डॉक्स की. एंड ईद मुबारक टू एवरी सिंगल पर्सन जहां जहां तक मेरी आवाज़ जाती है. इट्स ईद, ईद खुशी का दिन, सेलिब्रेशन का दिन. और आज तो ईद कुर्बान थी, सेक्रीफाइस करने का दिन, लर्न करने का दिन, हाउ टू सेक्रीफाइस, किस तरह से एक दूसरे के काम आया जाता है. और आज के दिन ना मौजू महज सिर्फ फकत ईद है. जो दिल करता है बात करेंगे, आप कॉल्स करेंगे, इफ़ गाइज आर लिसनिंग 042-111-0101 0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011-0011- है तो अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने एसएमएस करने के लिए। 101 लिखना है और स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर। और मैं जानता हूँ आज का दिन ईद का दिन था, काफ़ी लोग थके होंगे और ऐन मुमकिन है कि काफ़ी लोग अवेलेबल भी ना हो, लेकिन हम यहाँ पे हैं और ड्यूटी करते हुए हाजिर हैं कि आप लोग अगर फारिग हों और दिल करे सुनने का, कुछ बोलने का, कुछ शेयर करने का आज के दिन के हवाले से या गुजरी हुई ईदों के हवाले से या कुछ भी, एनीथिंग, वी आर ऑलवेज हियर, वी विल बी स्टेइंग बाय योर साइड। जहाँ तक मेरी ईद का ताल्लुक है, आई ऑलवेज हैव ब्यूटीफुल ईद। थैंक यू वेरी मच शौकत हौतानी साहब, आपने पैगाम भेजा, थम्स अप किया, थम्स अप फ्रॉम माय साइड एज वेल। हाँ, मेरी ईद तो बड़ी अच्छी गुजरती है, ईद कुर्बान, शुरू से मेरी तो आदत है ख़ुद से कुर्बानी करना और ख़ुद से कसाई बन के कसाई बन के रहना, एंड आई लव इट, आई सिंपली लव इट। क्या बात है जी, going to take the first call. Ji, assalam alaikum.
1: Assalam alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Ji,
1: ji sir, aapko Eid Mubarak.
0: Aapko bhi Eid Mubarak. Kaun hai hamare saath?
1: Sir, main Wajid baat kar raha hu Karachi se.
0: Kaise hain Wajid bhai, aap khairiyat se hain?
1: Alhamdulillah, main bhi khairiyat se, aap khairiyat se?
0: Alhamdulillah, Allah ka bada ehsaan hai. Aap bataiye, Eid kaisi rahi?
1: Eid alhamdulillah achhi guzri.
0: اچھی گزری. کیا خاص بات تھی آج کے دن آپ کے لیے؟
1: بس خاص بات یہ تھی کہ گوشت ہمیں پسند ہے, گوشت کھایا.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویسے میں اتنے شوق سے گوشت نہیں کھاتا, پتہ نہیں کیوں, کھا لیتا ہوں لیکن ایک ہوتا ہے نا بندہ بڑا شوقین ہوتا ہے گوشت کھانے کا, میں ایسا شوقین نہیں.
1: میں بھی بڑا شوقین ہوں.
0: اچھا آپ شوقین ہیں, زبردست. اور کچھ بتائیے عید کے حوالے سے. Anything you want to share? کچھ بھی
1: عید کے حوالے سے. یہ
0: کہ میں نے کلیجی کھائی, میں نے چانپیں کھائی, میں نے گوشت کھایا.
1: کلیجی کھائی, کلیجی فیوریٹ
0: ہوتی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ
1: شو آپ کا بہت ماشاءاللہ اچھا ہے, میں روز سنتا ہوں, بدھ والے دن سنتا ہوں, بدھ جمعرات کو.
0: بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ نے فون کیا. آج کا دن آپ کا ہے, کوئی گانا سنیں گے؟ لیکن گانا اداس سا نہیں, کوئی اچھا سا, اینی تھنگ, کوئی بھی گانا بتائیے.
1: گانا بتاؤں؟
0: ہاں ہاں بتائیں.
1: شاعر علی بگا کا گانا ہے, آپ کتنے ہنسی ہیں آپ خود بھی نہیں جانتے.
0: آپ کتنے ہنسی ہیں آپ خود بھی نہیں جانتے. لے سر, لگ گیا جی.
1: جی شاعر علی بگا کا
0: لگ گیا سر. لگا دیا پائے, لگا دیا. سنیں آپ گانا, ٹھیک ہے, آپ نے جانا نہیں ہے, سنتے رہنا گانے. Stay connected. Here you go. وقت ہو چکا ہے 10:32. This is your day. آج آپ کا دن. آپ مجھے بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں, لیکن اچھا سا, اچھے اچھے گانے. اچھا کلام باقی ہم ہے فور یو, جو کہیں گے چلاؤں گا. دس از آر دی ڈاگس اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یور عید ڈے, عید سیلیبریشن, وٹ ایور یو ون سے اباؤٹ عید, کچھ بھی عید کے حوالے سے, اینی تھنگ. آئی ایم ہیئر. کوئی اچھی میموری, کوئی بات نہیں تو کوئی ڈش ہی شیئر کر دیں, شاید میں سیکھ ہی لوں. اچھا فلاں ڈش اگر بنا لیں تو یہ اچھی مزیدار بن جائے گی, یہ بنا کے کھا لیتے ہیں. خواتین تو بڑی بڑی چیزیں ٹرائی کرتی رہتی ہیں. وقت ہو چکا ہے 10:33, 27 مئی 2026 کا سن, FM 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آر جے ڈاکس, اینڈ ونس اگین عید مبارک ٹو ایوری ون.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:38 और आज है जी 27 मई 2026। कसन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से पूरी टीम की तरफ से, आरजेएस की तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत सारी ईद की मुबारक हो। एंड वंस अगेन दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ ईद एंड दिस इज योर डे। वैसे तो हर दिन यहाँ से बोलने वाला कोई आरजे हो, किसी हमारे स्टेशन से बोलने वाला, इवन हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी बंदा काम कर रहा है जिसकी आवाज़ आपको पसंद है, जिसको सुनते हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट यू एंड अबाउट यू, दिस इज इट। सिर्फ आपके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं सब कुछ। ज़हीर अहमद, मेरे हस्बैंड को फीवर हो गया है, ये पढ़ के ना पहले मैं परेशान है। ज़हीर अहमद यार, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से आ गया? मतलब ज़हीर अहमद का हस्बैंड, फिर बाद में पता चलता है, अच्छा ठीक है भाई, लड़की होगी, दे मस्ट बी ए गर्ल, वरना हस्बैंड नहीं होता ना। ओके, बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपके हस्बैंड को सेहत सलामती वाली जिंदगी अता करे। एंड माय बेस्ट विशेस, अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। अच्छा, बिनते हवा कहती हैं, मैंने आज दोनों अंगूठे काट लिए, मैंने फिर इधर लाइव स्ट्रीम पर दिखाया। जिन लोगों ने पहली मरतबा सुना है उनके लिए बता दूं, यू कैन वॉच माय लाइव स्ट्रीम, इफ़ यू सर्च RJ DOX आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। यू कैन सर्च माय लाइव स्ट्रीम एंड हिट मी विद योर कमेंट्स। हिमून लगारी, इस्लाम सर, वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, आपको खास तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक, सच ए लवली पर्सन यू आर। मैंने अभी जो वीडियो बनाई अपलोड की, भाई गाड़ी खड़ी थी, अभी मैं कहीं नहीं गया था, मैं जब बना रहा था आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू के हाउ यू वुड बी रिएक्टिंग, सो यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड वेन एवर आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो इन माई कार। अच्छा, बिनते हवा कहती है, मेरे दोनों अंगूठे काट गए, मैंने भी नहीं दिखाया, मेरे भी काटे गए ना ज़िबा करते हुए, ज़रा वो स्लिप हो गई छुरी, थंब भी है, उंगली भी है, खैर ये तो चलता है ना, दिस इज द सीन एक्चुअली, इट मेक्स यू फील के ओके। मुझे तो एटलीस्ट फील आती है कि आज के दिन मैं कसाई होता हूँ ना, पूरा प्रॉपर कसाई वाली फील के साथ चल रहा होता, आई डू नथिंग, आई कॉल माई सेल्फ कसाई, प्रॉपर कसाई, एंड आई लव बीइंग कसाई, दिस इज द ओनली थिंग आई लव डूइंग ऑन ईद उल अज़हा, और यही चीज़ होती है, खुद करने का मज़ा भी आता है। बिनते हवा कहती, मेरी उंगलियां कट गई, मैंने कहा किसको देख रही थी, मुझे तो एकदम से वो वाकया याद आ गया ना, हजरत यूसुफ वाला, कि हजरत यूसुफ को देखते हुए उंगलियां कट गई थी जब जनाब जुलेखा ने बुलाया अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए, वो शाहकार खालिक कायनात का हुस्न की वो जो ओज और मेराज और मेयार बनाया खालिक ने हजरत यूसुफ की शक्ल में। मैंने कहा आप भी किसी को देख रही होंगी, आप अपने यूसुफ को देख रही होंगी। फिर कहती है उनको क्यों याद करना, सर याद उनको करते हैं जो दूर हों, वो तो हमेशा ख्यालों में पास होते हैं, इसीलिए कहा है ना ख्यालों में पास होते हैं ना, ख्यालों में भी बंदा इधर उधर हो जाता है, फिर बाद में झगड़ा, आपकी वजह से मेरी उंगलियाँ कट गई, मैं आपको सोच रही थी। फिदा कहती है वेरी टायर्ड बट स्टिल लिसनिंग योर प्रोग्राम, आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, आई एम स्टिल हेयर, एनीवेज यू कैन कॉल मी जी 042-111-0101 0102-111-0001, एंड इट इज ऑल अबाउट यू। सर मैं बीवी हूँ उनकी, जी ज़हीर अहमद के, मुझे पता चल गया आप ज़हीर साहब की बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम,
1: खुशियाँ मुबारक, इसके सबको खुशियाँ मुबारक, गुर्दे कलेजी खाल मुबारक, गुर्दे कलेजी खाल
0: सस्ती हो गई अब,
1: ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक शाहिद अंसारी की जानिब से पूरे पाकिस्तान को, ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक जी शाहिद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
1: जनाब अली खैरियत से हैं, तबीयत सही है,
0: बड़ी मेहरबानी। सुनाइए, हाउ वाज योर ईद?
1: हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह। पहले हम एक गाय किया करते थे, इस दफा 5 बकरे किए।
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त हो गया, अल्लाह कबूल करे।
1: हाँ सुभान अल्लाह, उसी गाय में से जो सबसे अच्छे हो जाते थे, तो अब हमारी बहन ने कहा कि नहीं भाई अपने अपने सब करो, तो ये एक बहन का आ गया, एक हमारा बकरा, और तीन मेरी बेटी के बकरे आते हैं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।
1: वो माशाल्लाह हमारे यहाँ करती है कुर्बानी जो है ना।
0: बिल्कुल सही।
1: अच्छा वो पिछली दफा एक लिसनर ने अब पता नहीं मैं वो नहीं कर रहा मुजक्कर मोनस नहीं बोल रहा मैं एक लिसनर ने अपनी आंखों की बड़ी तारीफ की थी।
0: मेरी आंखों की
1: जनाबे अली।
0: हाँ मुझे शेर भी भेजा था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
1: तो अगर आप कहें तो आंखों के ऊपर एक नकमा सुना दूं।
0: मैंने फिर आगे से लिख के भेजा था इंसान अंधा हो तो ऐसे ही लगता। लवली अपनी अपनी पसंद है। कभी कभी मैं भी हैरान होता हूँ लोगों को क्या क्या चीजें पसंद आ जाती हैं।
1: सारे जहां में आपका कोई नहीं जना। आंखें गजल हैं आपकी

0: ने रंग नजारों को मिल गए, आप आया जमीन पे उतरा है माहता, सारे जहां में आपका कोई नहीं जना, आपके गजल है आपके और होंठ है गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जना।
1: क्या बात है, बड़ी मेहरबानी अंसारी साहब,
0: गजल है आपकी।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई गाना सुनना चाहेंगे? हेलो हेलो, बिस्ती गा रहे हो? सच अ लवली पर्सन, सच अ लवली पर्सन अंसारी साहब, सच अ लवली पर्सन। इमून लगारी, थैंक यू सर। हृदय तो पाकिस्तान में है, परदेश में बस गुजारा ही होता है। जी सर, आपसे मोहब्बत हो गई है। देयर फॉर आई सीट फास्ट एंड सीट बेल्ट, आई लव टू डू दिस यार। और मैंने कहा याद रहते हैं मुझे, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईद इवन आई रिमेंबर के मुझे मेरी पोस्टिंग जिन दोनों थी इस्लामाबाद, और वहाँ पे मुझे रमज़ान गुजारना पड़ा, और फिर ये सारा मेरे ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे रही। तो वो जो एक फील थी ना कि और व्हाट आई एम डूइंग, क्या आज़ाद तो है लेकिन अब कर कह रहे हैं कुछ भी नहीं, मज़ा नहीं आता, मज़ा घर में ही आता अपने दोस्तों के साथ। और आज मेरे दोस्त ने भी एक बड़ा मज़ेदार सा सरप्राइज दिया, आई लव द सरप्राइज। अब ये कॉल लेता हूँ जी, 04-2111-01-01-0-1-0-1-0-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1। आज मैं कॉल्स लूँगा, ईद स्पेशल है, आपकी बात आपसे करेंगे ईद वाला दिन। जो दिल में आता है बात बताएं, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई रेसिपी, वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, जस्ट शेयर इट। हेलो,
2: सर।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, मरीना बिलाल। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको भी। जी सर, कौन है हमारे साथ?
2: आपको भी सर ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को सर ईद मुबारक।
1: सर थैंक यू, कौन है हमारे साथ?
2: सर कमाल दा म्यूजिक सर लाया, आरजे डॉग रात का शो मूड हो गया सेट
1: सेट।
2: हाँ यस जी, जबरदस्त सर। सर बोधी जट गल कर रहे
1: जनाबे अली जट साहब, आज तेरी आवाज ही बदली हुई है, आज लगता गोश्त बोता खा लिया।
2: नहीं सर, गोश्त बहुत सवेरे कुर्बानी करनी है सर।
1: अच्छा,
2: आज नहीं कीती, इस गलो नहीं कीती सर।
1: क्या लोका लवाना?
2: नहीं सर, टोका नहीं लवाना, कल कजन मेरा फौत हो गया।
1: ओहो, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह सबको सब्र जमील अता करे जी। दिस इज वेरी सैड, दिस इज रियली वेरी सैड जी।
2: हां जी सर, सवेरे इंशाल्लाह तआला करांगे सर कुर्बानी।
1: बहुत सारी
2: एक वैड़ा सर, एक वैड़ा लिया है, एक सर छतरा है, वो आप ही डेरे से पाले है सर।
1: अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे।
2: आमीन आमीन सर,
1: अल्लाह कबूल
2: करे। सर माशाल्लाह बड़ा सोहना प्रोग्राम, तो सर तुहाडे कोल सॉन्ग सुनना, पिछले तो पिछले शो च तुसीं सर लाया सी ओ आपकी शोहरत ही सही, इस तरह करके गया ही
1: आपकी शोहरत ही सही,
2: इंज करके कुड़ी दी आवाज विच गया सी ते
1: अंदाजे करम, उनके अंदाजे करम।
2: हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल सर
1: है। लग गया जी ईद के दिन है, आप जो
2: कह रहे खैर हो तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे, तो सर तमाम सुनने वाले मेरी तरफ ईद मुबारक, से तुहानू दो हत्थां नाल सर सलूट जट साहब।
1: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी बोलते
2: पे। खैर होवे सर, सर मेरी आपी अनीला नु साडा सलाम, ते पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद जी, मैं गाना लाता है जी, गाना सुनो, एंजॉय करें जी। ये नंबर, इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, नसीरुद्दीन नसीर साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का लिखा हुआ, उनके अंदाज़े करम, और अ वेरी डिफरेंट कंपोजिशन, व्हाट अ लवली कंपोजिशन। हाँ, रिक्वेस्ट जो कहेंगे आज चलाता जाऊंगा, बस कॉल्स करते रहे। अब ऐसे करते हैं, अब मैं कोशिश करूँगा एक दो तीन, तीसरी कॉल जिसकी होगी उसका चलाएँगे, ठीक है? अभी ये चलाने के बाद दिस इज अ डॉग्स डोंट गो एनीवेयर। मलीना बिलाल कहती हैं, ईद का ड्रेस चेंज किया, ईद के लुक में आते ਆਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਥਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਰੂਟੀਨ ਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਬਾਂਟਾ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਆ, ਮੈਂ ਬਾਂਟਨੇ ਪੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਐਮ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਆ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਕੱਲ ਹੋਗਾ ਕੰਬਾਈਨ ਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ। This is RJ Docs, don't go anywhere. अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है मुझे कॉल करें 0421100101 और इंटरनेट की रसाई नहीं है RJ space DOX Docs पे सर्च नहीं कर सकते मेरी पोस्ट को या मेरी लाइफ को, तो SMS करें अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें, उसको भेज दें 4471 पर, यह आपके लिए। This is for you. Yes. Unke andaaz-e-karam. On request.

0: हेलो जी, वेलकम बैक। एंड वक्त हो चुका है पूरे 11, लेट मी चेक न्यूज।
1: वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है, अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले हम खबरों का खुलासा। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म कुवैत के वलीअहद ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया। इलाकाई अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल और बाहमी यकजहती और तआवुन का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में बहरीन, पुर्तगाल, क्यूबा और जमहूरिया चेक के वज़रा खारजा के साथ मुलाकातों के दौरान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। और पाकिस्तान की जानिब से 28 मई 1998 को किए गए जौहरी तजुर्बात की याद में कल यौम तकबीर मनाया जाएगा।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
0: जी वेलकम बैक, वक्त हो चुका है 11:01। वंस अगेन जी, जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया उन सबको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक एंड आई विशिंग यू अ वेरी ब्लेस्ड ईद डे। एंड आई एम हियर एंड आई एम गोना स्टे विद यू। और आज के दिन बिल्कुल कंबाइंड प्रोग्राम होने चाहिए थे बट नहीं हो पाए क्योंकि पहला दिन है ईद का। तो मोस्टली यहाँ पे जितने आपके आरजेस पाए जाते हैं वो सारे यहाँ तो खुद ही ईद की कुर्बानी करना पसंद करते हैं, तो उस वजह से टायरिंग होता है। माशाल्लाह सारी करते हैं, मैंने भी की, इसलिए हम ज़रा वो मैच नहीं हो पाया। अगर कर लेते, रहमान से रब्ता नहीं हुआ था, मेरी कोशिश थी रहमान आ जाता तो हम दोनों कंबाइन करते। But it's all right, he must be on his way to the studio. Once he's here, definitely you're gonna hear us together from here, from the very studio of FM 101 Lahore. And it's 11:02 PM on the dial, 27th of May 2026, and you're listening Eid Special with Arjay Docs. You can watch my live stream if you search Arjay Space DOX Docs. And you can hit me with your comments, and you can call me also 042-111-0101 0421-1111-0001. आपका दिन है, आपकी बातें हैं। मरीना बिलाल ने कहा कि गोश्त लेने चले के अच्छा फिजा राजपूत कहती हैं आप पूरा बकरा डिजर्व करते हैं, बस कई जाना देना ना। और SMS करने के लिए अगर इंटरनेट की रसाई नहीं है, आप ईद विश करें, मुझे पता तो चले यार आप सुनते हैं, चलिए खामोश लिसनर है, ईद वाले दिन तो मुझे मैसेज करें ना ज़रा, और मुझे मैसेज करके बताइए यू गाइस आर लिसनिंग। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, SMS करने के लिए 101 लिखना है, स्पेस देनी है, फिर अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर। अगर नाम लिखते हुए शर्म आती है ना लिखिए, वैसे ही पैगाम भेज दीजिए ईद मुबारक लिख के। And

0: हमें सबसे पहले मैसेज किया, हाय आर्थोडॉक्स, मौसम एंजॉय हो रहा है, बहुत बहुत मजे का मौसम था। अर साहब को मेरी तरफ से सलाम, वालेकुम सलाम। किरण, किरण है शेखुपुरा से, सुन रही है, क्या बात है किरण, किरण कैसी है आपकी ईद, कैसी रही मौसम वहाँ पे, कुछ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मुझे बताएं, मैं भी शेखपुरा आ जाता हूँ। मेहर फातिमा है सर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, कैसे हैं, आज का दिन कैसा गुजरा आपका सर, आपका वेट कर रही थी, थैंक यू वेरी मच। कितना वेट हुआ वैसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा रिड्यूस कर लूँ, और दुआ भी कर रही थी कि आप आ जाएं, देखें मैं आ गया हूँ, आपकी दुआओं की वजह से आ गया हूँ, जैसे ही आपके शो का बैकग्राउंड म्यूजिक सुना तसल्ली हो गई, आप आ गए, थैंक यू। आत्मा आप बताओ आपकी ईद कैसी रही, घर में सब ठीक हैं। आबिद अली है मर्दान से, इस्लाम आज डॉक्स असद साहब, वालेकुम सलाम, आपको ईद मुबारक जी, और आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आपने पंजाब में खास तौर पर सीएम साहिबा को भी ईद मुबारक का, बड़ी शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। और नुमान है इस्लामाबाद से, ईद मुबारक बोला, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक नुमान भाई, गला ख़राब हो गया है? नहीं, गला बिल्कुल ठीक है अभी। नवाल ने भी ईद मुबारक कही, ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, मैंने मेहंदी भी लगाई, चूड़ियाँ भी पहनी, आए हाय हाय हाय, मिल्क सैयाँ भी खाई, अकेली अकेली खा ली, तुम मेरे पास होते हो, क्या एक ही शेर है मुझे जो याद है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से सुन रहे हैं, आदाब किया, तस्लीम जी तस्लीम, और फिर ईद उल अज़हा मुबारक कहा, आपको भी मुबारक हो। और असद सरदार, हैप्पी ईद मुबारक सब मुसलमानों को, आपको भी ईद मुबारक जी। और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, मैं सलमान रफीक फ्रॉम खारिया, सलमान भाई आपको ईद मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, आपदा परवीन की आवाज़ सुना दें, सुना देते हैं सर, बिल्कुल सुनाते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, हेलो हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम
1: जी सर, क्या हाल है, ठीक हो, ईद मुबारक,
0: खैर मुबारक जी, कौन है हमारे साथ
1: जी, तनवीर अहमद सियालकोट से,
0: तनवीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, मिजाज
1: आसान,
0: सुनाओ सर कैसी रही ईद,
1: तबीयत ठीक ठाक सर, थोड़ा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा सर,
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सुनाए सर ईद कैसी रही,
1: सर ईद बड़ी फर्स्ट क्लास गुजरी है, लेकिन कुर्बानी यहाँ सुबह करनी है,
0: अच्छा
1: आज लोगों ने हेल्प कराई है,
0: अच्छा क्या बात है, मैं भी बड़ी हेल्प करांदा सी, बड़ा मजा,
1: हेल्प करानी चाहिए है ना,
0: बड़ा मजा आंदा सी, मैं मतलब असी पहले वो अंदरून लाहौरी समझ लो एरिया नु, उते रहंदे सी ते कुर्बानी होनी ना, वालिद साहब मेरे, क्योंकि उस वक्त जितना वो था गली मोहल्ले में, आपको पता सारे एक दूसरे को जानते होते हैं, तो छुरी फिरवाने के लिए उन्होंने बुलाना, तो फिर जब मैं बड़ा हो गया, फिर वालिद साहब की जगह पे मैं जाया करता था, बड़ा मजा आता था, वो वन डे प्रोटोकॉल मिलता था, सारे लब साडे बकरे में छुरी फेर दे, सारे छुरी फेरने के लिए, बड़ा मजा आता, बड़ा अच्छा लगता है, ईद रिक्वेस्ट है जी, आई एम नॉट गोइंग टू टर्न यू गाइस डाउन एंड थैंक यू वेरी मच जी। मरीना बिलाल कहती हैं, मिस्टर असद जी, मैडम यू आर गुड लुकिंग मैन, थैंक यू वेरी मच, आपका हुस्न नजर है, आई डोंट नो ये वेट कम करने का ट्रेंड का क्या ट्रेंड हो गया, नहीं वेट कम करना नहीं, इट्स गुड वेट रखना ना, गुड साइड पे रखना, ताकि आपको बीमारियां कम से कम लगे, अच्छा भला इंसान चूजे अच्छा भला इंसान चूजे जैसी शक्ल बना लेता है ना, बड़ा मजा आता है चूजे जैसी शक्ल, मेरी अम्मा कहती छिलिया होया आलू चूसिया होया अंब, यहो जी गल्ला, अस्सलाम वालेकुम जी,
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर
0: रही हूँ। कैसी हो बिस्मा, आप ठीक हो? ईद मुबारक आपको।
2: मैं ठीक हूँ, मैं बचपन से कॉल कर रही हूँ आपको।
0: अभी फिर बुढ़ी हो गई होंगी?
2: हाँ जी।
0: या मेरी एज फेलो हो गई है?
2: 14 या 15 ईयर्स की, ऐसे भी छोटी, मतलब तब मैंने सुना था आपको, और मैं रेगुलर नहीं सुनती, अब तो मैं 22 साल की हो गई हूँ।
0: 15 साल से 7 साल का सफर हो गया।
2: हाँ जी,
0: ये मेरा ख्याल है। फिर आप कंफ्यूज कर गई हैं किसी और के साथ तो नहीं? मेरी आवाज को कंफ्यूज कर गई?
2: नहीं, आप डॉक्स ही हैं।
0: मैं डॉक्स हूँ, लेकिन मुझे तो तकरीबन को 5 साल हुए।
2: तो पता नहीं अब शायद।
0: फिर यूट्यूब पे ना सुना हो? यूट्यूब पे कुछ ना कुछ मैं लगा रहता था करने उस वक्त।
2: मैंने सुना होगा आपको?
0: हाँ, फिर सुना होगा, यकीनन सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा।
2: और अभी तो 3 साल पहले की बात है, तब भी मैंने ट्राई किया था।
0: आप फिर आ रही हैं ट्रेनिंग करने के? नहीं आ रही? हाँ, यहाँ पे मैं अनाउंस भी करता जाऊं जी कि हाँ, यहाँ पे हम वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर स्टार्टिंग ब्रॉडकास्टिंग, आज ओब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनिंग है जी, और इंटर्नशिप है, इट्स काइंड इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में, जो भी लाहौर आ सकता है, यू आर मोर देन वेलकम। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और
2: कोई कॉल भी नहीं आएगी?
0: नहीं, अभी नहीं आएगी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें सारों को ऐड कर लिया जाएगा। और जिनका कोई इंटरव्यू या इस तरह की रिक्वायर्ड होगा, उन्हें सिर्फ कॉल चली जाएगी, बाकियों को डायरेक्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और
2: स्टूडेंट्स को आप कैसे सिखाओगे, कैसे मौका देंगे आप?
0: वो हम सिखा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। हमने सेग्रीगेट कर लेना, हम 50 या 100 दो सेशन कर देंगे, अगर 100 तक हुआ, अदरवाइज 50 का एक सेशन बनाने का मूड है हमारा, 40 से 50 की स्ट्रेंथ के साथ।
2: ऐड करना चाहिए आपको?
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। व्हाट यू हैव डन, कहाँ तक पढ़ी आप? बैचलर किया है, मास्टर्स किया है, क्या किया? बैचलर। और आई एम टेलिंग एवरीवन जी, अगर आप बैचलर में इनरोल्ड हैं, आप भी कर सकते हैं। और फॉर्म FM 101 लाहौर आपने फेसबुक पे सर्च करना है, FM 101 लाहौर, वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। डाउनलोड अगर करें, क्या थे
2: आपका पता नहीं चलता कि आपका कौन सा पेज है,
0: आप अगर खोलेंगे ना FM 101 लाहौर, वहाँ पे लोगो लगा होगा, सेकेंडली आपको और थोड़ी वजाहत हो जाएगी, उसके 18,000 फॉलोअर्स है, 18K, और वही ऑफिशियल साइट है, वहीं पे आपको पोस्ट वगैरह भी मेरी मिलेगी, इस तरह की मेरी वीडियो और बाकी चीजें भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये अगर आपको दिक्कत आए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे भी, और FM पे भी RJ DOX डॉक्स, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आपको फॉर्म शेयर।
2: 4471
0: नहीं नहीं, 4471 पे सारे मैसेज समटाइम डिलीवर भी नहीं होते, और वहाँ पे मैं आपको फॉर्म शेयर कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपने भी उधर जो है ना RJ डॉक्स वाले पे भी अपलोड कर दूँ, तो डू पार्टिसिपेट।
2: जहाँ से मैंने सबमिट किया है ना, मेरी आवाज खराब हो गई वहाँ पे ना, आपने वीडियो आपने व्हाइट कलर की शलवार की पहनी हुई थी, जेंस कोट पहनी थी।
0: हाँ, बस वही ऑफिशियल पेज है हमारा, बिल्कुल ऑफिशियल पेज,
2: वहीं से सबमिट किया मैंने। वो मैंने अपनी फ्रेंड से करवाया, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैंने कहा तुम फॉरन सबमिट कर दो, ये ना हो कि सबके फॉर्म सबमिट हो जाए, मैं पीछे ना कहीं रह जाऊँ, तो ये सीन था। तो उसके लिए आपने एक सॉन्ग भी चलाना है, मेरी फ्रेंड है सिंस से दरअसान, ठीक है, तो उसके लिए सॉन्ग है
0: जी,
2: वो वाला अहदे वफा के नाम क्या, वो ना यादों की दर पे बहते हैं

0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय ये कौन सा है ओएसटी, ये क्या है?
1: जी मेरे ख्याल से दिल अहदे वफा के नाम में किया।
0: अहदे वफा, अहदे वफा का ओएसटी है ये।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: दिल से हो कर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम।
1: हाँ, ये वाला जिसको बहुत पसंद है ना।
0: ठीक है जी,
1: आप
0: लगते
1: थोड़ी और बात ही हो सकती
0: करें करें करें, बताएं बताएं।
1: आपने
0: ईद का
1: बोला
0: दिन
1: कि
0: है
1: मैं
0: आज,
1: जादू
0: इजाजत है जी।
1: बताएंगे। ठीक
0: जी
1: है, मैं आपके जब भी शो सुनती थी, जब आपने वो बताते थे चार्ट के बारे में और ये रंग रंग और ये वो, ठीक है, तब
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: बड़ा जोश चढ़ता था आपको कॉल करने का। मैं ऐसे कॉल करती थी, ऐसे दर्द आता था, मुझे माइग्रेन इशू बन जाता था, मीन्स कि मुझे ना आधे सर का दर्द निकल आता था। वो
0: हाँ
1: लड़की बोलती रहती है ये बिजी नंबर बिजी, तो कभी कभी मुझे आता है यार मैं इतनी फ्री हूँ, ये बिजी बिजी, और जब टू टू होता है ना टू टू टू, तब पता नहीं आप कहाँ खो जाते हैं, कहाँ सो जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं। जब मेरी कॉल साफ जा रही होती है, आप कभी पता नहीं क्या करते हैं, आप कहाँ चले जाते हो। तो अभी भी ऐसे हो रहा था, मैं यही कर रही थी, उठा लें उठा लें, इस बार उठा लें, इस बार आपने आज ईद वाले दिन ना उठाई, मैंने आपको बाइकआउट कर दिया, मैं कभी भी कॉल नहीं करूंगी। आपकी वजह से मैंने FM रेडियो 101 को कॉल्स मिलाना शुरू की थी, और मेरे दो नंबर, पहले मम्मा का नंबर होता था, अब तो मेरा अपना आईडी कार्ड बन गया, ये मेरा अपना नंबर है। मैंने कहा पता नहीं इनको क्या चीज है, मेरे नंबर से मेरा ही नहीं उठाते हैं, आपको कॉल करो, मीन्स आपके शो में हम कॉल करना स्टार्ट करते हैं तो जिया भाई उठाते हैं। कैसी हो, मीन्स आपके शो में हम स्टार्ट होते हैं, रहमान भाई ऐसे उठा लेते हैं कॉल, की क्या सीन है ये। मतलब सबसे पहले मेरी कॉल जिया भाई ने पिक की थी, ठीक है, उसके बाद मुझे आगे हुआ कि नहीं ये हमारी कॉल भी ले लेंगे। मुझे लगा था ये अपने बंदे रखे हैं, मैंने ये अपनी फैमिली के कोई लोग हैं जिनकी कॉल्स अटेंड करते हैं, नंबर प्यार से प्रेम से बताते हैं ये नंबर है, इस पे कॉल करें, हमसे बात करें। तो फिर जब हम बात करते हैं, मीन्स हम कॉल करते हैं, तो हमारी मत बच जाती है।
0: बहुत सारे
1: तो
0: लोग इस तरह का गिला करते हैं जी, आप कॉल जानबूझ के
1: हाँ
0: नहीं
1: जी,
0: लेते।
1: अब
0: मैं
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: पता
0: ऐसी
1: चल
0: बात
1: गया
0: नहीं
1: है,
0: है,
1: मुझे पता
0: बिल्कुल
1: चल
0: ऐसी
1: गया। मैं
0: बात
1: उन सब
0: नहीं है।
1: लोगों को बता रही हूँ कि आप कॉल करते रहे। वो कहते हैं ना, वो जब अल्लाह ने जब दुनिया बनाई थी, तो अल्लाह ताला ने एक एक जरे का भी रखा था कि यहाँ बनेगा, यहाँ से उठेगा, वहाँ पे गिरेगा, वहाँ पे फना हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी किस्मत में लिखा हुआ था जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी या 23 साल की, तो तब मेरी बात होगी आपसे। वैसे मैं आपको सुन खपती होंगी, ये होगा वो होगा, बस जो जब लिखा हो तब मिलता है, तो क्या कह सकते हैं हम।
0: बाकी इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग पे आए, फिर ट्रेनिंग पे जाहिर है मैं भी हूंगा यहाँ पे।
1: मैं मम्मा
0: और
1: को मनाऊंगी, सबको मनाऊंगी। अब देखो परमिशन वो वाली, अब सीन शुरू हो जाएगा ना, पहले मैं सबमिट हो जाऊँ, मतलब मेरा फॉर्म और सब कुछ ये हो जाए, ओके, उसके बाद फिर दूसरा सेशन शुरू होता है, घर वालों को
0: आप मेरा
1: मनाने,
0: ख्याल है पहले ही
1: पांच
0: मना
1: साल
0: लें
1: के
0: उन्हें,
1: पांच साल
0: आपको
1: मैं
0: पहले ही
1: उनको
0: मना
1: पहले
0: लेना
1: मना
0: चाहिए। और यहाँ पे मंगल और बुध 2 दिन हुआ करेगी, सारों के लिए अनाउंस कर रहा हूँ जी। 12 से 2 बजे दोपहर के, 12 से 2 बजे 2 घंटे का सेशन हुआ करेगा, और ऑफ माइक होगा 1 महीना और ऑन माइक होगा 1 महीना। और इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कम्युनिकेट कैसे करना है, अपने जज्बात, अपने एहसास, अपनी बात, इसको पहुंचाना कैसे है, वो चाहे आपने इंटरनेट पे करना है, डिजिटल मीडिया पे करना है, या किसी के दिल तक अपनी बात पहुंचानी है कि यार मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ या हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे भी देखो, उसके लिए अच्छे अल्फाज चाहिए, वो हम आपको सिखाएंगे।
1: है ना, इतनी लूज है ना कि किसी की मैं तारीफ भी करूँ ना, तो उसको लगता है शायद टोंट कर रही हूँ, बाकी आप हमें ताना मार रही है कि तारीफ मैं तारीफ कर रही हूँ भाई, अब मैंने तारीफ ही करना छोड़ दी। मैंने कहा मैंने ठेका लिया हुआ लोगों की तारीफ से करने का, कोई हमारी करे ना, हम लोगों की तारीफ भी करें, तो वो भी लोग कहते हैं आप ताना मार रही है, अब क्या कर रही है, मतलब मुझे कुछ खास जरूरत है कम्युनिकेशन की सीखने की।
0: थैंक यू वेरी मच बिस्मा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपको और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। डेफिनेटली आई एम गोना प्ले दैट ट्रैक।
1: थैंक यू सो मच,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ओके, ठीक हो गया सर, चल जाएंगे। 04 2 111 000 101 ईद प्रोग्राम, ईद स्पेशल, बकरा ईद के हवाले से लेट मी टेल यू यार, मैं जब अभी कुर्बानी की बात चल पड़ी है, तो यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा था, तो मुझे आज भी वो मेमोरीज याद आती हैं। दोस्त मेरे कभी मिल जाए, वो पुराने वाले, वो डेफिनेटली मिल ही जाते हैं, आज आज भी शायद मिल जाएंगे। अभी यहाँ से फारिग होके जाऊँगा, हमने गैंग बनाया और सारों के साथ मिलके ना मैंने अपने बकरे के ऊपर सारों को प्रैक्टिस करवाई, ऐसे जमा करते हैं, एक साल दो साल सारों ने सीख लिया। उसके बाद फिर हमने अगले साल सीन ये बनाया, हमने ईद पे ऑर्डर पकड़ लिए बकरा पूरा पूरा बनाने के, और हमने उस ईद पे तकरीबन कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 to 7 हमने जानवर ज़िबा किए और हमने पैसे कमाए। यूनिवर्सिटी दौर था यार, 4,000 रुपये यार, और फिर टोटल हमें उस वक्त पता नहीं मोर देन 10,000 हुए थे। बहुत सारी जगह पे गोश्त का लताड़ा भी किया क्योंकि सारे मेरे साथ वो थे जिन्हें आता भी नहीं था, एक्सपर्ट तो खैर मैं भी नहीं हूँ, और फिर इसी तरह करते कराते उस वक्त खाल भी बड़ी महंगी हुआ करती थी, खालों को भी उधेड़ा, बड़ा ज़ाया किया, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन दैट वाज फन। और अब्बा की मेरी गाड़ी थी, गाड़ी में कसाई बैठ के जा रहे हैं और गाड़ी का सीन बना हुआ है, गाड़ी के पीछे हमने छुरियाँ टोके और वो सारी चीज़ें मुंडी वगैरह रखी है, वो लकड़ी का पीस जिसके ऊपर चॉप करते हैं साजा, गोश्त को रखा है और हम सारे वहाँ पे फेर रहे हैं, घूम रहे हैं कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में। पेट्रोल भी कंपैरेटिवली सस्ता था। वो ईद की शाम हम फिर इकट्ठे हुए और सारों के अंदर पैसों की फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, बड़ा मज़ा आया। आप लोग किस तरह से ईद मनाते हैं, डू टेल मी, वॉट एवर, कोई हाथ तो नहीं काट लेता किसी के ख्यालों में। जासर जरगार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे है भाई, श्रीनगर से आप आए, आपको भी ईद मुबारक। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जी भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का शुक्र, आप बताइए।
2: ईद मुबारक सबसे पहले।
0: बहुत शुक्रिया। कौन साहब है हमारे साथ, आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक मेरी तरफ से, बहुत सारी दुआएं हैं। कहां से फोन कर रहे हैं?
2: मैं मंडी बहाउद्दीन से रानासन बात कर रहा
0: हूं। मंडी बहाउद्दीन से, कैसे हैं भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाए आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी गुजरी ईद?
2: बहुत अच्छी।
0: अच्छा जबरदस्त, क्या किया?
2: हमने कुर्बानी की थी, एक बकरा किया था और एक कट्टे का है।
0: और
2: जी एक कट्टा किया था। आय
0: हाय यार, कट्टा भी बड़ा कामदार चीज, बड़ा मजा आता है। पिंडों में जाए ना जी, कट्टे का गोश्त खाने का बड़ा मजा आता है
2: ना? मैं आपके पास आऊंगा इंशाल्लाह,
0: कट्टे का गोश्त लेके।
2: गोश्त तो इतनी देर में पड़ा नहीं रहेगा, मैं फ्रिज में रखूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी, हमने कट्टा भी किया, हमने बच्चा भी किया, हमने बकरे भी किए, तीनों आइटमें थोड़ी थोड़ी सी कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। बहरहाल उसमें कोशिश यही होती है कि यार मैक्सिमम बांट दे ना, बांट दे बांट दे, मकसद ये बांट दे, कुर्बानी है कुर्बानी करें, बांट दे सब, बांट दे।
2: किलो रखा होगा, बाकी सब मैंने बांट दिए।
0: और इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे अर्ज करता जाऊँ तमाम सुनने वालों से, मेरी ये बड़ी मोदबाना सी गुजारिश है, एक मैं ट्रेंड यहाँ पे देखता हूँ जिस पे मैंने पहले तो अपने खानदान में पूरे अप्लाई किया, फिर अपने बहन भाइयों में भी अप्लाई किया। मैंने कहा जी ये कुर्बानी का मकसद ही होता है, जो लोग नहीं कर रहे उन्हें पहुंचाया जाए। हम क्या करते हैं एक रान दे जाते हैं, एक रान ले जाते हैं। हम 2 किलो का शॉपर देते हैं, 2 किलो का ले जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं साढ़े कोल तो जगह ही नहीं फ्रिज रखने वास्ते, फिर गोश्त खराब हो जाता है या कोई मसाइल बन जाते हैं। भाई दूसरों को दें, ये उनका हक है जो नहीं करते, ये आपस में एक्सचेंज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो पूरे पहले बड़ा वाजे करके 2-2.5 साल पहले मेरे मामू की कॉल शॉल आई, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी ये जो है ना ये बंद होना चाहिए, ये मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। और अब आके मेरा ख्याल है मैं समझता हूँ इतना बड़ा हो गया हूँ कि आप मेरी ये रिक्वेस्ट तस्लीम करें। तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मान लिया, और ना हम देते हैं ना वो देते हैं। बहनों को भी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हम भी कुर्बानी करते हैं, आप भी करते हैं, गरीबों को दें, आपस में क्या बांटते रहते हैं। मैं कहा आपस में बांटने का अगर शौक है ना, ईद के अलावा कभी स्पेशल कुछ चीज लेके आओ तो फिर मैं कहूँ हाँ यार दिस इज गुड।
2: मुझे अभी, मैं काफी दिनों से आपको कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रही थी, तो मेरी जो वाइफ है उन्होंने मुझे बोला है आपने आज कॉल करनी है।
0: कहाँ से बोला है ये भी तो बताया ना, साथ पूरा
2: लाहौर से रिमशा जो है।
0: फिर ऐसे बोले ना कि रिमशा ने बोला है, ताकि रिमशा को पता चले ना मेरे बंदे की कॉल है।
2: हाँ सुन रही है।
0: चलो रिमशा को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
2: यार मुबारक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि हम आप लोगों ने हमें बहुत काफी सारी दुआएं दी हैं और आपकी दुआओं की वजह से ही हमारा निकाह हुआ है और आज के
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को और अल्लाह आप दोनों को खुश रखे।
2: जी आमीन आमीन
0: इंशाल्लाह, आप आओ तो जरूर मिलना जी।
2: जी मैं जरूर इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊंगा।
0: डन ब्रदर, डन डन डन, एनीथिंग एल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह फैज अल्लाह फैज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जमल आई है, ईद मुबारक नाइस शो, आपको भी ईद मुबारक जमल, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ओके आरजे साहब, आपका दिन आज का कैसा गुजरा? आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, एक सॉन्ग डेडिकेट करना है, उनको देखा तो देखते रह गए, ये नहीं मुझे पता कौन सा गाना है। सर जी ईद मुबारक आपको और तमाम सुनने वालों को, आपको भी ईद मुबारक। एंड जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, आई वांट यू टू सेंड अ मैसेज, अ टेक्स्ट मैसेज, अगर आप तक इंटरनेट की रसाई नहीं है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और उसको भेज दें 4471 पर। कुछ लोग कहते हैं आप तेज बोलते हैं, अच्छा फिर आराम से बताता हूँ। SMS करना है आपने, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, फिर अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर। और इसके अलावा मेरी पोस्ट है जी FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह पोस्ट है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी वहाँ के कमेंट आगे मैं मैसेजेस रीड करता हूँ। एंड यू कैन कॉल मी 042-111-0101-0421-1100-1. एंड असद साहब का हिडन टैलेंट है ईद वाले दिन कसाई, मैं बड़ा पक्का कसाई हूँ यकीन करें। मरीना बिलाल कहती है मुझे भी ट्रेनिंग करवा दे, मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ऐसे बनने से आरजे इसको भी देख लूँगी इसी बहाने से। बिल्कुल आप आइए, हमने कब आपको मना किया और आपने कहा व्हाट्सएप का नंबर, बिल्कुल हम ईद के बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। और आज डॉक्स वाइब ने भी अभी मैसेज किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। आबिश जरताश, कितना मायूस किया एक गुमान ने मुझको, ईद मुबारक, आय हाय हाय, बड़ी गल बड़ी गल। अच्छा जी यहाँ पे गाने हैं एक दो चलाने वाले, वो गाने चलाते हैं थोड़े थोड़े से सुनते हैं फिर वापस आते हैं। आहा ओहो हो ओल्ड वाइब्स, मजेदार शायरी है वैसे।

0: Hello, hello, hello. We're gonna take a call. Assalamu alaikum.
1: Walaikum assalam and assalamu alaikum. FM 101 Radio Pakistan se sir aapko welcome khush aamdeed ji aalo. Alan wa salan marhaba bali kariye aalo te pehra
0: ji. Wah wah wah wah. Wah wah. Mashallah, mashallah. Kaif.
1: Eid Mubarak.
0: Eid Mubarak. Kaif, kaif
1: abhi. Sir, kaise hain aap?
0: Alhamdulillah.
1: शुक्र है मेरी कॉल मिल गई थी।
0: कौन है हमारे साथ?
1: मुझे अमारा बेग कहते हैं।
0: ये अमारा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक
1: है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू वेरी मच। आप बताइए, ईद कैसी गुजरी आपकी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी।
0: जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया जी। हमारा क्या कहेंगे,
1: कैसे कर लेते हैं आप?
0: क्या कैसे कर लेता हूँ,
1: इतनी अच्छी बात है?
0: कौन सी अच्छी बात है? मैं बातें ही तो कर लेता हूँ। बातें ही तो
1: नहीं, आप कसाई का काम भी अच्छा कर लेते
0: हैं ना। वो मेरा रेट ज्यादा हो गया, इस करके मैं नहीं करता। मैं क्या है, अफोर्ड ही नहीं करते। 10,000 रुपया बकरे का
1: सर आजकल तो 25-25 ले रहे हैं आप। 10?
0: और मैं जरा कंसेशन पे चलता हूँ ना, कंसेशन पे।
1: अच्छा,
0: अब वरना 25,000 रुपया गाय का चल रहा है।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: तो फिर बकरे का क्या रेट चल रहा है?
0: बकरे का मुख्तलिफ चल रहा है, 10-15 हज़ार रुपया। हाँ जी।
1: बकरा बड़ा होता है कि गाय?
0: बकरा।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरी तरफ से सब सुनने वालों को और आपको बहुत
0: थैंक यू वेरी मच। हमारा और कुछ कहना चाहेंगे
1: सर? रिक्वेस्ट है अगर आप।
0: जी जी बताएं बताएं।
1: राहत फतेह अली खान का है, साडा दिल लोहे दाते नहीं सजना।
0: ईद वाले दिन भी लोहे दे दिल।
1: अच्छा
0: चलो ठीक है, ठीक है
1: सर। ये आपने कहा है ना कि रिक्वेस्ट ऑन एयर करूंगा, तो इसलिए कर दी, वरना मैंने नहीं करनी थी।
0: अच्छा चलो कोई नहीं, हमारा कर देते
1: हैं। अगर आप लगा देंगे तो ठीक है, वरना अदरवाइज कोई बात
0: नहीं। नहीं नहीं,
1: बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू वेरी मच जी, हमारा थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। अल्लाह अर्जुन निमरा मसूद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं निमरा मैडम? आई हैं, कैसी हैं? हाउ वाज योर ईद? कहाँ हैं दोनों मियां बीवी गायब? आज डॉक्स वाइब साहब की मौजूदगी में किसी की गैर मौजूदगी को महसूस करना ही अहमियत की निशानी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आज मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन आज मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला। अराउंड को 7:30-8 बजे में फारिग हुआ, और मेरे जो दोस्त भी सुन रहे हैं, मैं यकीन करें मैं कल जिनको मैंने कहा था और सुनने वाले इसके अलावा भी कि आपको गोश्त दूंगा, कल ज़रूर पहुंचाऊंगा। बड़ी माजरत, आज मैं कहीं नहीं पहुंचा सका। ओहो, दैट वाज टायरिंग। बाकी मैंने हिस्सा रखे जी। मैंने आके अरबाब अली, ईद मुबारक सर आपको, आपको भी ईद मुबारक जी। दिस सॉन्ग इज़ ऑन रिक्वेस्ट। ये गाना सुनने दी, ये गाना भी सुने, इसके बाद आता हूँ।

0: जी, यू कैन कॉल मी 04211001110011001001 और वक्त हो चुका है 11:33 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं ईद स्पेशल विद आरजे डॉक्स। और यहाँ पे किसी का मैसेज था अभी, यहाँ पे मैं साथ था, फेसबुक वाले मैसेजेस शामिल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अरबाब अली, आपने पसंद किया ईद के हवाले से बात है जी, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आई हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमत, बिस्मिल्ला सादी जी ना रावत हो आयो उना रावत हो बिस्मिल्ला करम मैं सदके गच्छा मैं कुर्बान गच्छा आज डाक तो साज जी इतनी अमरका ने थोड़े हो
0: तुसानी भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो जी।
1: ओ थोड़े हो बहुत बहुत बोतिया बोतिया मुबारका ने इतनिया
0: बड़ी मेहरबानी।
1: ओ साजी
0: जी जी,
1: मैं परेशान हूँ, मैं वजह यह है कि मेरी जोजा मोहतरमा जो है वो उनकी पहली ईद है, वो दुनिया से तीन बेटों को छोड़कर, तीन बेटियों को छोड़कर और पोते पोतियों को छोड़कर हमें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं आदर इसलिए हुआ हूँ कि आपके शो में आना बड़ा जरूरी था, कि गम बुलाने के लिए आ गया हूँ, एक शेर आपकी नजर करूंगा, थोड़ा सा दो लाइन में गुनगुनाऊंगा आपकी इजाजत से।
0: जी जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह।
1: उदय मोहतरम, सबसे पहले उस्ताद मोहतरम आधे डॉग्स, मैं कुछ बंदों को सलाम देना चाहता हूँ। एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी तीर रानी जनाब रबशा बेटी, मैं उन्हें मुबारकबाद, उनका जो हुआ है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बेटी को,
0: बड़ी मेहरबानी।
1: इसके अलावा उनके साथ मैं हैदराबाद से शायद अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इसकी, और तमाम बातों को इस मुबारक पेश करता हूँ। इसके अलावा बादशाह अब्दुल गफूर सर खारिया से आपका शो सुन रहे हैं, आपको बहुत मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। मेरे सिंगर उस्ताद त्रेड़ अवान साहब बहफ्तों भरा सलाम सैल्यूट और आपको दवा पेश कर रहे हैं।
0: जी बड़ी मेहरबानी जी।
1: उस्तादे मोहतरम, मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, एक शेर पढ़ूंगा
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: अपना दिल बुलाने के लिए आपकी इजाजत से।
0: जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
1: तमन्ना मिट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है डॉग,
0: हाय हाय हाय।
1: तमन्ना मिट गई फिर भी तेरे दम से मोहब्बत है डॉग, मुबारक हो तुम्हें इसकी खुशियाँ, मुबारक हो तुम्हें इसकी खुशियाँ, मैं गम से मोहब्बत है डॉग।
0: क्या बात,
1: तो ये शेर के साथ थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा
0: जी।
1: तेरे गम से मोहब्बत हो गई है, सितम सहने की आदत हो गई है, तेरे गम से मोहब्बत हो गई है, सितम सहने की आदत हो गई है। उतारे बोलो आपको क्या,
0: बड़ी मेहरबानी।
1: गम से मोहब्बत हो गई,
0: क्या बात क्या बात,
1: सितम सहने की आदत हो गई है, तेरे गम से मोहब्बत हो गई।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़ के माफी का तलबगार को,
0: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: उस्ताद मोहतरम जिंदाबाद,
0: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी, सारों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आर जे सुबिया शफीक का ही है, ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक, आई होप यू हैड अ गुड डे। आप इस अरताश कहती हैं, रुलाएंगे क्या, रोले अच्छा होता है रोना सेहत के लिए। आज डॉक्स वाइब्स पर्पल अच्छा ओके अच्छा जी, तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। आर जे सर जी, तितली फ्रॉम लाहौर, तितली उड़ी किधर है तितली, ईद मुबारक, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, हम फूलों की तरह महके जब आप आए। आ हा, क्या बात है तितली जी, आपको भी ईद मुबारक।

0: ראש פנקרת.
1: אחיו. What a torture. Song नहीं, इसके अंदर जो बात है.
0: हमसे कहते हैं ना,
1: दोस्त बनके रहते हैं. यार, it is a torture, seriously. दोस्त बनके रहते हैं. कबल नाज ने इस्लाम किया. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज जी. ईद मुबारक वंस अगेन टू एवरीवन. एंड आप सुन रहे ईद स्पेशल विद आरसी डॉक्स फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ लाहौर एफएम 101. And I hope you guys are doing well. और ईद का दिन आपने अच्छा गुजारा. अभी यहाँ पे मैं मैसेजेस फेसबुक वाले शामिल करता हूँ. अम्बरीन लाला ने मैसेज किया इस्लामाबाद से. कहती हैं आठ अदद पाए धोले. कट्ठे ही आठ अदद पाए, मतलब इसके लिए आपको दो बकरे चाहिए या दो गाय. धोने हैं अगर आपने आठ पाए. वाह वाह, क्या शायरी बन गई. अच्छा, एक प्याज और तीन अदद लहसुन की गठी काट कर देसी घी में भून लें. नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी डालकर इसमें पाए डाल दें और तकरीबन 15 मिनट तक थोड़े पानी डालकर भून लें. इस मसाले में फिर 3 ग्लास पानी डालकर हल्की आंच पर 4 घंटे के लिए गलने के लिए रख दें. प्रेशर कुकर इस्तेमाल ना करें. 4 घंटे बाद मज़ेदार पाए रोगनी नान के साथ एंजॉय करें. अम्बरीन लाला, मेरे मुँह में आ गया पानी. लेकिन ये 4 घंटे में बनने वाला हम लाहौर में इधर नहीं करते. हम जो है ना पूरी रात रखने के कायल हैं, उसके बाद फिर हम खाते हैं. बट ये भी ट्राई की जा सकती है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रेसिपी. मुंह में पानी आ गया, छा गया. अच्छा जी, हसनैन दाऊद आफ्टर लॉन्ग टाइम. अस्सलाम वालेकुम भाई. हसनैन मरी से ईद उल अज़हा मुबारक. वालेकुम अस्सलाम हसनैन भाई, आपको भी ईद मुबारक. एंड सलीम दिलकश, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप बताइए. आप खैरियत से हैं? आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुश आमदीद कहा. थैंक यू वेरी मच. नेपाल से सुन रहे हैं आपका, बहुत शुक्रिया भाई. आपको ईद की खुशियाँ मुबारक. आप प्रदेश में हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. आयशा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम. आरजे कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ. ज़ीशान आएंगे कल, कल उनका शो होता है जी. कल आप सुनेंगी उन्हें 12 बजे, ज़ीशान नासिर का शो. एंड अम्बरीन, ओके थैंक यू वेरी मच, आपका सलाम भी मौसूल हुआ. और ज़ीशान नासिर के शो में जब आप जाएँ तो मैं तो खुद कर ही लूँगा, आपने भी मेरी तरफ से लाजमी पैगाम देना है कि आज डॉक्स ने बड़े प्यार और मोहब्बत से ईद मुबारक कहा था. अच्छा कवलनास, ईद मुबारक आपको, आपको भी ईद मुबारक हो जी. थैंक यू वेरी मच. हेलो
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
2: भाई, आपको ईद मुबारक.
1: आपको भी ईद मुबारक, आपको डबल डबल मुबारक हो. माशाल्लाह, निकाह की भी मुबारक हो.
2: खैर मुबारक,
1: चलो शुक्र है, आई एम हैप्पी फॉर यू. सुनाए ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी?
2: आज तो
1: आज दोनों मियां बीवी आ गए मेरे शो में.
2: उनकी कॉल इतनी मुश्किल से मिले कि मैंने कहा पहले आप ही मिला लेंगे. मैंने कहते कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मैंने कहा चले अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं.
1: अच्छा चले मिल.
2: मैंने कहा आज इंशाल्लाह मिल जाएगी. मैंने कहा क्योंकि आज जो है ना आज डॉक्स पे कॉल फिक्स कर रहे हैं,
1: है ना.
2: मैंने कहा जरूर पिक करेंगे वो आपकी कॉल. और आपने कॉल पिक कर ली उनकी.
1: देख लो देख लो.
2: मैंने कहा चले आपका गिला उतर गया. वो कहते हैं कि आज डॉक्स पे मेरी कॉल पिक नहीं करते. मैंने कहा वो पिक करते हैं क्योंकि लाहौर का एक ही नंबर होता है, काफी लोग कॉल कर रहे होते हैं.
1: थैंक यू वेरी मच. और इमशा कुछ कहना चाहोगे आज के हवाले से?
2: और मैं आज ये कहूंगी कि आज रोक से आज बहुत थके हुए हैं आप.
1: अच्छा
2: हाँ जी, आपकी आवाज से जो है ना आज लग रहा है कि आज आपने बहुत ज्यादा काम किया.
1: अरे काम तो करना पड़ता है, लेकिन इतना गुजारा मुजारा है, इतना थका नहीं हूँ मैं.
2: लेकिन देखें कि फिर भी आप लोग आते हैं यहाँ शो करने के लिए हमारी खातिर.
1: हाँ नहीं, इसमें दोनों दो तरफा लालच होता है आप लोगों के लिए. तो अगर यहाँ पे बैठ के कहूँ महज मैं आपके लिए आया हूँ तो बहुत गलत बात है. कि अपनी भी ठरक होती है, अपना भी चस्का होता है, मज़ा आता है ना आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों के कमेंट्स लेके.
2: ये चीज़ें हमें भी तो इंतजार होता है ना आप लोगों का, क्योंकि आपकी आवाज का भी तो हमें भी तो चस्का हो जाता है सुन के, क्योंकि हमें भी आदत हो जाती है आप लोगों की आवाज सुनने का. क्योंकि आपकी आवाज सुनने बगैर हम लोगों को नींद भी तो नहीं आती ना. जब आप छुट्टी करते हैं हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे फलाने आज क्यों नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया उन्हें.
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप.
2: और आपने आज ईद पे कौन सा सूट पहना था?
1: मैंने मुझे कलर कोई डार्क सा कलर था, पर्पलिश शेड था कोई।
2: ओके तो भाई आपने कल मुझे ये बताना कि अगर आपने कहा था ना कि अगर रंगों के बारे में आप कल पूछेंगे
1: कल तो अगर कल
2: जी जी
1: अच्छा चलो देखते हैं कल क्या होता है, कल कंबाइन शो होगा मेरा
2: करेंगे। तो अगर दोनों सेम ही सेम कलर हो जाए यानी तो उसका क्या सूरत हाल होती है आपने वो बतानी है।
1: आप कलर बताएं।
2: नहीं नहीं कलर तो आप जैसे चेंज चेंज पूछ रहे थे ना कि यानी कि
1: आप मुझे कलर बताएंगे सेम कलर कौन सा कलर फिर उस पे बात होगी।
2: सेम सेम यानी कि सेम यानी दोनों ब्लैक हो जाए
1: दोनों
2: कलर या ब्लू हो जाए
1: ओके
2: तो उनका क्या रवैया होता है।
1: ओके करें
2: जी और जो भी आप भी आपको सुनिए तो उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अभी इश्तियाक अंकल आए थे इस्लामाबाद से उनको भी मेरा सलाम और बहुत शुक्रिया उन्होंने मुझे मुबारक दिया। सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। उन्होंने भी मुझे ईद जो है निकाह की इन्हें मुबारकबाद दी थी बहुत शुक्रिया। और आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें मेरी दुआ है। और कल भाई आप शो करेंगे तो आज जान जो भाई और रहमान भैया को भी बुलाइए
1: इंशाल्लाह। हां हां रहमान भी आएगा इंशाल्लाह।
2: थैंक
1: यू वेरी मच।
2: अल्लाह
1: हाफिज़ी। अल्लाह हाफिज़ रमशा थी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ईद के दिन पता चलता है कि आपके मोबाइल फोन में सेव कितने नंबर बेकार हैं। आज डॉक्स वाइब्स ठीक कह रही हैं। मरीना बिलाल बर्फ वाला गोला खाना है बिल्कुल खाएं जी आपको किसने मना किया। और जुगनू जूनियर अगर आप ईद पर किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो मत करें क्योंकि लोगों में जानवर कुर्बान करने का हौसला होता है ना कुर्बान करने का नहीं। वाह वाह।

0: दिस इज आज डॉक्स, आप सुन रहे स्पेशल विद आज डॉक्स एफएम 101 लाहौर के स्टूडियो से, और बात कर लिए जी आजीद के हवाले से, जस्ट शेयर व्हाट एवर यू वांट टू शेयर, कॉल करें 04221100101 0421100101, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड जो भी ईद के हवाले से आप बात करना चाहे कर सकते हैं। नज़ीर खोसा साहब थैंक यू वेरी मच, कल पे मोमिन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। अकबर खान साहब मेरे बड़े अच्छे लिसनर हैं, कराची से सलाम किया, प्यारे भाई कैसे मिजाज हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। और आपने वसीम अहमद, जैनब अरशद, सोबिया, नायाब, शीबा मलिक और सारों को, आप सबको आपने ईद मुबारक कहा, थैंक यू वेरी मच जी। किंग फजल काकड़ साहब है कोयटा से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड शो पसंद किया आपने, बहुत शुक्रिया जी। हर ईद पर नाराज हो जाते हो, हम ईद मनाएं या तुम्हें, ऐ तो रौला है जी, पाए ने तो करना पैदा है, तुमने फकत कहना है ईद मुबारक मुझको और मेरी ईद ने त्यौहार में ढल जाना है। वाह वाह जुगनू जूनियर, बहुत अच्छा। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच यार, आपके लेटर सारी उम्र मुझे याद रहेगा, थैंक यू वेरी मच यार। ओके बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सोबतपुर बलोचिस्तान से आपने मैसेज किया, थैंक यू। अगर ओके ठीक हो गया जी, अगले मैसेज देख लें कोई। अकबर खान साहब थैंक यू वेरी मच जी, साडा दिल लोए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी,
0: कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद अकबर खान नियाज़ी।
0: कैसे हैं आप, खैरियत से हैं
1: जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक।
0: आपको ईद मुबारक सर।
1: खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक
0: सर, बड़ी मेहरबानी सर, क्या कहेंगे
1: जी? बस सर आपका शो सुनते हैं
0: सर, बड़ी मेहरबानी,
1: दिनों से आपके शहर में आए हुए हैं।
0: अच्छा माशाल्लाह, कैसा लग रहा है मेरा शहर?
1: तो दिल नहीं लग रहा।
0: अच्छा, वैसे सारे शहर ही मेरे हैं यकीन करें।
1: नहीं वो तो है, लेकिन लाहौर में आप रहते हैं ना? लाहौर,
0: हाँ लाहौर में मैं रहता हूँ। चले दिल भी लग ही जाएगा, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा जब दिल भी लग ही जाएगा।
1: हाँ ये तो है।
0: और कुछ कहना चाहेंगे ईद के हवाले से?
1: सर कोई पैकिया सॉन्ग प्ले कर दी।
0: कौन सा
1: पैकिया? कोई भी
0: बताएं ना, बताएं बताएं, कौन सा सुनेंगे?
1: कोई भी आप अपने उसमें।
0: परदेश कटना लगाऊं जी, सराइकी वाला
1: जी?
0: परदेश कटना लगा दूं आपके लिए?
1: लगा दें
0: सराइकी वाला।
1: वैसे आप सराइकी के सॉन्ग बहुत कम प्ले करते हैं
0: सर, आप मुझे बताइए, मैं लगाता हूँ, हुक्म करें।
1: नहीं ऐसे मैं सुन रहा हूँ ना तकरीबन कोई 20-25 दिनों से
0: सर,
1: तो आपके प्रोग्राम
0: मैं ना ज्यादा कोशिश ही होती है, उर्दू वाले गाने लगा रहा होता हूँ और सराइकी वाले लगा देता हूँ मैं कभी कभी, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी होती है, प्रोग्राम मेरा क्योंकि उस फॉर्मेट में चल रहा होता है, तो जब फिर होता है दरमियान में फिर लाजमी सराइकी पश्तो और इंग्लिश भी फिर ऐड कर लेता हूँ मैं 2-3 शोज के बाद ना। बाकी आप मुझे बताया करें जी, मैं बिल्कुल, शाह साहब ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी तरफ से भी याद मुझे भी करवा दिया करें, एक आधा सराइकी और पश्तो गाना लिस्ट में डाल दिया करें कोई भी जो नया आया। ठीक हो गया सर, ओके हो गया, डन करें, और कोई हुक्म?
1: मेहरबानी,
0: ठीक है सर, सर खुश रहें, आपको ईद मुबारक, ये गाना आपको, थैंक यू।

इस गाने को सुनने के बाद ना सिर्फ ये एक चीज़ नहीं, और पता नहीं क्या क्या माइंड में ट्रिगर होने लग जाता, मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद आना शुरू हो जाती हैं जिन्हें मैं नहीं रिकॉल करना चाहता, बट और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। इट हर्ट्स एट द सेम टाइम दिस इज रियलिटी, ये है हकीकत है।

0: 0421111001 जी। हेलो हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन सा है हमारे साथ?
1: आदाब सर।
0: तस्लीम जी, कौन है हमारे साथ?
1: शाह फैसल बात कर रहा हूँ।
0: शाह फैसल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कितना खूबसूरत सर।
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप ठीक हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी।
1: ईद कुर्बान मुबारक।
0: आपको भी ईद कुर्बान मुबारक।
1: खैर मुबारक, खैर
0: आपके लिए, अल्लाह इसको बाईस रहमत बनाए।
1: आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
0: सर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से?
1: अल्लाह हमारे मुल्क पे रहमत की बारिश करे।
0: आमीन आमीन आमीन आमीन।
1: और सर जी, आपको जी, तो हम सुनते हैं
0: सर,
1: इहसान नासिर को भी आपसे जो बात हो रही थी पिछले हफ्ते
0: जी,
1: और प्रोग्राम भी हमने सुना था
0: सर। बड़ी मेहरबानी है आपकी और इहसान साहब की भी, वो मेरी कॉल भी अटेंड कर लेते हैं, उनकी मेहरबानी।
1: बस ये तो आपका बड़ा फन है ना?
0: नहीं नहीं नहीं, भाई है मेरा छोटा।
1: बड़ा फन है, बड़ा आदमी बंदा उससे नहीं बनता, पैसों से या कोई किरदार से बंदा बनता।
0: ऐसे ही है, लेकिन जिशान वाकई मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह।
1: बस वो बोलते भी बड़ा मीठा
0: है।
1: मीठा आदमी है, मीठा मीठा हाँ, मीठा
0: बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, छोटा भाई है मेरा। कुछ कहना चाहेंगे ईद के हवाले से?
1: बस अपने हमसायों को याद रखें इस ईद पे।
0: बिल्कुल बजा,
1: गरीबों को याद रखें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल सर। शाह फैसल साहब, कितना खूबसूरत नाम।
1: शुक्रिया सर,
0: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, आई एम गोना टेक द लास्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी
2: अब्दुल गफूर बात कर रहा है, कराची वाला अनारकली से।
0: कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
2: अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है अल्लाह पाक का। जिशान नालसर जो है ना, वाकई में आपकी तारीफ करता है।
0: मैं जिशान
2: आपकी और कयानी साहब की, वो कयानी बच्चा जो है ना उसकी, वो भी बड़ा शहर है। आपकी तो बहुत ही करता है माशाल्लाह।
0: मैं भाई है ना छोटा।
2: प्रोग्राम का भी मजा आया मेरे को आपके साथ, यहाँ किया था ना ज्वाइन। हाँ जी, कोशिश करता है कि फिर ज्वाइन हो।
0: नहीं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे ना जी।
2: एक दिन आप यकीन करेंगे, वो बंदे ने चार्ज का प्रोग्राम किया।
0: अच्छा।
2: मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये इंसान है जिन ने क्या है। और ड्रेसिंग भी करके सारी, कहता मेरा अबू भी ऐसे ही कहता है मेरे को। बहरहाल जो हज मुबारक हो पूरे आलम को, सुन्नत इब्राहिमी देखो 8,000 साल से हो रहा है।
0: सुन्नत
2: इब्राहिम नबी आए, सबको अल्लाह पाक ने कहा कि आपने वो अदाएं पसंद आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हाजरा अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो सारे हज के अरकान सारे अल्लाह पाक ने
0: ऐसे ही बनाए हुए।
2: देखो कुर्बान जाए उनकी माशाल्लाह, और हमें तौफीक दे।
0: आमीन।
2: तुम्बा आया था और फिर हैसियत के मुताबिक कहा गया है कि आप गाय करें, ऊंट करें, बकरा करें, जो भी अल्लाह आपको दे, और आप हज भी करें।
0: आमीन।
2: उमरा भी करें। अल्लाह पाक हमें और आपको भी तौफीक दे
0: सर। थैंक यू वेरी मच।
2: आप हमारे एनजीओ के मेंबर बनोगे इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह
2: आप मिलकर मीटिंग करेंगे आपकी कश्मीर, वो वहाँ पे शिमला पहाड़ी पे आएंगे, बैठेंगे, आपसे मशवरे करेंगे, फिर आगे चलेंगे
0: सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत
2: अल्लाह आपको आलम को और हमारे फौजी भाइयों को जो बॉर्डरों पे इस वक्त माशाल्लाह हमारी एजेंसियां वगैरह समुंदर सबको जो ईद कर रहे हैं उधर, और हमारी हिफाजत भी कर रहे हैं, उनको भी ईद की मुबारक हो।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली कॉल्स एंड फॉर द विशेस। आप सबका बहुत शुक्रिया। 11:55 हो गए, और अगर हम बात करें आरजेस के हवाले से, जाहिर है सारे आरजेस मेरे कुलीग्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव जॉइनिंग एंड टॉकिंग टू एवरी सिंगल पर्सन। लेकिन एक होता है ना जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, मेरी यहाँ पे ज़िया और रहमान के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा। और अगर इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में दी ओनली पर्सन जिशान नासिर, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये तीन आरजेस जो है ना जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, खुल के जो भी बात होती है, और हंसी मजाक भी मेरा चलता है। सच अ लवली पर्सन थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत चिल सीन है। बाकी सारे भी मेरे लिए उसी तरह मोहतरम है जी। रिजवान सदीक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास यहाँ पे थोड़े से ऐड हैं, वो चलाने हैं, दो ऐड हैं, फिर उसके बाद वापस आके आखिरी एक मैं प्ले करूँगा और आपसे इजाज़त लूँगा। Stay tuned.
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
3: जब किसी मुल्क में आबादी वसाइल से ज्यादा हो तो वहाँ मौशरती बिगाड़ पैदा होता है।
4: पाकिस्तान को भी आबादी में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है।
5: जबकि आबादी में ये बेहंगम इजाफा माओं और बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है।
6: ये वक्त है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और खानदानी मनसूबा बंदी से आने वाला कल रोशन बनाएं।
7: हमारा दीन इस्लाम हमें अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारने और कुंबे की तश्कील में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की तलकीन करता है।
8: कुंबे की तश्कील में बच्चों की ज्यादा तादाद को नहीं बल्कि बाहमी मशावरत से माँ और बच्चों की सेहत को तरजीह दें।
9: खानदानी मनसूबा बंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं या हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब।
0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है जी 11:58, 27 मई 2026 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं ईद स्पेशल विद आज डॉक्स। और आई वाज वेटिंग फॉर समवन स्पेशल, मेरा एक बड़ी बड़ा अच्छा दोस्त रहीस है। 2026 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं ईद स्पेशल विद आज डॉक्स। और आई वाज वेटिंग फॉर समवन स्पेशल, मेरा एक बड़ी बड़ा अच्छा दो

0: करें एंड ईद को बकरों को या गोश्त को जो भी गोश्त है उसको फ्रिज की जिनत मत बनाए, कोशिश करें दूसरों को खिला दें, अच्छा होता है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो साहब तशरीफ लाए उन्हें माइक पर ले आता, लेकिन कोई नहीं आज नहीं, ज़रा ज़रूरी होता कभी कभी ना ले आना है जी। तो अभी यहाँ पे मैं चले एक आखिरी कॉल फिर ट्राई कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: मेहर फातिमा ने मैसेज किया, कहती हैं मेरे वालिद साहब के बाद मेरी पहली ईद है, बहुत सैड थी। मेहर फातिमा बहुत सारी दुआएं हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मेरी भी दायर है गुजरी है ईदें, परेशान नहीं हूँ। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कौन साहब है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम,
1: ये सर भाई लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद यूसुफ से बात कर रहा हूँ।
0: जनाब नवीद साहब कैसे हैं
1: जी? दम दम खुश थे, हर दम खुश
0: चले, माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहे जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। कुछ कहना चाहेंगे
1: सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको और आपकी पूरी मैनेजमेंट को दोनों हाथों से सलूट है सर हमारा।
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक होता है वो कहना पाइन सलूट है तानू, वो वाला तो नहीं?
1: हाँ जी, और तेरा दूरों के लोग कहते नहीं भाई तानू सलाम है कहना।
0: बिल्कुल ठीक हो गया सर
1: जी। सर से वो मैं तुम यही कहना सी कि कल जो शो करने वास्ते आओगे तो मैं कोशिश करांगा 100% के भरा ना मुलाकात होए भाई मेरी।
0: अच्छा जी चले ठीक है जी।
1: हाँ जी
0: ठीक है सर, सर ठीक हो गया।
1: हाँ
0: ओके सर, ठीक है सर,
1: यही कहना
0: जी ठीक हो गया।
1: मैं यही कहना सी कि मैं क्या वो बार बार मैं क्या नाम दस देना ना उन्होंने जो मैं आ गया थे।
0: अच्छा तुसी आओगे आप ही गार्ड मैनू दस के पूछ लेंगे।
1: ठीक हो गया, मैं क्या उधर पिछली बार भी आया था ना तो घंटा बाहर ही खड़े।
0: अच्छा
1: बाहर ही खड़े थे। हाँ जी तुम्हें पता है ये।
0: चलो कोई नहीं इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल,
1: बड़ी मेहरबानी,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अब मैं आपसे इजाज़त लूंगा। और मैसेज है टॉपिक, जब 16 जून को स्टूडेंट स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आए तो वो इंटरव्यू किस किस्म का होगा? कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्या तैयार करना होगा? अगर मालूम हो जाए क्या बोलना है तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको यही तो सिखाना है बोलना कैसे है, जब आपको बोलना हमने सिखाना है तो उसमें आपका क्या इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बेफिक्र होकर आप लोग तशरीफ लाइए, बस दैट्स इट। यू गाइस आर सपोज्ड टू पार्टिसिपेट, और जो हम ट्रेनिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम करा रहे हैं बस उसमें तशरीफ लाइए, हम आपको बोलना सिखाएंगे। और असद सरदार साहब आपको मैसेज मिला, थैंक यू वेरी मच जी, और आपने कहा गाना लगाएं, बिल्कुल लगाएंगे, बेशुमार गाने हैं जी, हम पाकिस्तान आर्मी के लिए ही सब कुछ है। साइमर रफीक साहब लाहौर से, इस्लाम अलैकुम आरजे, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोड्यूसर खतीजा मुराद साहिबा और तमाम सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अकबर सामा हार्ट्स भेजे, थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज़ आरजे डॉग साइनिंग ऑफ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ईद इन्जॉय करें। And the song is for you. Take care. Bye bye. Allah Hafiz. Mujhe jana hai. Mujhe zaruri hai jana. Warna main ruk jata Rehman ke aane tak. Aaj nahi ruk paunga. So apna khayal rakhiye. Inshallah kal mulaqat hoti hai. And this song is for you. Ye shabab ka alam. ये अंगड़ाइयाँ, ये खूबसूरत बिखरी हुई जुल्फ़ें, ये आँखों में खुमारियाँ, ये लबों पे मुस्कुराहट, और ना जाने क्या क्या ख्याल उभरते हैं तेरे ये हुस्न को देखकर। कभी सोचता हूं जो छू लिया तुझको तो जल जाऊंगा मैं तेरे हुस्न की आग से। बहकने महकने का वक्त तो शायद मिले ही ना मुझे, अगर जिंदा रहा तो फिर सोचूंगा कुछ और। ये शबाब का आलम है तेरा, संभाला नहीं जाता मुझसे मगर दिल मेरा। दिस इज आरजे डॉग्स साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे गाना आपके लिए, जाना नहीं है, रहमान अनवर आएगा, सुनिएगा।

0: FM 101.
1: आपकी खुशियों में आपके ज़ौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, मौज मेला, हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: भलकते कैसा ये चांद निकला।

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum. Radio Pakistan FM 101 ke Barah Rast Lahore ke studio se program hai Eid special program. Aaj hum zara mamool se hatkar bahut sari baatein karenge. Eid ke hawale se main aate kafi late ho gaya aaj hai na. By the way, मुझसे पहले RJ Dogs प्रोग्राम कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम उन्होंने आपके लिए प्रेजेंट किया, और अभी ईद की ट्रांसमिशन जो है वो जारी और सारी है, और इसी तरह से आज का मुकम्मल दिन आप ईद के मुख्तलिफ खूबसूरत से प्रोग्राम सुनते रहेंगे हमारे बेहतरीन RJs के साथ. क्या हाल चाल है आप सबके? आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले मेरे पाक परवरदिगार की रहमत के साए तले होंगे, मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि ये वाला ट्रैक मैं सबसे पहले आपकी समातों की नज़र करूं और फिर वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस तरह से आज के प्रोग्राम को, आज की ट्रांसमिशन को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं. आज बिल्कुल मामूल से हटकर प्रोग्राम होगा. आज आपकी लाइव कॉल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और आपसे ईद, ये जो बकरा ईद है, ये जो ईद उल अधा है, इसके हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे.

तेरा नाम चंद सजना। ओए हो, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है ना। अभी आते हुए मैंने सुना तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसको प्रोग्राम का पहला हिस्सा बनाऊंगा, पहला ट्रैक प्रोग्राम का बनाऊंगा।

0: आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि प्रोग्राम में जो टाइम है वो बहुत तेजी से गुजरता है, 12:38 हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा शब के 2 बजे तक। हम इस ट्रांसमिशन में बहुत सारी बातें करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। आज मामूल से बिल्कुल हटकर प्रोग्राम होगा, लेकिन एक सवाल जरूर होगा जो सिर्फ और सिर्फ ईद उल अजहा से रिलेटेड सवाल है। इसको किसी भी और तरह से आपने नहीं लेना, ठीक है ना? तो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप इस सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, या ईद उल अजहा के हवाले से अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात, और उधर हज के तमाम फराइज सर अंजाम दिए गए, और किस तरह से वहां पे समा था, घर में किस तरह से मुकम्मल टीवी ऑन रहा, कल भी आज भी, और कितना कितना कितना मजा आ रहा है इस हवाले से, उस चीज को लाइव देखते हुए, उस खुतबे को लाइव सुनते हुए कितना मजा है। इंसान का मन जहां पे बहुत ज्यादा सुकून महसूस करता है ना, उसी की बातें ज्यादातर करता है। मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर, मैं इस सवाल को आपके सामने रखूंगा, फिर आप किस भी तरीके से उस सवाल को लेते हैं और उसका जवाब जिस भी तरह से आप देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपके सामने सवाल रख दूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये सवाल आप तक जरूर पहुंचे। ईद उल अजहा के मौके पे हमें सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? ईद उल अजहा के मौके पर हमें सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? ये सवाल जितना सुनने में सिंपल लगता है, इसका जवाब जैसे ही देने की कोशिश की जाएगी या देने के लिए जबान अल्फाज तलाश करने की कोशिश करेगी तो कुछ देर के लिए आप रुक जाएंगे, कुछ देर के लिए आप ठहर जाएंगे। आप ये चाहेंगे कि मैं एक बार फिर से सोच लूं, एक बार फिर से इसके ऊपर गौर व फिक्र कर लूं, क्या ये जो जवाब मेरे मन में मेरी जबान से बहुत तेजी से अदा होना चाहता है, क्या ये जवाब बिल्कुल सही है? सच में इसी तरह से हमें करना चाहिए? यही चीज है जिसका ख्याल सबसे ज्यादा रखना चाहिए। जो मैं कहने वाला हूं यही बात सही है? जी हाँ, आप मुझे बता सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स अभी से मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। आप आकर अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात, और आज आपके लिए बिल्कुल तमाम चीजें खुली हुई हैं। किस तरह से आप जानते हैं, आज आप कोई ट्रैक फरमाइश कर सकते हैं, इंडियन ट्रैक्स के अलावा कोई भी, किसी भी मुल्क का कोई भी ट्रैक आपका दिल चाह रहा है इस समय सुनने का। ईद की खुशियां हैं और मैं खुशियों में इजाफा करना चाहता हूं। सवाल साथ में चलते रहेंगे, बातें साथ में इसी तरह से रवा दवा रहेंगी, गला पहले से कुछ बेहतर है, खांसी बिल्कुल नहीं है, किसी हद तक कभी कभी कुछ ऐसा हल्का सा दौरा पड़ता है, जुकाम बिल्कुल खत्म हो चुका है और आपकी दुआओं से मैं सेहत याब हो चुका हूं। इस समय लाइट्स दोबारा से मैंने बंद की हुई हैं, वैसे अमूमन खुशी के मौके पर रोशनियां बहुत ज्यादा जगमगा रही होती हैं, लेकिन मेरे अंदर की जो रोशनियां हैं वो आपको आवाज की सूरत में, एक्सप्रेशंस की सूरत में आपको महसूस जरूर होंगी, लेकिन जो मेरे सामने का समा है वही 2 मॉनिटर्स हैं जिनकी लाइट्स आंखों को चुंधिया दे रही हैं ताकि दीवार नजर ना आए, और पूरी दुनिया, पूरा आलम जो है मेरे सामने इस वक्त बिल्कुल मुजयन है ईद की खुशियों में। रब ने ये हुक्म दिया है कि इसको सेलिब्रेट करो, इन खुशियों को सेलिब्रेट करो, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना चाहिए मैं बताऊंगा आपको ईद के हवाले से। आपको भी मालूम है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर दोबारा से याद दहानी के लिए एक बार फिर से दोबारा से आपको बताऊंगा कि ये ईद उल अजहा किस लिए है, क्या चीज है जिसकी कुर्बानी करनी है, किस चीज को कुर्बान करना है हमने। हाँ, बाय द वे इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहिबा, और सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते हैं जुबैर बशीर साहब, नगमाना आदिल बुखारी साहिबा, स्टेशन डायरेक्टर हैं अहमद सुहेल बसरा साहब, आदिल भाई मेरा साथ निभाया करते हैं, ड्यूटी ऑफिसर हैं ड्यूटी रूम में, थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। और एक बार फिर से मैं आपसे इंतहाई इंतहाई इंतहाई माजरत चाहता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दें, और मैंने आज अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहीं छूट गए। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड किया, देखते हैं कि कितनी देर में लोग कितनी जल्दी आते हैं। बाय द वे, आप तो जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम होता है ये पूरी दुनिया में सुना जाता है। इस समय मुझे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पिशावर, कोयटा, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, हर उस जगह पे जहां पे एफएम 101 की ट्रांसमिशन, हैदराबाद, मैं कोई भी किसी भी शहर का नाम अगर भूल रहा हूं तो मुझे याद दिलाएं, यहां पे आकर 4471 पे मैसेज करें, मुझे बताएं कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं, ईद की ये जो सेलिब्रेशंस है कहां कहां से आप मना रहे हैं, और कहां कहां से आप 101 की फैमिली का हिस्सा होकर इस सेलिब्रेशन में और ज्यादा इजाफा कर रहे हैं, चार चांद लगा रहे हैं। आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूं, ठीक है ना। जी हाँ, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 4471। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मैसेज करेंगे तो फौरन मुझ तक पहुंचेगा। बहुत जल्दी कुछ आसान तरीकेकार भी आपसे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं। अनायतुल्ला हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच अनायतुल्ला, आपने मुझे मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहो, आबाद रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीते रहो। और कौन कौन मैसेज करने वाला है 4471 पे, जल्दी से आ जाए। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखना है 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज देना है 4471 पे। क्या खूबसूरत ट्रैक है तेरे नाम, साहिर अली बग्गा और निमरा मेहरा इस ट्रैक में शान बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से ये दोनों खुद जिस तरह से पिक्चराइजेशन का हिस्सा बने हैं, जिस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया है, पिक्चराइज किया गया, जिस तरह से ट्रैक को कितना हल्ला गुल्ला हो रहा है, कितना खूबसूरत समा पैदा है, दुल्हन है, दूल्हा है, नाच गा रहे हैं और जिसमें गाना गुनगुना रहे हैं साहिर अली बग्गा और निमरा मेहरा। ओह माय गॉड, आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम रहमान भाई, क्या हाल है, खैरियत है?
0: बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं मेरे भाई, जल्दी जल्दी से बात करनी है आज। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल्स पे आना चाहेंगे तो हम सबको मौका देंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने जल्दी कॉल्स आज ओपन कर रखी हैं। नाम बताइएगा और बताइएगा ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे।
1: रहमान भाई, मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची से, हजरत कॉलोनी वाला।
0: अरे खुश आमदीद कहते हैं फजल भाई, कैसे मिजाज है, सब खैरियत है?
1: बस आप भाइयों की दुआएं रहमान भाई,
0: हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। ये बताएं कि ईद की खुशियां किस तरह से मना रहे हैं आप?
1: बस अच्छी मना रहे हैं, घर में अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हैं, दिन गुजारा मैंने तो आज।
0: तो ये इससे ज्यादा खूबसूरत खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा और दोबारा दूसरी फैमिली में यहाँ पे 101 का हिस्सा हो चुके हैं।
1: जी 101 का हिस्सा हो चुका हूँ, पूरा दिन में 101 इस्लामाबाद सुनता रहा, फिर अभी दक्ष भाई का प्रोग्राम भी सुना और उसके बाद आपका शो भी सुन रहा हूँ मैं।
0: अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें। ईद पे किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए?
1: यार ईद पे देखो खुशी का भी मौका होता है, बाकी जो है ना ये जो इनकी लाइटें होती है, जो जानवर हम लोग जिबा करते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: इस चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, इसको इसी जगह पे पहुंचाए ताकि किसी को तकलीफ ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुशियां मना तो लेते हैं पर वो इसकी जो लाइटें हैं वो इसी जगह पे फेंकते हैं कि आने जाने वालों को उससे बड़ी तकलीफ होती है,
0: आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है। ठीक है ठीक है,
1: तो कोशिश करें कि उसको जो आपके मोहल्ले में आपका जो जगह बनाई गई है उसको वहां तक पहुंचाए ताकि माहौल भी साफ रहे।
0: माहौल साफ रहे, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज आपने कहा कि सबसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जो जानवरों की आलाइशें होती हैं उनको किसी खास जगह पे जहां पे पहुंचाना चाहिए वहां पे आपको पहुंचा देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं, और ये जो ट्रांसमिशन है इसमें आप किसी भी ट्रैक की फरमाइश कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया है कि कौन से ट्रैक्स हम हमारे इस नेशनल चैनल के ऊपर नहीं प्ले कर पाएंगे, नहीं प्ले करेंगे, ठीक है ना। सो आपने पूरी दुनिया में किसी भी ट्रैक का आपका दिल चाह रहा है इस वक्त सुनने का, यू मोर देन वेलकम। मेरा दिल चाहता है मैं आपकी सारी ख्वाहिशें ट्रैक्स के हवाले से जरूर पूरी करूँ। और सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि इस ईद पे, खास तौर पे ईद उल अधा पे, ईद उल अजहा पे, बकरा ईद पे हमें किस चीज का ख्याल सबसे ज्यादा रखना चाहिए? टेलीफोन लाइन पे आपकी दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम भाई, ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक, कौन बात कर रही हैं?
2: जी मैं लाहौर से रिमशा, काफी दिनों बाद आपके शो में हाजिर हुई हूँ।
0: अरे खुश आमदीद कहते हैं रिमशा, क्या हाल चाल है आपके? आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
2: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक।
0: अरे माशाल्लाह, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराती रहे, जीती रहे। ईद की खुशियाँ किस तरह से मना रही हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इस बार मैं बना रही हूँ, इस बार मैं बहुत खुश भी हूँ।
0: अच्छा, ये जो लड़कियों का सबसे ज्यादा काम होता है ना, एक तो सबसे पहले इन्होंने तैयार होना होता है, घर की सफाइयाँ करनी होती हैं, खाना बनाना होता है।
2: तो वो बाद में बेचारी होती हैं, सारा दिन काम करती हैं, जब दोपहर में बेचारी तैयार होती हैं तो फिर भी उनको खाना चाहिए होता है।
0: हाँ,
2: बेचारी खाना बना कर देती हैं।
0: अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपने आज खाना बनाया?
2: यानी कि मैंने हेल्प की थी आज मामा की, आज मैंने, क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी।
0: अच्छा।
2: तो लेकिन मैंने मामा को मसाला वगैरह बना के दिया था, लेकिन बाकी जो था मामा ने ही बनाया था।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त
2: बताया था उनका।
0: अच्छा जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। ये तो आपने घर का वो जो बेटी होने का जो फर्ज है ना वो अदा किया, वेरी गुड वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, बोले बोले,
2: आपने जो टॉपिक बात की है ना भाई, कहने में तो वो बहुत आसान है, बात करने में वो उस पे बहुत मुश्किल है।
0: है ना, मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। मैं चाहता हूँ हर इंसान अपने अंदर का एहसास मेरे सामने रखे, फिर देखूं कि उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है।
2: अगर भाई अगर मैं अपने माइंड की एक बात बताऊं तो ये जो लोग कुर्बानियां करते हैं,
0: हाँ,
2: अगर जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते ना, उन्हें बार बार ये ना कहें कि हम लोग देखें हम कुर्बानी कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे। उन्हें बार बार वो फील ना करवाए कि ताकि उनकी दिल आजारी ना हो, उनके दिल में ये ना आए कि हाय हम कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते।
0: ठीक है, इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए,
2: तो समझ के ज्यादा हमें अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये उनके दिल में ये ना आए कि वो मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि
0: शो ऑफ करते हैं और फिर पूछते हैं, पूछने का अंदाज ऐसा होता है कि लगता है कि जैसे वो हमें हमारी नजरों से गिरा रहे हैं।
2: जी बिल्कुल, तो ताकि उनके दिलों में वो ना आए कि जी हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और काफी बातें हैं इस टॉपिक पे, इतनी लंबी बात हो सकती है, काफी बहुत सी चीजें ऐसी जिनका ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हम जो है ना इन ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, हम जो है ना बात कर देते हैं।
0: बात कर देते हैं, लेकिन ये जो आपने बात जिसकी तरफ आपने नजर दौड़ाई है, ये वैसे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है
2: भाई। बहुत देखा है ना, बहुत ज्यादा ये देखा है, आज मैंने अपने कानों से सुना भी है। हमारे सामने ना, बिल्कुल हमारे सामने घर है, उन्होंने कुर्बानी की है।
0: हाँ।
2: उनके आप यकीन करें काफी बड़े हैं, यानी उनके 5 बच्चे हैं, सही। हाँ। समझदार आदमी है। तो यकीन करें कि उनके घर एक मतलब कोई शख्स आया तो उनको कहते कि देखो हम तो कुर्बानी कर रहे हैं, तुसी क्यों नहीं लेता, क्यों ताड़े हालात नहीं है गेसी, ताड़े ते हालात है गेसी। वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, वो बंदा बेचारा चुप होके चला गया, उसने कुछ बोला नहीं।
0: ये जिस तरह से आपने मंजर कशी की है, ये तो बहुत इंतहाई तकलीफ दे बात है। अगर उसने सबके सामने आपने सुना तो बहुत से लोगों ने और भी सुना होगा।
2: बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारे बिल्कुल विंडो है ना, तो मैंने विंडो में से देखा कि देखें वो शख्स बातें कर रहा है, तो वो बेचारा कुछ कह नहीं रहा। वो उसने कहा कि इस बार मेरा कारोबार नहीं था, इस वजह से मैं कर नहीं पाया। मैंने कहा देखिए किसी की दिल आजारी इस तरह नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप लोग कर सकते हैं आप अल्लाह की राह में दे रहे, लेकिन दूसरों की दिल आजारी तो ना ना करें। लेकिन अल्फाज जो है ना, अल्फाज का चुनाव जो है ना, हमें सोच समझ के करना चाहिए।
0: बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू वेरी मच रिमशा, सलामत रहो, आबाद रहो।
2: भाई मुझे एक गाना सुना देंगे?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मेरे हाथ कीबोर्ड के ऊपर है, बताओ मुझे कौन सा ट्रैक लगाना।
2: भाई वो गाना है मोहब्बत कैसे होती है तुम्हें हम बतलाएंगे, तू दिल पर हाथ रख पहले तुझे धड़कन सुनाएंगे।
0: अच्छा, मोहब्बत कैसे होती है
2: तुझे हम बतलाएंगे।
0: ओके मैं ये प्ले करता हूँ, थैंक यू वेरी मच रिमशा।
2: सिंगर का नाम भी भाई मुझे बता देना।
0: ओके मैं बता दूंगा।
2: ओके अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा,
0: अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।

0: ओए होए यार क्या ट्रैक है, ओह माय गॉड यार, मुझे पसंद आ रहा है। लेकिन क्या करूं, मुझे अभी फरमाइश की है बहुत प्यारी सी मीठी सी आवाज वाली रिमशा ने। रिमशा तुम्हारा ट्रैक इसका नाम है सिंगर का सकलैन मूसा खेलवी, ठीक है ना।
1: मोहब्बत कैसे होती है,
0: हाय टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: सलाम।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: सर वालेकुम सलाम
0: जी, क्या हाल चाल है आपकी, आप खैरियत से हैं, क्या नाम है आपका?
2: सर मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी इकबाल भाई, क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से आपको? सबसे पहले ईद उल अजहा रहमान अनवर की तरफ से 101 टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो।
2: खैर मुबारक, आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक। और मैं दो तीन वजूहते कहना चाहता हूँ।
0: जी बताएं।
2: सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जब कुर्बानी का जानवर लेके आते हैं ना,
0: जी हाँ बिल्कुल,
2: तो हमें सच बताना चाहिए कि हम कितने का लेके आए हैं। कई लोग झूठ बोलते हैं, 50,000 बढ़ा के बताते हैं, 1,00,000 रुपए बढ़ा के बताते हैं।
0: अच्छा ठीक है,
2: कुर्बानी तो ना ना हुई,
0: ठीक है
2: ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जो वो लोग कुर्बानी करते हैं उस लोग जाके दरवाजा खड़का के पूछे उनसे कि आपने कुर्बानी किया कि नहीं। जो उन्होंने नहीं की उनको इतना गोश्त दे कि वो कम अज कम एक टाइम खा सके।
0: अच्छा ये बात बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है।
2: हाँ जी। और अभी मैं सुन रहा था अपना बाजी की बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि किसी की जिलादारी नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी जो है ना, उसको कुर्बानी का मतलब बहुत बड़ा है। हमारा ये साल जो सा ना, ये एंड जा रहा है कुर्बानी, और हमारा शुरुआत भी कुर्बानी है, मुहर्रम।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो कुर्बानी बहुत बड़ी चीज है, इसका हमें एक एक कदम के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर जाके कहीं अल्लाह कुर्बानी कबूल करता है।
0: बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, सलामत रहे, आबाद रहे।
2: अल्लाह पाक आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद,
0: पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। 4471 पे आपके पैगाम साथ साथ पढ़ता जाऊंगा। राहत अली खैरपुर से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सब भी 4471 पे फौरन से मैसेज करें। राहत अली खैरपुर मीर से हमारे साथ एक सॉन्ग इश्क की रुदाद राहत फतेह अली खान क्या प्ले करें, मैं करता हूं अभी प्ले। अनायतुल्ला संजरानी हमारे साथ हैं, गाना है ये जो मोहब्बत की कसम खा रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, मैं ये प्ले करता हूं। अली रजा मोहम्मद हनीफ लाहौर से, भाई जी बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। देखो ये कितना प्यारा भाई है, इसने मुझे सबसे पहले ईद मुबारक कहा है, अली रजा ने, और फिर उसके बाद अगर कोई फरमाइश करेगा तो करेगा। ये जो नीचे वाले हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी फरमाइश की है, मैं नाराज हो जाऊंगा इन लोगों से। इन लोगों ने मुझे ईद मुबारक क्यों नहीं कहा मुझे ईद मुबारक। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। अली रजा हमारे साथ है, मोहम्मद हनीफ कह रहे हैं ईद उल अजहा पे किसी को जतलाना नहीं चाहिए। यस बिल्कुल सही कहा आपने। रिमशा ट्रैक अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड पे हम इसको रखेंगे नेक्स्ट ट्रैक तक, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: जी तेरे ये वालेकुम अस्सलाम प्यारे से भाई।
0: अरे मोहतरमा परवीन साहिबा कैसे मिजाज है आपके, आप खैरियत से?
3: बहुत शुक्रिया रहमान, मैं ठीक हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी बिल्कुल फिट फाट हैं।
0: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत
3: कर जोश है, क्या कहने।
0: बिल्कुल ऐसे
3: प्रोग्राम की,
0: बिल्कुल ऐसे
3: बहुत है। अभी डॉक्टर करके गए हैं
0: जी,
3: सुन रहे हो तो उन्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: और
3: जनाब आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, वरना आप हमसे भी नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज।
0: अरे अरे वाह वाह, ये अच्छा किया आपने। देखा ये लोग होते हैं जो फौरन से बात को समझ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, खैर मुबारक।
3: बात बताते हो तो कैसे नहीं समझेंगे तुम्हारी बातें, तो लोग बहुत समझ जाते हैं। एक बात रिमशा से पूछ के बता दो रहमान।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: के पास ऐसा क्या जादू है कि हर प्रोग्राम में रोजाना कॉल मिल जाती है? अभी डॉक्टर से बात करके गई है, अभी तुम्हारी मिल गई प्रोग्राम में, और मैं तकरीबन रोज ही सुन रही होती हूँ। ये 10 से 12 का तो मैं एक शो सुनती हूँ दिन का, मुझे नहीं पता इनकी कॉल माशाल्लाह आ जाती है। भाई मुझे बता दो जरा चंदा जादू क्या है, तो इसके बाद तुम्हें निकाह की मुबारकबाद भी देंगे हम बहुत बहुत।
0: अरे बस ये जादू है, बस मिल जाती है, मिल जाती है।
3: क्या जादू है, माशाल्लाह इनकी मिल जाती है, अच्छी कॉलर है, इनका निकाह हुआ है सुना है मैंने। अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक करे, जीती रहे और खुश रहे अपने उनके साथ। कहती है उनों का फोन है, उनों बहुत अच्छी महसूस बच्ची
0: है। बिल्कुल।
3: क्या पक्के सुनाए आप, गीत कैसी गुजरी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत जबरदस्त। कुछ देर सोकर, कुछ देर जानवरों के साथ, और कुछ देर जो है वो सोशल नेटवर्क के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हुए।
3: मेहमान मर्दों के लिए तो आज के दिन वाकई बहुत ज्यादा बिजी होता है।
0: बिल्कुल
3: खैर होता है बहुत। अब चाय बना के भेज दो, अब ठंडा पानी भेज दो, अब ये भेज दो, वो भेज दो, और उसके बाद जो सफाई होती है दराई वाले मकाम हो रही होती है, बस शाम तक हाल मत पूछो क्या होता है रहमान। मुझे तो बस क्या बताऊँ, बहुत खैर इतना बड़ा फरीजा है, अंजाम तो देना है, अल्लाह ताला सबकी कबूल करे।
0: आमीन आमीन आमीन।
3: सुन्नत पूरी की है, बहुत बड़ी सुन्नत है, बहुत बड़ी, बहुत अल्लाह ताला का आज पसंदीदा दिन था। जाहिर है कि पूरे पाँच दिन ही बहुत पसंदीदा रहे हज के, और मुझे बड़ा दुख है रहमान, मैंने अभी अभी ये खबर पढ़ी कि बहुत शदीद गर्मी की वजह से 577 अफराद शहीद हुए हैं हज के दौरान।
0: इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि
3: राजिऊन। लेकिन आप उनकी खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि उस सरजमीन पे वफात पाना, और फिर वहीं उनकी तदफीन होगी माशाल्लाह। ये नसीबों वालों की बातें हैं। तो बस हर तरह से अल्लाह ताला जहाँ जहाँ चाहते हैं अपना दिखाते हैं कि जहाँ कर लो वही जो करना है होगा, वही जो अल्लाह ने चाहा है और जो अल्लाह करेगा।
0: तो हमें
3: बस यही है रहमान कि आज का दिन जो है ना बहुत से सबक सिखाता है। जैसे रिमशा अभी कह रही थी, वैसे मैं अपने पड़ोस में मैंने आवाज़ सुन रही थी, कारपोर्ट में हो रहा था सारा ही काट पीट सब कुछ, तो मैं भी निकली थी, पता नहीं किस चीज़ की, तो मेरी आवाज़ आई कान में बड़ी बुरी तरह, कोई बेचारी पता नहीं मांगने और कोई बच्चा था। रहमान के आज का दिन जो है ना बहुत से सबक सिखाता है। जैसे रिमशा अभी कह रही थी, वैसे मैं अपने पड़ोस में मैंने आवाज़ सुन रही थी, कारपोर्ट में हो रहा था सारा ही काट पीट सब कुछ, तो मैं भी निकली थी, पता नहीं किस चीज

0: इनको मैं क्या कहूँ, बेचारों को रिश्ता तो नहीं होता लेकिन गरीब गुरबा, हाँ ये लफ्ज है, ये गरीब गुरबा के लिए है और यह सूरत हमें पूरा करना है, वरना कुर्बानी के मतलब हमने समझेंगे समझा ही नहीं कि है क्या मतलब। आप उस पर पूरे नहीं उतर रहे तो फिर अल्लाह ताला से दुआ भी हम करते हैं कि या अल्लाह इसको कबूल फरमाना। दिल तो आपका अच्छा ही होता होगा यकीन, लेकिन एक तो दिखावा बहुत बुरी चीज़ है। और ये जो अभी कीमत उमत की बात हो रही है, तो बहुत छोटी छोटी सानवी बातें हैं रहमान, ये तो बड़ा चढ़ा के बताना और दिखाना और गलियों गलियों फिर आना जानवरों को इतनी गर्मी में, सच में बच्चे लिए दौड़ रहे
1: हाँ, ये मजे की बात है वैसे।
0: नहीं, आप बताइए, जानवर को तकलीफ देना है रहमान,
1: हाँ,
0: के जानवर होते हैं मेरी नज़र में तो एक बहुत बड़ी अकीदत वाली चीज़ होती है, बड़े प्यार से रखे आप उन्हें, तमाम करें गर्मी में ना रहे और जनाब लाए। और ये भी एक बेवकूफ़ी की कि जनाब इतनी बड़ी बर्फ़ की सिल लाए और टब में जो पानी भरा था उसमें डाल दिया, उसको खूब पिलाए जा रहे हैं और बकरा, पिछली इतनी बात बताई हूँ, बेचारा टाइम हो गया, वो कुर्बानी भी नहीं हो पाई, हवाले कर देते हैं बड़े घर वाले और फिर ये नुकसान होते हैं। तो ये जरा छोटी छोटी बातें इनका ख्याल रखना चाहिए और सबसे बढ़कर इंसानियत का, सोच का, उनकी आबरू का, उनकी इज्जत का, कि किसी की भी इज्जत मजरूह ना हो।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अब मेरा रहमान, मेरा तो एक उसूल है, मैं हमेशा से घर में यही कहती आई हूँ अम्मी अब्बू के ही ज़माने से, कि भाई जिसके घर कुर्बानी हो रही है वहाँ गोश्त भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वहाँ आप दीजिए, और जिनका हो ही ना उनसे लेना है भाई, आप किसी और को प्लीज दे दें, हमें ज़रूरत नहीं है गोश्त की, तो उनका फ़ायदा हो जिनके पास नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह से बोलते भी नहीं है, जो सफ़ेद पोश लोग, लेकिन हमें इल्म होना चाहिए ना कि कहाँ हुई और कहाँ नहीं हुई।
1: बिल्कुल सही,
0: क्योंकि बाहर का जो आलम होता है वो तो वैसे ही देख के पता चल जाता है कि यहाँ हुई है या यहाँ नहीं हुई है। ये ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत बड़ा ही फरीजा है मुसलमानों पे जो हम अदा करते हैं, लेकिन उसकी जो फरमाया गया उसके बारे में उसको भी पूरा करें। रहमान जीते रहो, बहुत खुशी हो रही
1: है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें।
0: मैं तो, आप भी सलामत हैं, मेरी भी बहुत दुआएं आपके लिए। ये जो अभी किसी ने फरमाइश की थी ना मोहब्बतों की, क्या जो कसम खा रहे हैं आप, हाँ प्लीज सुनाइएगा, बहुत खूबसूरत है।
1: चले मैं ये प्ले करता हूँ।
0: रहमान आपकी फैमिली के लिए और तमाम आरजीएस को और जितने भी लोग सुन रहे हैं, सुनने वालों को ईद मुबारक,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत सलाम, खुश रहो रहमान, आज खिलती हुई आवाज़ सुन के वाकई बहुत खुशी हो रही है।
1: थैंक यू वेरी मच, सलामत रहो,
0: आप आते रहो, अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।

0: रेजी वंस अगेन वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। अभी मुझसे फरमाइश की थी यस, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, साथ साथ आपके ट्रैक्स और साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं जी?
1: अब्दुल गफूर बात कर रहे हैं, अनारकली लाहौर से।
0: जी अब्दुल गफूर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? और अनारकली की जो शाने हैं, अनारकली की जो इतनी रौनकें हैं, उसको तो जरा डिस्क्राइब करें हमारे सामने।
1: रौनकें अभी मान पड़ गई हैं। बिल्कुल
0: हाँ, मान पड़ गई हैं। ठीक है,
1: उसकी वजह के लोगों में ताकत नहीं थी खरीदने की ना।
0: अच्छा,
1: और हीट ज्यादा थी।
0: हाँ,
1: थी ना वो बहुत ज्यादा थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। वो शाम में निकल रहे थे, वो भी गांव के लोग जिनकी फसलें वगैरह हुई या बाहर हुए या शादी ब्याह वाले, वो शॉपिंग कर रहे थे।
0: हाँ,
1: लोगों में ताकत नहीं थी खरीदने की।
0: ठीक है,
1: वो बिल्कुल बेचारे वो ऐसे थे कि बस अल्लाह सबकी इज्जत रखे।
0: आमीन।
1: अजल विदा मुबारक हो।
0: खैर,
1: अजल विदा जो है ईद जो है ना, अजल विदा की ईद मुबारक हो पूरे आलम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अल्लाह पाक जो जो अदा थी उनकी सारी जो है ना हज के अंदर अल्लाह पाक ने दे दी उनको। देखो
0: बिल्कुल,
1: अब वो छोड़ के बयाबान के अंदर जा रहे हैं हाजरा अलैहिस्सलाम को। वो उनसे पूछ रही हैं कि ये अल्लाह की

0: है, बोला हाँ अल्लाह जी रसला है, बोला हमें तना नहीं छोड़ेंगे वो। देखने फिर अल्लाह पाक ने वहाँ पे इस्माइल अलैहि सलाम दिया, आपने वहाँ से भागना शुरू किया सफा मरवा आज तक देख लो। और फिर जो जम जम पानी आया वहाँ से, कितनी सुन्नतें हैं। फिर वो जो कुर्बानी, फिर आने के साथ अल्लाह पाक ने कुर्बानी का कहा, फिर उसके बाद जो है ना शैतान रुकता गया, फिर उन वहाँ कंकरियां मारते गए वहाँ पे, वो दिखाया सारा उसका।
1: आप ये
0: 8000 साल का वही मंजर है माशाल्लाह।
1: गफूर साहब आप ये नोटिस करें, आप ये जरा चेक करें अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने पैगंबर के साथ, कि उसने कुर्बानी मांगी, कुर्बानी को समझा और कुर्बानी दे दी, फिर उसके बाद आने वाली तमाम उम्मतों के लिए, लोगों के लिए उसको फर्ज करार दे दिया गया। और फिर उस उन तमाम नकूश के ऊपर, उन तमाम लाइनों के ऊपर, मैं ये कहूँगा कि उन तमाम सुन्नतों के ऊपर चलाया गया कि अगर मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करोगे तो मुझे मोहब्बत करने वाला पाओगे, मुझे रहमत करने वाला पाओगे। यस
0: बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अल्लाह पाक ने दुम्बा भेजा कुर्बानी की जगह।
1: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे,
0: तो अल्लाह पाक ने दुम्बा भेजा, फिर हम बकरा जिसकी जैसी हैसियत उसके मुताबिक जो है ना वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं। और अभी एक बहन ने बात की, तो लोगों को ना ये नहीं कहना चाहिए जिसके पास सोना है पैसा है और उम्रा करके आए, हज करके आए, वो लोग कर रहे हैं कुर्बानी हैसियत के मुताबिक, तो दूसरे को ये नहीं कहना चाहिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हो।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: देगा वो भी करेगा, उसने कलमा पढ़ा है जानता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये। अब दूसरी बात, वो अभी हमारे डॉक्टर साहब गए हैं
1: जी जी,
0: उसको आपने क्या दम किया हुआ है, वो आपके ऊपर रहता नहीं है आपके बगैर, एक आपका नाम लेता है, जिशान नासिर का लेता है, ये दोनों के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, इनसे खुल के बात करता हूँ, आरजे जितने भी हैं प्यार तो सबसे है, मगर इनका प्यार जो है ना अलग है, तो मेरे को भी कोई दम का तरीका बताओ।
1: अच्छा,
0: तो आपका जिया वो क्या नाम है उसका, जिया अंजुम,
1: जी जी जिया अंजुम,
0: दम करूं वो फौजी का बांझा जो है वो कान नहीं उठाता है, तो उसको भी मैं दम करूं वो मेरा मदा बन जाए।
1: हाय हाय हाय, नहीं वो जिया अंजुम जो है एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, और आरजे डॉक्स जो हैं उनके क्या कहने, हमारे 101 का पूरे पाकिस्तान में फेस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस तरह से जिन इज्जतों से उनको नवाजा है और जिस पोजीशन पे अल्लाह ने उनको रखा है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा इससे भी ज़्यादा बुलंद मुकाम अता करे, हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अगर वो इतनी मोहब्बत देते हैं तो वो इसके लायक हैं कि उनको मोहब्बत दी जाए, उनको प्यार दिया जाए। यस
0: बिल्कुल,
1: और यकीन करें, यकीन करें, मैं भी आपको एक सच्ची मजे की बात बताऊं, मैं कंबाइंड प्रोग्राम्स नहीं करता था, तो मैंने मैं अगर खुल के किसी के साथ, जी जी, मैं खुल के अगर किसी के साथ बोल सकता हूं तो वो आरजे डॉग्स हैं, जिया अंजुम हैं, और इवन के जिशान नासिर से सिर्फ एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई है, और ऐसी मोहब्बत हम दोनों में पैदा हुई है कि अब वो भी उसी जगह पे हैं। लेकिन अभी मैं फिल वक्त के लिए ये कहूंगा, जी हाँ जी हाँ,
0: आप प्यार करते हो ना तो वो भी करते हैं। एक बात मैं और आपकी इजाफा कर दूं,
1: जी जी,
0: मोहम्मद अली भी आर्टिस्ट था,
1: फिल्मों
0: का वो भी आर्जे था, आर्जे था ना, आर्टिस्ट था हैदराबाद का,
1: तो
0: माशाल्लाह आप लोग तो बोलना सिखाते हो,
1: जी जी,
0: उसने चलना सिखाया,
1: जी जी बिल्कुल ऐसे,
0: क्या सिखाया, चाल उसने सिखाया कि मर्द कैसे चलता है,
1: चलता कैसे,
0: एक दूसरे को मारते हुए नहीं जाता है, सीधा जाना आला टेढ़ा नहीं जाता है, वो फिल्मों में ड्रामों में ऐसा चल के दिखाता तो लोग नकल करते थे उसकी।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई चीज होती है।
0: हमने खुद उनको फॉलो किया था, मोहम्मद अली को, बड़ी माशाल्लाह हैंडसम और बहुत प्यारे थे, मोहब्बत करने वाले थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मैं तो मिला हूँ कई उम्र पे,
1: अरे वाह,
0: स्टूडियो में, स्टूडियो में भी मिला था, सलाखों की शूटिंग थी जब भी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे बंदे हैं और बहुत अच्छे बंदे हैं वो, अल्लाह खुश रखे आपको भी।
1: बहुत शुक्रिया गफूर साहब, सलामत रहे, आबाद रहे,
0: आप भी सलामत रहे। आप मेरे को बताया नहीं
1: दम कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि आप बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी परेशानी के, बस मोहब्बत देने वाले बन जाएं और रिसीव करने वाले बन जाएं, यानी कि वो कोई अगर कोई आपको गुस्सा देता है, कोई भी बुरी चीज़ भी देता है, तो वो उसको अपने अंदर समाने वाले बन जाएं, तो मुझे लगता है कि ये दम सबसे बेहतर होता है।
0: یہی ہے میرے
1: اس چیز کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نوٹس کرتا ہے کہ اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس لفظ بھی تھے، اس کے پاس الفاظ بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس موقع پہ یہ بولا نہیں، صرف مجھ سے محبت کی وجہ سے، میں انسان سے محبت کرتا ہوں، اس انسان سے محبت کی وجہ سے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دم سب سے بہتر رہے گا۔
0: یہ صحیح ہے، یہ فارمولا آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جو میری عادت ہے۔
1: خوش رہے، آباد رہے، سلامت رہے غفور صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ، اور عید مبارک۔
0: خیر مبارک، خیر مبارک پورے عالم کے لیے، اللہ حافظ،
1: اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ کی ٹیلی فون لائن پہ لائیو کالز پروگرام کا حصہ بنا رہا ہوں، اور 1:10 وہ چاہتے ہیں۔ علی، مجھے تم نے بہت بار فرمائش کی ہے، لیکن اس سے پہلے محمد عمران شیخوپورہ سے، بھائی عید مبارک، نائس شو، آئی مس مائی مدر سو مچ ٹو نائٹ، پلیز پلے ٹریک ماں بائی رحیم شاہ۔ تو مجھے، میرا دل چاہا کہ علی تمہارے ٹریک سے پہلے نہ میں یہ والا ٹریک پلے کروں، مجھے امید ہے کہ تمہیں برا نہیں لگے گا۔

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر رحمان صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے،
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا جلدی سے، اور میری طرف سے بہت بہت عید مبارک.
1: خیر مبارک سر، آپ کو بھی عید مبارک اور آپ کی پوری ٹیم کو عید مبارک. بودھی جٹ گل کر رہے ہیں سر.
0: کون گل کر رہے ہیں جی؟
1: بودھی جٹ.
0: جٹ صاحب کی حال چال؟ سب خیر ودیا.
1: ہاں جی زبردست سر، زبردست. آپ کا شو بہت زبردست ہے، آپ بہت زبردست.
0: تھینک یو ویری مچ. آپ بہت زبردست ہیں اس لیے میں آپ کو زبردست لگتا ہوں. خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں. اور خوشیاں کس طرح سے منا رہے ہیں آج کی عید کی، وہ تو بتائیں ذرا.
1: سر اے عید یا خوشیاں سر، اللہ پاک کا شکر ہے سر، اے خوشیاں نہیں منا سکے. کزن میرا کل فوت ہو گیا ہی حج والے دن.
0: ان للہ
1: ماشاءاللہ بہت اچھا شو کر دے سر. کیا بات ہے سر،
0: بہت شکریہ.
1: اسی تے ویسے سر تہاڈے دیوانے ہاں. مصطفی صاحب نے انہاں دا شو سن کے ویسے ہی سانو نشہ ہو جاندا ہے.
0: مصطفی بڑا پیارا بندہ ہے. ٹھیک ہے
1: جی سر، آپ بھی بہت پیارے ہیں، زبردست باتیں کرتے ہیں. اللہ آپ کو بد نظر سے بچائے اور تندرستی والی، صحت والی لمبی زندگی عطا کرے سر.
0: کیا خوبصورت دعائیں، کیا خوبصورت دعائیں آپ نے دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. جٹ صاحب تھینک یو ویری مچ آپ نے کال کی. کوئی فرمائش بتاؤ، کوئی فرمائش پلے کرنی ہے، کچھ کرنا ہے
1: سر؟ اپنی پسند آر جے ڈاگ صاحب نے پچھلی بار تسی گانا لایا ہی نا، میری شہرت ہی صحیح.
0: ہاں ٹھیک ہے،
1: ہاں جی وہ سر بھاوے سنا دینا تے خیر ہوے سر. تہاڈی میری نیلا پی نو سلام، رمشا پی نو تے ساجدہ نو تے پاکستان زندہ باد. برفی والے صاحب بھی تھانوں سن رہے نے فروخت پاچو.
0: بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.
1: پاکستان زندہ باد،
0: پاکستان زندہ باد، تھینک یو ویری مچ. اس بیچ میں آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس عید پہ کس چیز کا خیال سب سے زیادہ رکھنا چاہیے. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کی نظر، آپ کا خیال نہ ہٹے. آپ کی فرمائش تو پلے کر رہا ہوں. السلام علیکم جی.
2: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں جی؟
2: جی میں ادریس بات کر رہا ہوں، لاہور سے.
0: جی ادریس بھائی کیسے مزاج ہے؟ سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے.
2: آپ کو عید مبارک میری طرف سے.
0: بہت بہت خیر مبارک، عید مبارک. تھینک یو ویری مچ.
2: پوری ٹیم کو، پوری مینجمنٹ کو عید مبارک میری طرف.
0: بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں، آباد رہیں.
2: اور آپ کو حج کی بھی بہت بہت مبارک ہو.
0: خیر مبارک،
2: اللہ پاک آپ کو بھی یہ کیا کہتے ہیں،
0: بول دو بول دو،
2: خوش نصیب کو آپ کو بھی بنائے. آپ کو
0: ہائے ہائے ہائے، کیا کیا خوبصورت بات
2: کرائے،
0: کیا خوبصورت بات کر دی. یہ میرا بگیسٹ مطلب سب سے پہلا ڈریم یہ ہے، یہ ہونا چاہیے پورا. تمہاری دعا مل گئی ہے، یہ پورا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی.
2: انشاءاللہ دیکھو دعائیں اللہ پاک، جب انسان دل سے کچھ سوچتا ہے نا تو اللہ پاک بھی سنتا ہے. یہ بات ہو رہی
0: تھی، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ بول دو بول دو، جلدی سے بول دو.
2: آپ لوگوں کی بات ہو رہی تھی یہ محبت کی، تو جب انسان کسی سے بے لوس محبت کرتا ہے تو دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ اسی طرح محبت کرتا ہے.
0: کرنا چاہیے اس کو اسی طرح سے محبت. ایک سوال یہ بھی میں نے پوچھا ہے کہ اس عید پہ سب سے زیادہ خیال کس چیز کا رکھنا چاہیے؟
2: اس چیز میں سب سے زیادہ خیال اپنے ہمسائے آن گوان اور ان صحت پوشوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے.
0: آج کی لائن آپ نے بہت زبردست دے دی، سفید پوشوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ لفظ جو ہے نا میں مس کر رہا تھا کافی دیر سے کہ لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے. یہ جو لفظ ہے سفید پوش، یہ لوگ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، خود جا کر کہتے نہیں ہیں، وہاں پہ ان کو خود نوٹس کرنا پڑتا ہے کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں. سلامت رہیں، تھینک یو ویری مچ ادریس.
2: اور ایک بات چھوٹی سی اور کہوں گا.
0: ہاں ہاں کہو
2: جی. جی وہ نا میں نے ایک بیان سنا تھا، اس نے کہتے جی ہم جو لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں نا کسی گھر میں،
0: ہاں ہاں،
2: تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو رب تعالیٰ آپ کو ہڈیا میں مسالہ دے سکتا ہے نا، وہ آپ کو گوشت بھی دے سکتا. اگر آپ کی قسمت گوشت لکھا ہے تو وہ آپ کی ہڈیا میں اگر مسالہ دے سکتا ہے تو آپ کو گوشت بھی دے گا.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات.
2: آپ بھی نہیں پھیلانا چاہیے
0: یہ بہت.
2: ہمیں ویسے خود खुद को ख्याल रखना चाहिए सबका, अपने अनुवान सब मिलने मिलने वालों का सब ख्याल रखती है, उनका ख्याल रखे जिनको हम कभी नहीं मिले, जिनका हमें पता है, जिनके बारे में सुना है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इदरीस, सलामत
2: सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और खुशी सलाम सब सुनने वालों के लिए।
0: Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. O ma, mujhko jhulao na jhula re ma. Oh my God. बड़ा बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक। अभी मुझसे एक ट्रैक की फरमाइश की थी और मुझे ये कहा था कि ये वाला ट्रैक आपने हर सूरत में प्ले करना है। सो ये वाला ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। किस ट्रैक की फरमाइश की थी आपने? ये वाले ट्रैक की फरमाइश की थी। अच्छा ठीक है, अभी हाँ ये वाले ट्रैक। यस, अभी कहा आपके आने से पहले एक ट्रैक लगा हुआ था तो रहमान प्लीज वो लगा दे। सो डॉक्टर राबिया आपके लिए। हाय हाय, आहा, टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूं, आपसे सवाल भी पूछ रहा हूं, आपका जो मन चाहता है आप मुझे आके बता सकते हैं, कह सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं और सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि किस चीज का ख्याल रखना चाहिए इस ईद पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, ये डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। अली रजा वॉल्ट से, वॉल्ट सिटी से हमारे साथ हैं। मोहम्मद हनीफ भी आपके साथ मौजूद हैं। ईद उल अज़हा पे किसी को जतलाना नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। मुस्कान हमारे साथ हैं और वल्द अली रजा हनीफ, आपने वल्द अली रजा हनीफ, अच्छा मैं वॉल्ट सिटी समझ रहा हूँ, वल्द अली रजा हनीफ लाहौर से। भाई जी बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। मुस्कान सलामत रहें, आबाद रहें। टेलीफोन लाइन पर आपकी लाइव कॉल्स। अच्छा उधर दूसरी तरफ facebook.com/fm11 लाहौर के ऑफिशियल फैन पेज के पैगामात हैं, वो भी शामिल करूंगा आपके लिए। पोस्ट मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करो जाके जल्दी से पोस्ट को और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी करो और आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, या तो अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है उसको उतार दें, अगर कोई हेडफोन पहने हुए हैं उसको उतार दें। नहीं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, तुम्हें भी, तुम्हें भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जल्दी से बताइएगा अपना नाम।
3: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: बिस्मा कैसे मिजाज है आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं?
3: जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है। बिस्मा आज ईद के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि ये ईद आपने किस तरह से मनाई, खुशियों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं।
3: बहुत अच्छे से मनाई है। अच्छा। आज तो ना सारा दिन मेरा एफएम रेडियो 101 के साथ गुजरा है, ठीक है?
0: अच्छा सारा दिन एफएम 101 के साथ गुजरा है, ठीक है?
3: एक मिनट। हाँ जी। तो ना मतलब आज आज शिवा मलिक थी, उनके साथ मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम, ठीक है? और मैं बहुत खुश हो गई और ना मतलब आज सही मजा आया ईद का।
0: जबरदस्त,
3: वो मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई है आज कि आज डॉग से भी बात हो गई मेरी।
0: अरे वाह।
3: हाँ जी, उस दिन मैं आपको कह रही थी ना मरने के बाद कॉल लगेगी,
0: मैंने दुआ दे दी थी आपको, मैंने कहा था नहीं कोई मसला नहीं, लग जाएगी कॉल, मरना नहीं चाहिए इसको, जल्दी से पहले मिलवा दो कॉल इसकी।
3: हाँ जी, आपसे सेकंड टाइम बात हो रही है और आपकी आवाज अच्छी है, बहुत प्यारी है और आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। वो आपने बोला था ना कि मैं कुछ ऐसा लेक्चर दूंगा या कुछ बताऊंगा कि आपको मौत से डर नहीं लगेगा, मोहब्बत हो जाएगी।
0: हाँ
3: तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपके उस लेक्चर का।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द करूंगा, क्योंकि इस तरह के पंगे मैं ही ले सकता हूँ, लूंगा मैं।
3: हाँ जी, और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब ये पंगा लेंगे।
0: लेकिन इसके बाद फिर मोहब्बत हो जाएगी, ये बात सच्ची है। यानी कि मोहब्बत से मुराद ये है कि डर नहीं लगेगा, खौफ नहीं आएगा।
3: तरह की चल रही है ना, उससे अच्छा मौत से मोहब्बत हो जाए तो अच्छी बात है।
0: अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन उसका ये भी फरमान है कि ये तमाम जो मसाइल हैं, ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इनको फेस करना है। वो देखना चाहता है कि कितना सब्र है, कितनी हिम्मत है, और फिर वो अता कर देता है।
3: जो गुस्सा जिन लोगों को बहुत ज्यादा आता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो फिर कुछ ऐसी बात कर देते हैं, बाद में पछताते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया।
0: हाँ,
3: तो उसका कोई हल नहीं है आपके पास?
0: जी हाँ, उसका हल है मेरे पास। उसका हल ये है कि शीशे के सामने गुस्से में अपने आप को कहें, बहुत बहुत कुछ, जितना कुछ आप कहना चाहते हैं आप सब कुछ कहें, जो किसी को आप कह सकते हैं गुस्से में, या रिसेंटली आपने जो किसी को गुस्से में कहा, और फिर उसके बाद अपने आप को शीशे में समझाएं कि तुमने नेक्स्ट टाइम अगर किसी बात पे गुस्सा आए तो फौरन से अपने अंदर एक अलार्मिक सिचुएशन पैदा करनी है कि मैंने इस वक्त पूरे 15 मिनट के लिए खामोश हो जाना है। मैंने अगर जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी भी है तो जवाब नहीं देना। हाँ, ये 15 मिनट की प्रैक्टिस करके जरा आइएगा वापस, मुझे बताइएगा कि रहमान साहब मैंने ये प्रैक्टिस की है, मुझे जरा थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ है। लेकिन आपने ऐसा कहा क्यों था, मुझे ये भी बताना है। और उसका वो लतीफ़ा भी मैं आपको सुनाऊंगा, एक बड़ा मज़े का लतीफ़ा है कि वो कहती कि जी मेरे शौहर के साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो एक आलम के पास चलेगी, उस आलम ने कहा कि ये तावीज़ जैसी लड़ाई होने लगे ना आपने चबाना शुरू कर देना।
3: मम्मा ने मुझे बताया था,
0: है ना, ये चबाना शुरू कर देना, हाँ चबाना शुरू कर देना, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त आजमूदा है। तो फिर वो लड़ाई नहीं होती थी, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा कमाल सीन हो गया कि अब लड़ाई नहीं होती। वो शुक्रिया अदा करने के लिए स्पेशल गई कि क्या लिखा था आपने उसमें, उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा था।
3: मम्मा आपने शोहर और वो बीबी का बताया ना, मम्मा ने कहा था सास बहू दोनों लड़ती थी आपस में, तो फिर उन्होंने ऐसे बोला कि जब आपकी सास कुछ कहेंगी ना तो आप नहीं करना, और सास को भी दे दिया तभी कि जब आपकी बहू बोलेगी तो आप नहीं अपने हैंड में दबाना, बोलना कुछ नहीं, देखना उसकी अपने आप जुबान बंद हो जाए।
0: वाह वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस तरह से भी अच्छा, इस तरह से भी अच्छा।
3: हाँ जी, एक सॉन्ग था,
0: बताए मुझे
3: वो वाला मैडम का, मैं थे मेरा दिल भर जानी,
0: मैं थे मेरा दिल भर जानी।
3: हाँ जी, मैं आपको सुना दूँ थोड़ा सा, ये आप लगा देंगे?
0: चलो लगाओ, चलो सुनाओ जरा, मैं देखना चाहता हूँ क्या गाती हूँ। हाँ सुनाओ।
3: मैं थे मेरा दिल भर जानी, दुनिया से प्यार कहानी, यार ये गलत हो गया
0: है ना, गलत हो गया ना,
3: ये पंजाबी में ना। हाँ, मैं
0: माशाल्लाह आप उर्दू में गा रही हैं उसको, है ना।
3: हाँ ये उर्दू बोलती हूँ ना, तो ये पंजाबी में नहीं गाया जाता, इस वजह से मैंने बोला है कि आप लगा ही दें।
0: हाँ नहीं, मैं वाकई लगा देता हूँ, मैंने भी यही समझा है कि मैं लगा देता हूँ। ओके, ये ट्रैक आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूं, आपको पसंद आएगा। इसके बाद यस ठीक है, ये वाला ट्रैक है।
3: आप यस बोल बोल अच्छा बोलते हैं,
0: यस अच्छा बोलता हूं ना मैं।
3: हां लगा दे, यस थैंक यू
0: सो मच। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बिस्मा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये वाला ट्रैक यहां से ठीक है। इसका यार एक और वर्जन भी तो था ना, मैंने एक और वर्जन सुना था, एक मिनट ठहर जो जरा, ये वाला ट्रैक है, मुझे लगता है कि ये वाला ट्रैक है। हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, इसको भी रखते हैं क्यू पे, लेकिन ये चेक करते हैं ये वाला कैसा है ना, है ना, ये अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है ये वाला, चेक करते हैं वाला। चार चार सात एक पे आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं, अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 4471। यार ये मजा आएगा,

0: मेरी इन्हीं ठीक नहीं सी।
1: Oh my God! बोहेमिया कमाल, टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। आपसे सवाल पूछा है कि सीट पे सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप मुझे अपना फरमाइशी ट्रैक भी बता सकते हैं, देखते हैं कौन सा ट्रैक बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमान, कैसे हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप खैरियत से?
2: अल्लाह का शान, मेरे शेर भाई की इतनी प्यारी आवाज आ रही है, आपको सेहत सलामती की दुआ, ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। रही बात कुर्बानी की, मैं ये मेरा मानना है, आपने मुझे बताना है बल्कि, तो या तो कुर्बानी करो तो जीन में ये रखो कि अपने घर के अंदर ही करो सफाई इसकी, जो ना अपने ध्यान से ऐसी जगह पे, यानी कि कचरे को फेंकना तो किसी को परेशानी ना हो। अब दूसरा फौरन उन घरों में बचाना चाहिए जिन जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे वो दूसरे हैं। ये बात है, नहीं तो मैं तो आपको सही बताऊं दिल की बात, मैं तो कहती हूँ खानदान में देखो, मोहल्ले में देखो, जिसकी बेटी भी आने वाली है ये, जिसको परेशानी है ये पैसे उन तक पहुँचा दो, तो ये सबसे अच्छी बात है,
1: सबसे बड़ी
2: ये
1: बात।
2: मेरे ये मेरे बस में नहीं है, जैसे पता आप घर वाले करेंगे तो वही होगा ना।
1: लेकिन ये जो आपने जो इंतजार कर रहे होते हैं सबसे पहले उन तक फौरन पहुंचाओ, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने।
2: हाँ मैं ना आज ये भी बात कर रही थी, मैं जिन्हें जिन्होंने पहुँचाना तो मेहरबानी उन्होंने घर पहुँचा दो, तो कुर्बानी का फिर फायदा की है।
1: सही बात।
2: तो ये बातें हैं मेरे में। दूसरी रहमान जो जिबा होते हैं ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मैं ना ये हक में हूँ, अगर मेरी बात कोई मान लेना उनके घरों में ये पैसे पहुँचा देना, जो बुरे परेशान साल उनका 7-8 लाख रुपया, यानी कि इधर उधर खर्च करके घूस भी नहीं पहुँचाना, लोगों को दिखाना है, भाग दौड़ करनी जानवरों के साथ, मुझे नहीं पसंद ये दिखावा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये आप मुझे बताएंगे तो मैं ये कॉल बंद होगी। और दूसरी बात ये कि आपकी आवाज़ सुन के बड़ा अच्छा लगा, वो कहते हैं ना तारा सालन तो तारा शो, बड़ा अच्छा लगता है। कॉल में इसलिए ज्यादा नहीं करती कि वो कहते ना गया वक्त तो हाथ नहीं आता। तो ये आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और असद को आपने मेरी ईद मुबारक सलाम कहना है, ज्ञान जम को कहना है, नासर आएगा ना जब आपसे शो करने उसको भी मेरा बड़ा बड़ा सलाम कहना है, और मेरी मर्जी का सॉन्ग पता कौन सा है?
1: जी जी बताएं कौन सा है
2: वो, पता क्या रहमान, तो जब मैं सुना हमें ना तो मनाना कि मैं अल्लाह की जात ही है, तो मैं ये वाला ट्रैक सुन के ना दिल खुश कर लेती हूँ, ढोलना या मैं नहीं बोलना।
1: कौन सा ट्रैक है?
2: ढोलना या मैं नहीं बोलना।
1: हाय हाय हाय, ठीक है ठीक है।
2: मैं अपने आप को खुद ही मना लेती हूँ, अल्लाह जानता है, साफ साफ ठुमका, मैं कह चल नहीं तो ना सही,
1: सलामत रहे। पता नहीं कुछ हुआ है ना, क्या क्या हुआ है ये मुझे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम सलाम, की हाल है जनाब? ठीक ठाक जी? आप
1: जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं जी।
3: हाँ जी, आपकी दुआएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शो चल रहा है जी, क्या बात है, रौनक लगाई आपने, बहुत मजा आ रहा है जी।
1: मेहरबानी जी, आपकी मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक
3: यू। मैं तो, मेरा तो गाना है कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या।
1: अच्छा, कदमों में तेरे जीना मरना, दूर यहाँ से जाना क्या। ठीक है
3: जी,
1: ठीक है,
3: ये लग जाएगा,
1: ये मैं देखता हूँ, मैं मिल जाएगा तो लग जाएगा।
3: तो जो आप बात कर रहे हैं ना, देखे किसका ख्याल रखना चाहिए हमें?
1: हाँ, किस चीज का ख्याल इस सीट पे सबसे ज्यादा रखना चाहिए?
3: ये देखे जी, सबसे पहले ख्याल हमको अपनों का रखना चाहिए, अपनों के साथ गलत बात नहीं करनी, अच्छी जुबान, अच्छा दिमाग और अच्छी सोच इस्तेमाल करनी है हमने।
1: ठीक है,
3: शाबाशी लेनी है।
1: अच्छा, शाबाश लेनी है।
3: हाँ, जो गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत भी मांग लेनी है।
1: ठीक है ठीक है ठीक है,
3: यही है। तुम पहचान लिया आपने कि नहीं पहचाना?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया जनाब, मैंने पहचान लिया
3: जी। आप मोहब्बतों का गुलाम, मोहम्मद शहजाद शादबा लाहौर।
1: थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब, सलामत रहें आप।
3: बहुत बहुत
1: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये पता नहीं लड़ गया मुझे ये ट्रैक बिस्मा, ये तुमने ट्रैक जो तुमने मुझसे वो वाला ट्रैक फरमाइश किया था, लेकिन मुझे ये वाला ट्रैक लड़ गया। मैं क्या करूं, लड़ जाता है मुझे लड़ जाता है, मेरे साथ लड़ाई करने लग जाता है। मुझे कहता है आओ आओ हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, तो फिर ये मेरे साथ लड़ाइयाँ कर रहा है, मैं इसके साथ लड़ रहा हूँ, मैं इसको और सुनना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर जाएंगे। Yes, yes, yes, yes, yes. Oh, oh, oh, oh, oh. Break dance ही हो रहा है यहाँ। Telephone line पे आपकी live call। Assalam alaikum जी। Assalam alaikum।
4: वालेकुम सलाम। मुझे तालियां शारा था। डॉक्टर सी पर रहमान दिया क्या बात है।
1: अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
4: माशाल्लाह। उन्होंने कहा साडियां पसंदा ते तू सजना उसे सोना अल्लाह थल्ले तू सजना तक तक जीवा तेरा मुंह सजना
1: ओए
4: सोना अल्लाह थल्ले तू सजना।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात।
4: रहमान साहब ऐसा तो तुसी गाना सुनाना हो तो अनु
1: नहीं, एक नोट पहले ले लो, एक नोट ले लो पहले। आलो आलो आलो
4: हां, एक तो है सर सुनाना तुसी सानू ओ सर तो ओ तो लंबा ही नहीं मेरे साहब ना।
1: हाय ठीक है।
4: अच्छा वाली लाटवा साहब आए सर तो साडे बड़े सोहने वीर ने जट सुनाना दे इनां नूं एक डेडिकेट गाना सर कर देना।
1: आहो ठीक है,
4: बड़ी मेहरबानी सर, तुहानू सलूट दो हत्थां नूं वजी जट दा।
1: जट साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
4: सर निशान रोक गाना ये साडियां पसंदा दे तू सजना उससे सोना अल्लाह थल्ले तू सजना।
1: ये किदा किदा ट्रैक किदा हैगा?
4: ए निशान ढोकड़ी दा मेरे साहब।
1: दोबारा बताना क्या ट्रैक का नाम क्या?
4: साडियां पसंदा दे तू सजना उससे सोना अल्लाह थल्ले तू सजना।
1: मैं प्ले करता हूं।
4: तक तक जीवा तेरा मुंह सजना।
1: ठीक है ठीक है, ओके आपका मैसेज भी सामने रखा हुआ।
5: अच्छा चल, बड़ी मेहरबानी। तो ईद पे बात कर रहे थे, कोई खास बात?
1: जी जी, मैं ये बात कर रहा था कि इस ईद पे हमें सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना चाहिए।
5: मैं अपनी बात करूंगा।
1: हाँ जी,
5: इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फेंक दी हमने ऊंट की कुर्बानी की।
1: ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
5: हाँ जी, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने कुर्बानी की मैंने उनको मना कर दिया कि हमें गोश्त ना भेजें ना हम आपको भेजेंगे, और मांगने वालों को भी दिया। ये मैंने इर्द गिर्द मुशाहिदा किया, जो फैदपोश लोग थे जो कुर्बानी की साथ नहीं रखते थे
1: तो और मांगने भी नहीं जाते,
5: वकार से मांगना हाथ के नहीं खिलाते, तो मैंने उनको डिलीवर किया गोश्त।
1: बहुत अच्छा,
5: बड़ी इज्जत से पैकिंग करके। और अभी टाइम थोड़ा है, मेरा इरादा था कि शायरी शामिल करूं, लेकिन बहरहाल
1: आज शायरी नहीं कर सकते हम।
5: हसन अब्बास रजा की चलो एक गजल प्ले करते हैं मुन्नी बेगम की आवाज में।
1: जी,
5: अब आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
1: मैं कोशिश करता हूँ ये प्ले करूँ, अगर ना कर पाया तो माजरत।
5: कोई बात,
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।

उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल अब गलती हो गई एम्बुलेंस वाले से कि उसने वहां पे रश आर में, शाम के वक्त में, रात के वक्त में, पीक आर में, जब बहुत ज्यादा बसेस वहां से गुजर रही होती हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा गुजर रही होती है, वहां पे उसने डाल ली। वहां से वो गुजरने लगा, वहां से लेकर उस मरीज को जाना होगा, शायद वहां कहीं उसी जगह का कोई मरीज हो। तो यकीन करें कि रुक सकता था एक बस वाला, वो सायरन की आवाज भी सुन रहा था, रुक सकते थे बस वाले, साइड पे हो सकते थे, जगह थी, लेकिन उसने फौरन से जगह नहीं दी। उसने अपनी जगह बनाई, आराम से उसने कट मुकम्मल किया और फिर वहां से वो बस को लेकर गया। इस बीच में सायरन वाले ने आवाज को कभी तेज किया, कभी धीमा किया, ये बताने के लिए कि कुछ जरूरी है, कुछ अहम है, किसी की जान बहुत ज्यादा जरूरी है, कीमती है, मुझे बचाना है उसे, मुझे जगह दे दो, गुजर लेने दो मुझे। हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची। अब ये वो सुन रहा होगा या नहीं सुन रहा होगा मुझे नहीं इस बात का इल्म, लेकिन आप में से बहुत से लोग सुन रहे होंगे। पीछे से हॉर्न की आवाज मुझे बार बार देनी पड़ी, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने हॉर्न की आवाज मिलाई और फिर जाके कहीं लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो आगे पीछे हुए कि पीछे एक एम्बुलेंस है, उसको गुजरने देना। हम खुद ख्याल नहीं करते तो फिर किस तरह से हमारा ख्याल किया जाएगा। बहरहाल इस प्रोग्राम को करने का बहुत ज्यादा मजा आया। कल रात 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वंस अगेन ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे बाद आपका साथ निभाएंगे वसीम अहमद, बिल्कुल कहीं नहीं जाना। इस यही ट्रैक आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, बल्कि इस ट्रैक की जगह मैं वो जो पहले मैंने ट्रैक लगाया था शुरुआत में, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा दिल चाह रहा है कि इस ट्रैक को एक बार फिर से सुना जाए। अगर कोई मैसेज मेरी नज़र से ना गुजरा हो, गुजर गया हो और मैंने देखा ना हो, माजरत चाहता हूँ, कल के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं ज़मीन से एक दिन आसमां को आऊँगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह हामी नासर।

0: FM 101 की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
1: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
2: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइंड शोज।
1: चांद रात स्पेशल
2: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: ईद का खुसूसी शो।
1: ईद मुबारक पंजाबी स्पेशल।
0: सुनियो ईद मुबारक।
2: चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, मैं तवा तो सदके जा सुनियो थीरियो
1: ईद के रंग FM 101 के संग।
0: और ईद का दिन है
1: जिनमें होगा आपके पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा हल्ला गुल्ला,
0: शोखियाँ, शरारतें
1: और आपके दिलों को छू लेने वाले गीत।
0: तो फिर सुनना ना भूलिएगा
1: ईद के पहले दो रोज FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: There's music and then there's magic. There's music and then one above FM 101.

आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक। आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल। तो सुनते रहें FM 101।

0: listening to FM 101, a balik-balik o shower-shower.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हारे आने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी के मुस्कुराने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी के मुस्कुराने से ईद होगी। तुम्हें ही देखूं मैं आज हर पल, तुम्हें ही देखूं मैं आज हर पल, इसी बहाने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी कि मुस्कुराने से ईद होगी।

उदासियों को भुला दो जाना, उदासियों को भुला दो जाना, कि गम भुलाने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी, कि मुस्कुराने से ईद होगी। बुला लो सबको मगर तुम्हारी, बुला लो सबको मगर तुम्हारी, मुझे बुलाने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी, कि ईद होगी। बहुत अच्छी, तुम जो आ जाओ तो बहुत अच्छी, मेरी जमाने में ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी, कि मुस्कुराने से ईद होगी। हंसोगी जब तुम तो मैं हंसूंगा, हंसोगी जब तुम तो मैं हंसूंगा, कहां रुलाने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी, कि मुस्कुराने से ईद होगी। दुआ करो कि खत्म हो दूरी, दुआ करो कि खत्म हो दूरी, के पास आने से ईद होगी, दुआ करो कि खत्म हो दूरी, के पास आने से ईद होगी। तुम्हें ही देखूं मैं आज हर पल, इसी बहाने से ईद होगी, तुम्हारे आने से ईद होगी, कि मुस्कुराने से ईद होगी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, सबसे पहले दिल की गहराइयों से मेरी तरफ से तमाम खूबसूरत समातों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। ईद का दिन है जनाब, कुछ आप कहिए, कुछ हम कहेंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ कह कहे लगाएंगे, कुछ घूमेंगे, कुछ फिरेंगे, कुछ सैर करेंगे, कुछ रेस्ट करेंगे और बहुत सारा खाएं पिएंगे। आज जो हमारा रूटीन का प्रोग्राम है, जैसे हम हर हफ्ते आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं जिसमें बहुत सारी शायरी होती है, आज कंपैरेटिवली हम शायरी प्रोग्राम में कम करेंगे, मगर आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप ईद के हवाले से अगर कोई बात कहना चाहें, शायरी की ज़ुबान में कहना चाहें, कोई शेर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, क्योंकि माहौल भी खूबसूरत है और वक्त भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सारे दिन के काम काज करके आप थक, जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी च थक टुट के, इस वेले तुसी अपने बिस्तरे देते मौजूद जे, और सोने की भी, कुछ लोग तो बहुत गहरी नहीं सो रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम किया सुबह से लेके अब तक, बल्कि रात तक, अब तो खैर रात का आखिरी पहर शुरू हो गया, मगर फिर भी कुछ हमारे बहुत चाहने वाले लोग जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और हम भी जिस तरह से आपको ताज़ा दम और फ्रेश नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी इसी तरह से बहुत फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा दम होकर हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, क्योंकि 101 FM पाकिस्तान हमेशा आपके साथ रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे दूरी हो चाहे नज़दीकी हो, चाहे खुशी हो चाहे खुदा ना खास अल्लाह ना करे कभी कोई उदासी हो, तो हम हर वक्त आपके साथ मौजूद होते हैं, आप हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। रात का ये पहर है, ईद की तैयारियां बहुत सारी हो चुकी, ईद आई और ईद का अगर डेट देखी जाए तो ईद कल थी, मतलब अगला दिन चढ़ चुका है, अगली डेट आ चुकी है, मगर स्टिल ईद जारी है और माशाल्लाह ये ईद 3 दिन तक जारी रहती है। तो एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से तमाम सुनने वालों को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल हो। प्रोग्राम आपका जाना बेजाना गुंचा शौक, मैं आपका मेज़बान वसीम अहमद आपके साथ सुबह के 4 बजे तक, आपकी खूबसूरत कॉल्स, आपके खूबसूरत मैसेजेस, आपके खूबसूरत अशआर और आपकी ईद के हवाले से खूबसूरत बातें प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपसे पूछेंगे कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार ईद कौन सी थी। आज की ईद हमारी दीद की ईद या किसी की दीद की ईद, वो भी तो ईद ही होती है ना, जिसको हम चाहते हैं उसकी अगर, उसका अगर दीदार हो जाए तो वो भी खुशी का मौका होता है।

वो भी ईद होती है। वैसे कुछ अपने चाहने वालों को हम ये भी कहते हैं, जनाब आप इतने दिनों बाद हमें मिले हैं, आप तो ईद का चांद हो गए जनाब। ईद का चांद, क्योंकि जो ईद का चांद होता है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, मिलता भी है तो फौरी तौर पे गायब हो जाता है थोड़ी देर में, शामो शाम मिल जाए तो शामो शाम गायब हो जाते हैं। तो कुछ लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं हमेशा, मगर वो मिलते बड़ी मुश्किल से हैं, उनको तलाश करना पड़ता है बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, और फिर जब हम उनको देख लेते हैं तो वो हमारे दिल में समा जाते हैं, हमारी निगाहों में समा जाते हैं। कौन है जो आज आपके दिल में आया, आपकी निगाहों में आया, आपके सपनों में आया और आपके सपने आज सच हो गए? तो कौन सी ईद आपकी यादगार है? ऊंचा शौक प्रोग्राम आपके लिए 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से आज के दिन पेश किया जाता है, बुध और जुमेरात की शब, और मैं आपका अपना मेजबान वसीम अहमद आपके साथ। इंटरनेशनल शो है और नेटवर्क के ऊपर भी हमारे बहुत सारे इंजीनियर्स ने इसे आपके लिए उठाया हुआ है, तो तमाम इंजीनियर्स को जो कि इस्लामाबाद में भी हैं, क्वेटे में भी हैं, पिशावर में भी हैं, कराची में भी हैं, सियालकोट में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, जहां जहां पे 101 FM का नेटवर्क मौजूद है वहां वहां पे हमारे इंजीनियर्स, हमारे जितने भी साथी हैं वो हमारे प्रोग्राम को आपके लिए पेश कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद कबूल हो और उनका बहुत सारा शुक्रिया कि वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को आप तक कामयाबी के साथ पहुंचा रहे हैं। कई साहब क्या कहेंगे आप, कौन सी ईद यादगार थी या कौन सी ईद आप सोचते हैं कि अगर इस तरह से हो जाए तो यादगार ईद हो जाए? प्रोग्राम में आपकी पसंद के खूबसूरत गीत शामिल किए जाएंगे, कुछ गीत सदाबहार होंगे, कुछ आपकी पसंद के मुताबिक जो भी गीत आप सुनना चाहेंगे, और अगर आप आके सुनाएंगे तो हम उस गाने को भी फौरी तौर पे प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे फौरी तौर पे प्ले करने की। तो प्रोग्राम में आपके साथ गपशप भी होगी और आपके लिए हम कुछ ईद के अशआर भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप भी ज़रूर कीजिएगा, और प्रोग्राम में हंसते मुस्कुराते हुए हम बढ़ते चले जाएंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम का सबसे पहला एवरग्रीन सॉन्ग हम शामिल करने जा रहे हैं। ईद का दिन हो और मुलाकात ना हो, बड़ी उदासी सी हो जाती है, और मुलाकात हो तो फिर आपके बढ़ते जाते हैं। आपकी बातें जो है ना, आपकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाती हैं। पहले ख्वाहिश होती है कि जनाब हम मिलेंगे उनसे, फिर ख्वाहिश होती है कि जब उनसे मुलाकात हो जाए तो उनसे बात करेंगे, जब बात करने की ख्वाहिश पूरी हो जाए तो उनको मुस्कुरा के देखेंगे, जब वो मुस्कुरा के देखने की बात पूरी हो जाती है तो फिर आंखों में आंखें डाल के ईद की मुबारकबाद भी देंगे। इसी तरह से ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं, ख्वाहिशें पूरी होती चली जाती हैं। कुछ ऐसी ही बात इस खूबसूरत गीत में, मैं हमेशा ईद के शोज में इस गीत को चलाता हूँ, ईद का दिन है।

0: ईद के खुशियों भरे मौके पर FM 101 ला रहा है
1: आपके लिए हंसते मुस्कुराते और कहकों से सजे खुसूसी कंबाइन शोज।
0: चांद रात स्पेशल
1: भलकते कैसा ये चांद निकला।

0: साहब ईद कैसी गुजरी? यकीनन बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज तो वैसे बहुत ही शदीद गर्मी थी और ख़ास तौर पे मैं लाहौर की बात करूँगा तो बहुत हाई टेम्परेचर था। मुझे जैसे लग रहा था कि हीट वेव है। और कुर्बानी के जानवर भी निढाल थे और इंसान भी निढाल थे। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि अभी ये सिलसिला जारी रहना एक दो दिन, शायद अल्लाह करे कि सुबह ही बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। मगर फिर भी हमें एहतियातन जो है वो गर्मी से बचाव की जितनी भी रेमिडीज़ हैं उन्हें इख्तियार करना चाहिए और सर को ढांपना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और धूप में बगैर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना घर में जहाँ भी ठंडी जगह हो वहाँ छुप के बैठे रहे। और जनाब देखते हैं कि लाइन पे हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: जी शुक्र अल्लाह ठीक हैं। कौन बोल रही हैं?
1: आज ये फर्स्ट कॉलर मैं हूँ आपकी।
0: जी बिल्कुल फर्स्ट कॉलर, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं बिस्मल होल से बात कर रही हूँ। सब सो गए आज क्या? मैं सेकंड टाइम बात कर रही हूँ आपसे। उस दिन मैं ये बोल रही थी ना,
0: जी जी,
1: मैं फर्स्ट टाइम कॉल की थी आपको।
0: आपका एकदम से फोन कट हो गया था।
1: हाँ जी, सुबह फिर बैलेंस करवाऊंगी क्योंकि फिर मैंने सुबह पार्टिसिपेट करना है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मोहब्बत हो गई आपका।
0: ये पता क्या है, ये 1-1 FM
1: और जो कॉलर्स आते हैं उनसे ही पता नहीं क्या हो गया।
0: मैं आपको बताता हूँ, ये मैजिक एक जादू है। पता है कौन सा जादू है? ये मोहब्बत का जादू है। ये फैमिली चैनल है, सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। और जो भी यहाँ भी आ जाता है वो कहीं और नहीं जाता। आप ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी?
1: ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी है। आज आपको पता है फर्स्ट टाइम मेरी शिफा मलिक से भी बात हो गई, मेरी कॉल मिल गई उनके शो में भी।
0: अच्छा,
1: फेवरेट आती हैं।
0: मैंने समझा कि आपने कहा शिफा मलिक ने आज सीख कबाब बना के खिलाए आपको।
1: उन्होंने बस मैंने खा लिया ना, बस कॉल मिल गई, बात होगी तो बस
0: बहुत अच्छा
1: लगा। और फिर आज जोक से बात हो गई फर्स्ट टाइम।
0: जी जी,
1: तो बड़ा था उनकी कॉल, उनके शो में तो कॉल ही नहीं मिलती।
0: हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: और उस दिन अचानक मैं जाग रही थी तो मैंने कॉल की आपको, फिर आपसे बात हो गई मेरी तो ना, फिर मैं आपसे बात कर रही थी कि इस टाइम तो सब जाग रहे होते हैं।
0: जी सब लोग जाग रहे होते हैं। आप देखें हमारी आवाज को सुने और अपनी आवाज को सुने, कोई बंदा कह नहीं सकता कि रात के इस वक्त 2:45 बज रहे हैं तकरीबन।
1: जी
0: तो ये आप लोगों की मोहब्बत है ना 1-1 के साथ।
1: आप इतने स्लो मोशन करते हैं ना शो, तो आज आपने इतना वो नहीं करना ऐसे, मतलब शायरी और इतना स्लो, तो थोड़ा सा ना फास्ट करें, थोड़ा सा मतलब टेम्पो चेंज कर लें अपना।
0: आज तो चेंज किया हुआ है, आज तो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, आज तो बड़ा चेंज है, आज तो म्यूजिक भी चेंज है।
1: आप इतनी बातें करने के बावजूद भी आपका अंदाज वही है जो है,
0: मगर गुंचा शौक है ना, क्या करे।
1: अभी हमारी परवीन पापा आई थी कराची से, वो कह रही थी कि रिक्शा की तो कॉल हर शो में लग जाती है, इसके पास ऐसा कौन सा मैजिक है, कौन सा जादू है। तो आज तो वो भी बड़ी लकी साबित हुई है, रहमान भाई के शो में दो दफा कॉल लगी
0: उनकी, मैंने सुनी थी, दोनों कॉल सुनी थी इनकी।
1: बाकी अच्छा आप सब आ गए वैसे?
0: हाँ, एक मैंने घर में सुनी थी, एक मैंने यहाँ आके सुनी थी।
1: अच्छा वाहो,
0: तो टॉपिक पे बात करें ना, ये बताएं कि आपकी ईद कौन सी यादगार ईद थी आपकी?
1: अच्छा पुरानी बात कर रहे हैं आप।
0: यादगार तो पुरानी ही होगी, आज की भी हो सकती है, जरूरी नहीं पुरानी है। आज की यादगार ईद थी आपकी या है?
1: है
0: अभी गुजर तो गई है। क्या वजह, क्यों यादगार है
1: वो? इसलिए कि आज मेरी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हुई और सारा दिन सब रेडियो 101 के साथ मैंने गुजारा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त।
1: और आपने ये सॉन्ग प्ले करना है, ये वाला दिल तो बच्चा है जी।
0: ओके
1: ये भी मैंने आपकी शो के मुताबिक कलेक्ट किया है, इसके अलावा और भी बहुत है तो बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: बहुत
1: सुनने वालों को मेरा सलाम और ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक आपको भी, बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, वन वन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। मैं हूं वसीम अहमद आपके साथ। क्योंकि गुंचे शौक प्रोग्राम में हम आपके लिए पोएट्री शामिल करते हैं तो इसलिए इसका टेम्पो जो होता है वो कंपैरेटिव। मलिक वसलाम।
2: हाय, दूसरी कॉल मेरी मिल गई।
0: हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन
2: जी? मैं लाहौर से रिमशा, दूसरी कॉल मेरी मिल गई।
0: रिमशा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। मुझे लगता है कि रिमशा ने ना ढेर सारा गोश्त खाया आज।
2: अल्लाह, नहीं मैं गोश्त नहीं खाती।
0: हाँ, क्या करती हो?
2: मैं दिमाग खाती हूँ।
0: तो उसके लिए बेस्ट बेस्ट जगह जो है ना वो वन वन एफएम है।
2: हाँ बिल्कुल।
0: तो क्या कहोगी?
2: और मैं ये कहूंगी कि भाई आज कम चुके रखें। हाँ जी, ये आप जो बकरा, ये जो भड़का शक्का मारते हैं ना पंजाबी शो के अंदर, इस टाइम भी अभी ऐसे कर ना तो ऐसे मुस्कुराहट आती है।
0: हाँ, ये तो है।
2: और
0: तो
2: अभी परवीन आपकी आई थी, उन्होंने कहा था कि रिमशा आपकी कॉल कैसे मिल जाती है। वो ना मैंने ना रेडियो पे कॉलर की ना, उन्होंने कहा था कि कॉल मिलानी हो ना मिस बिल्ला पढ़ते मिलाए। मैं आप मिस बिल्ला पढ़ती हूँ ना, फिर वो ना ये होता है जितने शैतान होते हैं भाग जाते हैं, मेरी कॉल मिल जाती है।
0: अच्छा, ये आप किसको कह रही हैं ये इस तरह की बातें?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, हाँ। वो जो कॉल मिलाने से मुझे रोक देते हैं ना वो शैतान, इसलिए ना वो पीछे हट जाते हैं, मेरी कॉल मिल जाती है। और दूसरा यही तरीका कि बटन पे हाथ रखो मिल जाएगी।
0: अच्छा, कौन सी ईद यादगार?
2: यादगार ये कि कुछ ईदें ऐसी थी जो मेरे बाबा के साथ मेरी गुजरी बहुत अच्छी। और अब ये जो ईद है इस ईद पे मुझे थोड़ा सा मेहमान फील कराया है सबने, मुझसे ज्यादा काम नहीं लिया गया। और ये है कि ज़िलहज के महीना था, यानी 25 तारीख को मेरा निकाह हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मुझसे ज्यादा काम नहीं ना करवाया, ये भी मेरे लिए यादगार है।
0: उन्होंने पता होगा कि बहुत काम करवाते हांडी ला देनी है। पूरे घर में जो है ना हंडिया की जलने की बू आएगी, इसको रोक के रखो ऐसे।
2: हां, उन्होंने मैंने कहा तुसी बस मसाला बना दे, बाकी काम असी आप ही कर लेंगे।
0: रिमशा बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा और यकीनन आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये है कि वही ये होता है ना कि जाने वाले के बगैर जो चला जाता है उसकी तो याद आती
0: है, उनको बहुत मिस करते हैं हम लोग।
2: बिल्कुल, और मैंने अपने बाबा को बहुत मिस किया क्योंकि वो, क्योंकि सुबह जब इंसान नमाज पढ़ के आता है सबसे पहले अपनों से मिलता है, गले मिलता है, फिर उनकी जो है ना कमी थोड़ी महसूस होती है।
0: बिल्कुल बेशक, बिल्कुल ठीक कहा।
2: और भाई थोड़ा सा ना सैड ना हो, थोड़ा सा कम चुप के रखे।
0: हम तो इतना हंस रहे हैं, हम तो इतना हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
2: नहीं नहीं, वो अभी आप ही आई थी, मैंने भी बोला था ना, नहीं आप ना थोड़े वो हो जाते हैं घूम घूम से। वो भी आपने रहमान भाई के साथ बोला था कि हले गोश्त गोश्त के टुकड़े करने ने, उनसे टुकड़े नहीं करते,
0: मतलब वो टेपो बना लूंगी, वो कीमा बना के छड़ा गाज में।
2: हाँ, कम चुप के रखना।
0: चले बिल्कुल ठीक है, ऐसे करेंगे
2: वालों को मेरा सलाम। और आप इस तरह से मुस्कुराते रहे और कम चुप के रखना, ठीक है?
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। ओके जी, रिमशा भी कह रही है कि जरा कम चुप के रखो, तो तुसी आओगे तो कम चुप के रखांगे, अदरवाइज थोड़ा जहा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी ईद का दिन है, सारा दिन काम कर करके ना कई दफ़ा बंदा थक भी जाता है ना, मगर हम हमेशा फ्रेश होते हैं, बिल्कुल जिस तरह से आप फ्रेश होते हैं। जो लोग हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं वो इस नंबर को डायल करेंगे, पाकिस्तान से बाहर से अगर कॉल करेंगे तो 0092 मिलाएंगे, फिर 42 मिलाएंगे, फिर 1111 0101 मिलाएंगे, और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से कॉल करेंगे तो आपने पहले 042 मिलाना है, उसके बाद 1111 0101 मिलाना है। आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है, ईद के हवाले से बातचीत हो रही है। और जनाब ईद के उत्ते ना तेर भंगड़े पौ ठीक वगैरह बड़े लोगों ने भंगड़े छोड़े पाए। हेलो हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। हमीद गुल साहब, क्या हाल है आपके?
3: आप ठीक हैं? ईद मुबारक।
0: खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी दुआएं हैं।
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे आप।
0: आमीन, आपको भी।
3: मैं आज सोच रहा था कि सारे प्रोग्राम लोग कहते हैं काम चुप के रखना है।
0: हाँ।
3: मैंने कहा बंदा बहुत ज्यादा भी पढ़ लिख जाए ना,
0: हाँ।
3: वैसे दुनिया बड़ी कम पढ़ी लिखी होगी।
0: हाँ।
3: ज्यादा बहुत भी ज्यादा पढ़ लेना,
0: हाँ।
3: यानी बहुत अंग्रेजी भी बड़ी आ गई और सारी जुबानें भी सीख ले, लेकिन वो महबूबा को खत उर्दू में ही देगा।
0: बिल्कुल ठीक है, उर्दू में लिखेगा और एक एक लाइन तीन लफ्ज अंग्रेजी में जरूर लिखेगा, बल्कि उसको भी उर्दू में लिख देता है। अलिफ मत आ छोटी ये आई, लाम वो लव, ये वो यू।
3: मैं एक एक नई चीज की तरफ आपको ना आपको लेके जा रहा हूँ।
0: सही बात है।
3: तो वो है, चाहे वो ख्वाब जो है कितने भी अंग्रेजी में देख ले,
0: हाँ।
3: लेकिन शेर उर्दू में लिखेगा।
0: सही बात है।
3: मैंने कहा थोड़ा सा शुगर लगाएं।
0: सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है।
3: नहीं नहीं, वो हमें तो खैर ये हुनर आता है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कौन सा हुनर?
3: ये बोलने का हुनर।
0: अच्छा, मैंने कहा ख्वाब ख्वाब भी उर्दू में देखने का हुनर।
3: नहीं, हम देखते भी ख्वाब उर्दू में ही है।
0: सही सही बात है।
3: वो वैसे एक शुगर में आपको एक शेर सुनाते हैं।
0: जी जरूर।
3: ये थोड़ी थोड़ा लतीफा सा है तो न्यू जनरेशन के लिए, कि किसी ने शेर लिखा, उस्ताद ने कहा मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, तो आपने इसका वो बताना है, क्या कहते हैं, तशरीह करनी है।
0: जी जी।
3: शागिर से कहा, उन्होंने कहा लेकिन बताएं, तो उस्ताद ने शेर पढ़ा कि मैं मुतमईन तो हूँ तेरे तसव्वुर से, लेकिन मैं चाहता हूँ तू मेरे रूबरू आए।
0: आहा, आहा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
3: तो वो उन्होंने कहा कि इसकी तशरीह क्या है? तो उसने कहा कि इसकी तशरीह ये है कि शायर जो है वो वीडियो कॉल करवाना चाह रहा है। वीडियो।
0: बिल्कुल ठीक। मेरे रूबरू।
3: तो वो
0: और तो कोई सिलसिला बन नहीं सकता, तो कम से कम वीडियो कॉल में रूबरू आ जाओ।
3: वो कह रहे थे ना कि, मैंने कहा देखते हैं हम प्रोग्राम को कहां तक उठा सकते हैं।
0: हाँ, प्रोग्राम तो हमने वैसे उठाए हुए।
3: ज्यादा ना उठा लीजिएगा।
0: हाँ।
3: बाजूकार बंदा कहता है ज्यादा सुर लगता है, इतना सुर लगाने से ना पता लगे सुर वापस ही नहीं आ रहे। सही नहीं वापस आ रहा ना।
0: बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही
3: ठीक है ना। तो वो हमारी बड़ी बहुत सारी यादगार तो बहुत सारी थी हैं, लेकिन एक पाजेब जो है वो बड़ी यादगार है हमारी। लेकिन क्या हसीन इत्तफाक है कि मैं गांव में था छोटी ईद को।
0: जी जी।
3: ईद उल फितर को।
0: जी जी।
3: तो मेरी आपको दिन में पंजाबी के प्रोग्राम में बात हुई। याद है आपको?
0: जी जी, कुछ कुछ याद आ रहा है जी।
3: हाँ, कुछ कुछ मैं याद दिला दूंगा आपको। तो कुछ कुछ आपको याद आ रहा है। तो वो एक एक बाजेब जो है वो हमारे जहन में आज तक नहीं, मतलब वो गई। तो मैंने आपको चार मिसरे भी सुनाए।
0: बिल्कुल सुनाए थे, बिल्कुल सुनाए थे।
3: आज भी सुनाऊंगा आपको।
0: जी सुनाइए।
3: और वो पाजेब और पाजेब वाली भी हमारे पास है।
0: क्या बात है, वेरी लकी मैन। लकी बॉय, लकी बॉय।
3: नहीं, वो अब तो क्या बॉय रहना हमें अब। अच्छा, लेकिन आपने ये ठीक कहा, जब आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, मेरा बेटा जवान है माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे, तो बंदा खुद जवान हो जाता है।
0: सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक।
3: ये मुझे ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो वो चार मिसरे आपकी नजर काट रहा हूँ
0: जी।
3: तो मैंने कहा क्योंकि ये खालिसतन एक उर्दू का प्रोग्राम है
0: जी,
3: चाहे किसी ईद का त्यौहार हो, कुछ भी हो, बात वही है कि बंदा कुछ भी कर ले, लेकिन एक शेर महबूबा को अपना उर्दू में लिखेगा।
0: बिल्कुल ठीक,
3: ठीक है ना। तो चार मिसरे मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बल्कि इसे बड़ा खूबसूरत दिन बनाया था नीला साहिबा ने, कि ईद होती थी कभी गाँव में, ईद होती थी कभी गांव में। आप यादगार कह लें इसको मेरी, ईद होती थी कभी गांव में, हाँ इसी धूप सी छांव में, एक पाजेब निशानी उसकी,
0: वाह,
3: एक पाजेब निशानी उसकी, एक पाव रेब उसी पाऊं।
0: क्या बात है, क्या बात है, प्यार में इश्क में डूबा हुआ शेर है ये।
3: यादगार जो है, यादगार जो है,
0: यादगार
3: अब तो खैर यादगार हमारे जमाने में ना, मैंने कहीं किसी एफएम पे ये बात हो रही थी ईद के हवाले से
0: जी।
3: ईद में गांव में बड़े मेले लगते थे सर।
0: सही बात है,
3: ठीक ना, बड़ी वो एक मेले और वो बड़ा एक जश्न होता था, एक समा होता था गांव में। शहर में क्या ईद होगी सारी। अच्छा, आज से 20 साल पहले जो शहर में ईद होती थी वो तो अब नहीं रही।
0: सही बात है, ऐसा ही है।
3: अच्छा, शहर तो खाली हो जाता है, शहर में खुद मकामी लोग कितने होते हैं।
0: हाँ।
3: मैं हमारे यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में शहर खाली हो जाते हैं,
0: सारे लोग है। लाहौर भी खाली होता है काफी।
3: हाँ, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, तो सारे चले जाते हैं, सब अपने अपने गाँव को चले जाते हैं, या अपने कोई नानके की तरफ, कोई दादके की तरफ ना। बाद लोग चाहे लाहौर के जो मुकीमी होंगे वो लाहौर में होंगे, जिनका पूरा जिनकी पूरी फैमिली यहाँ पे होगी, या जिनकी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन ऐसे बड़े कम गार मिलेंगे आपको।
0: सही है, सही है।
3: मतलब शहर आपको सड़कें खाली हो जाती हैं और कुछ भी नहीं होता।
0: बचपन में हमारे बहुत रौनक होती थी सड़कों, इधर मेले ठेले लगते थे, बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। अब तो मतलब लोग टेलीविजन वाले चिड़ियाघर में घूम रहे होते हैं, मगर चिड़ियाघर आज तो बहुत ही गर्मी थी, खाली नजर आ रहा था चंद लोग।
3: असल में वो उल्टा हो गया मामला।
0: हाँ।
3: जो चिड़ियाघर था ना।
0: हाँ।
3: वो चिड़ियाघर बाहर बन गया।
0: बहुत शुक्रिया अमित गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
3: सलामत,
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, मनमोहन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। राहत फतेह अली खान की आवाज। वक्त 5:52

0: हेलो हेलो लो जी, वो आए भी वो गए भी, वो खत्म फसाना हो गया। वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैम स्टेशन, अगले कॉलर से बात करते हैं। कौन सी ईद यादगार थी? हेलो
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: वसीम भाई, क्या हाल है? अब्दुल हाशमी की बात काट रहा हूँ
0: जी। अब्दुल हाशमी कैसे हैं, कैसी ईद गुजरी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपको और तमाम लिसनर्स को ईद उल अज़हा मुबारक।
0: खैर मुबारक।
1: तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, और इस दफा मेरी ईद बहुत बहुत यादगार थी।
0: अच्छा, जबरदस्त।
1: पहले हम ज्यादा दोस्त रिश्तेदारों में ज्यादा बांट देते थे, इस दफा मैंने रिश्तेदारों को मना कर दिया जिन्होंने कुर्बानी की थी, ना हमें गोश्त भेजे ना मैं भेजूंगा।
0: बहुत अच्छे,
1: जो हमारे सफेद पोस्ट जो लोग हैं जो किसी आगे हाथ नहीं फैलाते, तो उनकी मैंने लिस्ट बनाई और उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह ऊट किया। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है,
0: जबरदस्त।
1: एक दो दिन का हमने गोश्त रखा और सब बांट दिया जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, सफेद पोस्ट लोग जो किसी से आगे हाथ नहीं फैलाते, तो अल्लाह ताला से दुआ करे कबूल करे,
0: आमीन।
1: बहुत बढ़िया। दूसरी बात हमारी ये आई थी, रिमशा है ना
0: जी, जी,
1: इनका निकाह हो गया है, तो ये बता रही थी मैं कि ये शो में सुन रहा था, तो इनके पापा की डेथ के बाद उनको अच्छी ये खुशखबरी मिली है, तो रुक्सती मेरे ख्याल बाद में है, हमें बुलाएंगी तो हम भी थोड़ी बहुत सलामी दे देंगे इनको, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: बिल्कुल ठीक।
1: तो मैं चाहता हूँ ईद के मौके पर चंद शेर ईद के मुनासबत से।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: सुनाइए। मैं ये खूबसूरत कपल जो है रिमशा और उनके उनके नाम करता हूँ
0: जी।
1: उनके रहेगी एक कली सी दिल में भारी ईद होगी, मिलोगे ना तुम नहीं तो क्या हमारी ईद होगी, मिलोगे तुम नहीं तो क्या हमारी ईद होगी, लबों पर मुस्कुराहट तो सिदाई होगी उसने, न जाने तरह कैसे पर गुजारी ईद होगी, हिफाज तुम रहोगे ईद के दिन भी तो जाना, बताओ फिर भला कैसे हमारी ईद होगी।
0: अच्छा,
1: मिलेंगे सब ही लेकिन सबसे हमको क्या है लेना, तुम आओगे तो मिलने तो हमारी ईद होगी, गमों ने ईद के दिन भी हमें तो मार डाला मगर खुशियों ने इनकी तो सवारी ईद होगी, और मकता है ख्याल औरों का रखोगे अगर मैं आप तुम तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी तुम्हारी ईद होगी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी तुम्हारी ईद होगी, दुआओं में याद रखें।
0: अब्दुल हाशमी, ये आपने उनके फियांसे की जानिब से ये शेर सुनाए हैं सारे के सारे?
1: हाँ जी, मैंने उनके नाम किए हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: और ये यादगार ईद है।
0: चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। वक्त बताता चलो, 2:55, नेक्स्ट कॉलर। हेलो,
2: अस्सलाम
0: वालेकुम भाई, की हाल है? ठीक ठाक जी, इस वेल जागते पे अजय,
2: ठीक ठाक जी, मुबारक।
0: यादगार होएगा, भेड़ा वक्त यादगार नहीं होएगा ना,
2: वो तो याद ही नहीं ना रहता।
0: अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुरी चीज को हमेशा याद रखते हैं, यार वो मेरे साथ ऐसे हुआ था मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता, यार वो मेरे साथ तब ऐसे हुआ था मैं उस बात को नहीं भूल सकता। खुदा के बंदे, अच्छी बातों को याद करो यार, बुरी बातों को भूल जाओ, है ना?
2: बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमेशा अच्छा वक्त और अच्छी बातें याद होनी चाहिए, और आने वाला वक्त जो होता है ना उसको तो आपने खुद अच्छा करना है, क्या ख्याल है?
0: सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक, यही होता है। और ये बताइए कि आपने कितना गोश्त खा लिया है, कितना बांट दिए है, और कबाब शबाब बना लिए, क्या किए क्या नहीं किया,
2: बस वो आपको क्या बताएं और क्या ना बताएं। असल में देखे, मेरा 2 महीने हो गया भाई, बहुत हुआ है। और ये आप याद की बात कर रहे हैं, पिछले साल बड़ी अच्छी यादगार थी हमारे भाई के साथ, और आज वो नहीं था तो बड़ा मशहूर हो गया।
0: हाँ, उदासी हो गई होगी ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। چلیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے, آپ کو بھی صبر دیں, اور زندگی کے ساتھ ساتھ سب کچھ اتار چڑھاؤ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا ہی عقل مندی ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, بہت شکریہ لیاقت بھائی, اللہ حافظ. ہو گئے جی, لیاقت بھائی ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں اور پروگرام میں شامل کر دیں جناب ایک خوبصورت سا گیت. پھر تھی کندھے سے پروگرام چکی نہیں رکھیا, تو جناب پروگرام کو اٹھا کے رکھتے ہیں, آپ سے بھرپور طریقے سے باتیں کرتے ہیں. میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ میرے سننے والے جو ہیں وہ اس وقت تھوڑی تھوڑی نیند میں ہوں گے, تھوڑی تھوڑی انود آئی ہوگی, مگر میرے سننے والے تو جناب کمال کی طرح فریش ہیں. دل دیا ساری گلاں کہہ جاوا, سنتے رہو ون ون ایف ایم پاکستان اپنے میزبان وسیم احمد کے ساتھ. 2:58 ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون زیرو ون از دا نمبر.

0: लो जनाब अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनिला जी, वेलकम वेलकम एंड वेलकम।
1: आपको भी वेलकम।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: हाँ, तो खड़के
0: हाँ, कुछ लग रहा है आपकी आवाज से, लग रहा है कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी।
1: हाँ कुछ ये फोन लाइन में भी थोड़ी डिस्टॉर्शन बहुत है और आवाज बाकी गला भी कुछ थोड़ा सा हुआ है मसला। और बाकी आपको और सब सुनने वालों को सब आज सबको मुबारक, बहुत बहुत
0: खैर मुबारक।
1: और आपने तो वाकई प्रोग्राम चुप के रखा हुआ, चक दे फटे हुए पे।
0: पता है कि अमेरिकन लोग थके होंगे, मैं उन्हें इस वक्त इतनी शोर शोर मचाऊंगा तो वो लोग जो कहेंगे कि क्या हो गया यार, मगर लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें हमने खूब हल्ला गुल्ला करना है, तो असि तो पहले तैयार होने हल्ला गुल्ला करने वास्ते।
1: मैं ना सोते जाते रही हूँ, लेकिन ये तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी आज तो मैं, हालांकि मैं 3 घंटे सोई हुई हूँ,
0: अच्छा
1: 6 से 9 बजे तक, मगर उसके बाद भी मैं नींद में गिर रही हूँ, शायद पता नहीं थकावट ज्यादा हुई है इसलिए। तो मैं प्रोग्राम अब सुन रही थी, मैं कभी सीन भाई कह रहे मेरे सारे कॉलर बड़े नींद में ही गए होंगे या फ्रेश हैं, लेकिन ये तो सारे फ्रेश होते हैं, आपकी आवाज सुनते ही फ्रेश हो जाते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: वैसे कह रहे हमारे 12 बजे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज जैसे आपका बीजीएम आपकी आवाज हम लोग फ्रेश हो जाते।
0: आज मैंने बीजीएम भी पुराने वाला कोशिश की है कि मैं प्ले करूं, कि थोड़ा सा डिफरेंस फिर महसूस। हाँ जी महसूस हो।
1: अच्छा लगा मुझे जब आपने वो किया ना, मतलब 8 से 10 करते थे।
0: हाँ एग्जैक्टली।
1: तो बड़ा अच्छा लगा और अच्छी रौनक लगी, ये सब आ रहे हैं ये भी जो, लेकिन साथ साथ जिंदगी के ये सारे मामला थे, वो बोधी जट साहब और ये लियाकत भाई, इनके जो रिलेटिव जिनकी डेथ हुई उनके लिए ताज़ियत भी है, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह था फरमाए। और जो ईद के बाकी सब जैसे लोग सब, जैसे अभी रिमशा ने बताया था उसका निकाह, उसके लिए बहुत सारी दुआएं मैं उस दिन डेट शो में भी दी, बड़ी जो दुआएं उसको अल्लाह उसको मुबारक करे,
0: आमीन,
1: खुशियां दिल से। और आपके लिए ये कि आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते जैसे आप एंटर हुए ना रहमान की, आपने पिछले शो से
0: उनसे मेरी दरवाजे में मुलाकात हुई, वो मुझे कहते कहते चलो आप भी जाके ज्वाइन करें।
1: हाँ डॉग्स का शो भी मैंने थोड़ा एंड में सुना, जल्दी नहीं सुना, मैं एंड में सुना थोड़ा, उसने भी अच्छा रौनक लगाई, रहमान ने भी बड़ी रौनक लगाने की कोशिश की थी आज। आज मैंने अपना सैडी प्रोग्राम नहीं किया। अच्छा लग रहा था।
0: ये बताइए कि आपने गोश्त के अलावा कोई केक शेक भी खाया कि नहीं खाया?
1: नहीं मैंने कोई केक शेक नहीं खाया।
0: मैं तो आज मिठाई ही खाधी जी, यकीन करो मैं क्या विकी जाएगी आज, वो मैं मेसू भी खाधा जी जेड़ा लोगों को लभदा ही नहीं। बड़ा मजा आया, मैंने चाट खाई, मैंने मिठाई खाई, मैंने यकीन करें कोल्ड ड्रिंक पी, और मैं बहुत कम पीता हूँ मगर मैंने पी, और उसके साथ साथ मैंने पुलाव भी खाया, मैंने बड़ी चीज जिन्होंने कहते हैं ना बढ़िया चीजा खा दी, बढ़िया
1: सारी लवाजमत चल रही है सारा दिन।
0: सही बात है, सही बात है।
1: और मैं तो बहुत कम चीजें जो ना खाती हूँ, इस तरह मैं तो किचन में काम करते करते वो खुशबुएं सूंघ सूंघ के ना सारी वो भी दिल
0: खवातीन का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया।
1: मैं आज थक गई, मैंने 3-4 डिशेस बना ली, गर्मी भी बहुत ही, मैं कहा बस नासिर होना कुछ नहीं करना।
0: तो आज आपकी ईद जो है ये यादगार ईद है या कोई पहले की यादगार ईद है जिसको आप शेयर करेंगी?
1: ये तो ईद एक रूटीन ईद की तरह ईद मतलब जैसे होती वैसे, लेकिन कुछ यादगार ईद तो पहले वाली तो बहुत जबरदस्त थी, जब हमारे बड़े हमारे साथ मौजूद थे, उनकी रौनकें और थी ना। और अब तो फैमिली में से कितने मेंबर्स अब दुनिया में नहीं रहे, और कितने मेंबर्स जो हैं वो भी मुल्क से बाहर सारे शिफ्ट हो चुके हैं।
0: सही बात है,
1: तो हम बड़े कम लोग यहाँ पे रह गए।
0: अच्छा हम ऐसे ऐसे जिद्दी बच्चे होते थे कि हम बड़ी ईद में भी ईदी लेके छोड़ते थे।
1: ऐसे ही है।
0: बच्चों बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती, ये नहीं हमने ईदी लेनी है, हम वो भी ईदी ले लेते थे।
1: छोटा भाई था क्या करता था, वो ईद लेता था और कहता था कि हमने खाना गोश्त में ईदी दे, हमने अपनी मर्जी की चीजें खानी है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: और फिर ना मुझे बड़ी

0: याद है कि बकरे वगैरह आए हुए थे घर में, तो मैं क्या करती थी, दरवाजे के पास खड़ी होकर ना, लॉन में जो बकरे थे ना, तो मैं वो खुले पैर थे, गेट बंद था, मैं कमरे के दरवाजे में खड़े होकर उनको कहती थी ऐसे करके, ये बकरा हूँ टक्कर बनाते हुए आता था, मैं दरवाजा बंद कर देती। मेरा भाई आया ना, तो उसको मैंने कहा ये बकरे ना इस तरह आते हैं बुलाने को, कहता अच्छा, वो बाहर गया, उसने दरवाजे के पास खड़े होकर ना, मैं अंदर दरवाजा बंद कर लिया, वो वहां पर उसको खड़ा होकर कहता ऐसे बकरा आया उसे तीन टक्कर उसको।
1: बकरे ने टुट मार देते।
0: बकरे ने ऐसा टुट मारा उल्ट के नीचे बचा।
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नीला जी, आपने बड़ी रौनक लगाई है।
0: बकरे को से बकरे में टूट मार।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: बचपन की तो खैर बहुत यादगार थी, और अभी सब आ रहे हैं, सबके लिए बहुत चीजें आई हैं, और आपके लिए भी अल्लाह ताला सबके लिए दिन ये लम्हात बहुत अच्छे करे, खुशियों भरे कर दे अल्लाह ताला।
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनदर ब्यूटीफुल नंबर 307, यानी 3:07 हो गए। स्वादीद सुबह सुबह ईद दोपहर सुबह सुबह ईद सेमिया दी ईद फ्योनिया दी ईद, उसके बाद नाश्ते की ईद, नाश्ते के बाद कुर्बानी की ईद यानी कुर्बानी का टाइम, कुर्बानी के बाद फिपरा कलेजी खाने का टाइम, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने का टाइम, फिर कोई मैंगो शेंगो खाने का टाइम, फिर आइसक्रीम खाने का टाइम, फिर खाना खाने का टाइम, फिर चाय पीने का टाइम, ओए होए होए होए, सुबह से लेकर रात तक खाना ही खाना। इंजॉय करते रहिए जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को सिर्फ 101 FM पाकिस्तान के साथ।

0: आज के प्रोग्राम का टॉपिक है कि आपकी यादगार ईद कौन सी थी, या आज की ईद आपकी यादगार ईद है तो क्या वजह है इसके यादगार होने की। वैसे भी जनाब ईद के दिनों में हमें ईद से पहले ही बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे बढ़ के ईद वाले दिन, ये तो खैर बड़ी ईद है, इसमें गोश्त वगैरह गोश्त की को बांटा जाता है, जिन जिन का हक है उन तक पहुंचाया जाता है। मगर उसके साथ साथ एक बात और भी है, और वो बात ये है कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई तन्हा शख्स है, अकेला रहता है, कोई बुजुर्ग है, उसके बच्चे बाहर गए हुए हैं, या वो वैसे किसी वजह से अकेले रहते हैं, तो उनके पास जाके थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ी सी बातचीत कीजिए, उनके दिल को बहलाइए, यकीन कीजिए कि अल्लाह जो है वो दिलों में बसा है, और जब किसी का दिल खुश होता है तो अल्लाह खुश होता है। तो अगर आज नहीं ऐसा कर पाए तो कल ज़रूर कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा ताकि आपकी बातें कोई सुन सके, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सके। और वैसे भी ईद खुशी का दिन होता है, ईद का मतलब ही खुशी है, तो कुछ ना कुछ दीजिए, कुछ ना कुछ लीजिए, यानी खुशी, कोई खुशी लीजिए, कोई खुशी दीजिए।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल नौवन
0: वरुण एफएम पाकिस्तान, आपका अपना फैमिली स्टेशन। अनदर ब्यूटीफुल नंबर इज कमिंग योर वे, दिस इज अ ठुमका, देसी ठुमका।
2: ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ
0: ਬਾਈ ਨਵਾਨ ਖਲੇਦ
2: ਓ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ
0: ਯੂ ਆਰ ਇੰਜੋਇੰਗ ਵਨ ਵਨ ਐਫਐਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ
2: ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
0: ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਅ
2: ਓ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ
0: ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈਲੋ
3: ਹੈਲੋ
0: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ
3: ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਰੈਸ਼
0: क्या बात है, क्या बात है, आप इस वक्त माशाल्लाह से मुस्कुरा रही है, बहुत अच्छा लगा।
3: काम करते रहे ना, तो आपका शो सुन के फ्रेश हो गए।
0: जबरदस्त जबरदस्त, कहिए क्या आज तो आपने अखीर कर दी होगी ना, आप तो आम दिनों में 50 खाने बनाती हैं, आज तो आपने एंड कर दिया होगा।
3: एंड हो गया, सेवियां पकाई, जलेबी थी, पूरा पकाया, कढ़ाई बनाई, आलू चने थे, मिठाई थी, तो आप शाम को पुलाव की नियत
0: की,
3: अभी नहीं बनाया, सुबह बनाएंगे।
0: अच्छा जबरदस्त, कौन सी यादगार ईद है आपकी?
3: बड़ी छोटी दोनों काम करके गुजर जाती है, अनिला ही बड़ा अच्छा लगा।
0: अल्लाह हाफिज़ हो के जी।

0: हेलो,
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: रसीम साहब, आपको और तमाम सुनने वालों को सलामुअलैकुम और ईद मुबारक।
0: वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ?
1: सलमान भट्ट सन्नाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: कौन से भट्ट?
1: मोहम्मद सलमान भट्ट।
0: मोहम्मद सलमान भट्ट, हम आपको वेलकम कहते हैं। समनाबाद लाहौर से आपकी कॉल आई है, कहिए कैसी गुजरी ईद आपकी?
1: प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, बहुत ईदें सारी यादगार होती हैं और बच्चों के साथ हर एक छोटी सी ये मासूम बच्चे की ईद है। वो मैं आपको दो मिनट की बात, एक बच्चा था वो चांद रात को उसने दादा के साथ जाना, वो एक नोटों वाला हार होता था उसने वो खरीदना, शेरवानी खरीदनी, खुदा और ऊपर कुल्ला वगैरह, इतना मासूम बच्चा था। और सुबह जब ईद की नमाज पढ़ गया ना, उसने वो दूल्हे वाला सारा लिबास पहन गया गली के चक्कर लगाने में, बाकी कर रहे कहता मैं दूल्हा बनाऊ, मैं ईद वाले, वो समझता था ईद वाले दिन दूल्हा बनते हैं। मासूम बच्चा बेटा था मेरा, तो बेचारा 10-11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो सेलिब्रेट करते हैं बच्चे बच्चे और भी हैं सबके साथ। वो इस वक्त तो था तकरीबन 25-20 साल पुरानी ये बात है। वो मासूम था जरा, उसकी ना आदतें यानी कि 11 साल का था, आदतें उसकी 7-8 साल के बच्चों वाली थी। तो वो बहुत प्यार लेके गया, 6 साल का बच्चा भी उसका दोस्त था, 80 साल का बाबा भी उसका दोस्त, सारा मोहल्ला। और उसके यकीन जनाजे के साथ मर्द तो जाते हैं, मैंने औरतें भी जाते हैं देखी, पहला ऐसा जनाजा मैंने देखा कि औरतें भी साथ गई उसके जनाजे के। बहुत मासूम था,
0: बहुत मासूम बच्चा होगा ना, बहुत प्यारा होगा। चलिए अल्लाह,
1: वो उसने ना वो उसको मैंने देखा दादा के साथ जाना चांद रात, उसने ये चीजें खरीदनी सुबह सुबह उठ के, प्यार खूबसूरत भी बड़ा था बाकी फैमिली से हम है, तो वो उसने ना कुल्ला शुल्ला पहनना, वो औरतों की मोहल्ल के औरतें धोखे एक ही बने हैं। मैं दूल्हा बना हूँ, आपको नहीं पता ईद वाले दिन दूल्हा बनते हैं? ये देखिए मैं नोट वाला हार पहना हुआ।
0: ये देखिए ये जो मासूमियत होती है ना, ये यही असल में याद रह जाती है, यही जो होती है ना।
1: उस वक्त उसके बहन भाई छोटे थे, अब हम दूसरे बच्चों को उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, कहते हैं हमारा भाई था, मैंने कहा ये भाई था। तो 11 साल की उम्र में बेचारा,
0: अल्लाह ताला आपको सब्र दे और सबके लिए।
1: जब भी ईद मनाते हैं इन बच्चों के साथ
0: तो उसकी याद हमेशा साथ रहती है,
1: उसको भी याद करते हैं। हाँ जी करते हैं। तो ये साल परसों के प्रोग्रामों में शेयर हो रही थी, मैंने कहा बहन भी अपनी ये बात आपसे, और आपके प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, सेहत आपकी ठीक रहती है आप?
0: जी जी शुक्रिया अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है।
1: नसीम भाई एक आर्सेनिक एल्बम दवाई होती है होम्योपैथिक की, सांस वगैरह के लिए बड़ी बेहतरीन दवाई है। वो कभी
0: चले कभी आपसे बात होगी तो फिर आपसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच।
1: तंदुरुस्त रहे, लंबी जिंदगी रहे, सब सुनने वालों को सलाम, ईद मुबारक।
0: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।
2: आपकी खुशियों में आपके शौक के ऐन मुताबिक आपके साथ साथ आपका अपना चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मौज मेला हल्ला गुल्ला, आपके पसंदीदा आरजेस एक साथ बनाएंगे आपकी ईद को स्पेशल, तो सुनते रहें FM 101।
0: जाएंगे बैक टू बैक म्यूजिक और साथ बैक टू बैक आपकी कॉल्स और आपकी खूबसूरत बातें। ईद का दिन और ईद की रात, सभी कुछ आपके साथ साथ सिर्फ 101 FM के साथ। एंड दिस इज आसिम अजहर। फेसबुक पे आपके पैगाम पहुंच रहे हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। बड़े कम से पैगाम हैं, आप ज़्यादा से मैसेजेस कमेंट हमें भिजवाइए ताकि हम प्रोग्राम में शामिल कर पाएँ और प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। फेसबुक का पता है www.facebook.com/FM101Lahore। माँ जी भी कहती है अस्सलाम वालेकुम वसीम, ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और खैर मुबारक। कहती हैं कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चिरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। अजब हालात थे यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, समंदर के सफर में इस तरह आवाज दे हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, बजाने किस गली में जिंदगी हो जाए। और कहते हैं हमसे कातिल के खालुखद पूछो, हमसे कातिल के खालुखद पूछो, हमने मक्तल में शब गुजारी है, तुम जो चाहो तो हम पलट जाएं, ये सफर अब भी इख्तियारी है। वाह क्या बात है, तुम जो चाहो तो हम पलट जाएं, ये सफर अब भी इख्तियारी है। सो गई शहर की सभी गलियां, अब मेरे जागने की बारी है, शाम की बेयकीन आंखों में कैफियत सारी इंतजारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया माजबी, थैंक यू वेरी मच। और सैरिश फातिमा ने प्रोग्राम को लाइक किया, उस्मान बिन इमदाद ने प्रोग्राम को लाइक किया है, जन्नत सलीम माजबी और साकिब वदूद ने प्रोग्राम को लाइक किया। उनके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे हमीद गुल साहब ने भी प्रोग्राम को लाइक किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और आप हमें बताइएगा कि आप हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम सुन रही हैं इस्लामाबाद में भी और दूसरे हमारे जो स्टेशंस हैं पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, सियालकोट, जहाँ जहाँ भी FM 101 का नेटवर्क है वहाँ वहाँ पे हमारी आवाज़ जा रही है और आपकी कॉल्स हम तक आ रही हैं। ईद का दिन है जनाब, और ईद के दिन में लोगों को जो है ना, इस ईद के ऊपर जो बच्चे होते हैं ना, वो तो खैर हर ईद पे ही बहुत तैयारी करते हैं, मगर जो बड़े होते हैं उनकी जो तैयारी होती है वो थोड़ी सी महदूद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जानवर वगैरह ख़रीदने होते हैं, उसके लिए उन्हें टाइम नहीं मिलता इतना कि वो वहाँ पे जा सकें और अपनी शॉपिंग कर सकें, मगर फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल करते हैं और मेहमानों की तरह तैयार भी होते हैं और मेहमान बन के जाते भी हैं। और कल का दिन जो होता है वो किन का दिन होता है? कल का दिन जनाब, जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है, मतलब कुछ साल हुए होते हैं, बिल्कुल नई नई शादी होती है, तो उनके मेके जाने का दिन होता है ना, ऐसे ही है ना, खुदा दे ना आज मेके जा लेते ना, कोई घर से लड़ाई ना पा देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, हाँ ये जाएगी, ये अपने माँ बाप के साथ जाएगी, हाँ नहीं इसे रोको, इसे ये करो वो करो, ऐसा नहीं करना। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो कमाल करते हैं, ऐसा होना भी नहीं।

0: क्योंकि पहले दिन उन्होंने आपके घर में रह के बड़ी खुशी मनाई है, अब उसका भी तो हक बनता है अपने घर जाके खुशी मनाने का। क्या ख्याल है आपका? ऐसा ही है ना, ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है जनाब, और देखते हैं कि अगले कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। शरारती बच्ची एक बार फिर आई है बस छोट बात करने के लिए।
0: जी जरूर जरूर कीजिए।
1: अब्दुल हाशमी अंकल आए थे, बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने मुझे इतना शेयर जो है डेडिकेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अनिल आपी को मैं बहुत मिस कर रही थी, अनिल आपी ने तो पट्टा चुप लिया आके। और आपने तो वाकई ही में जो है ना कम चुके रखे हुए हैं, मैंने बड़ी खुशी हुई है। वैसे हाँ वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है भाई कि आपने सुबह का ये जो है इस टाइम आप शायरी का शो करते हैं और आपने इतना फनी मूड के अंदर ये शो कर दिया, सबको खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और हमीद अंकल आए थे, अमीर गुल अंकल, उन्होंने भी बहुत प्यारी शेर जो शायरी पढ़ी ना, मुझे मुस्कुराहट आ गई, मैंने कहा मुझे लग रहा है ये मुझ पे ही बोली जा रही है। मुझे ऐसा लगा, वो बहुत बहुत ही प्यारा बोलते हैं। और जो अभी क्या नाम है फरिया पी आई थी, उन्होंने बोला था ना कि हम क्या नाम है रिवाज गार्डन से जो अंकल आते हैं वो ऊँट का गोश्त ठेला खा गए, तो मैं इनको ये कहूंगी कि देना चाहिए था ना उनको, आप अकेले अकेले खा गए।
0: हाँ, ये तो
1: वो मुझे कह रहे थे कि रिमशा आपको बुलाना चाहिए था, मैं जब भी बुलाऊंगी जब आप फरी आपको ऊँट का गोश्त देंगे।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक
1: है। चलिए ठीक है जी, ओके
0: अल्लाह हाफिज। ओके जी, रिमशा ने खूबसूरत बातें की, ऊँट के गोश्त की भी बात की, कुछ बकरे की बात, बड़ा गोश्त, बड़े का गोश्त। यकीन मानिए ये इतनी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं आम हालात में, और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि साल के अंदर एक दिन यानी ईद का जो मौका आता है, तीन दिन खूब वाफिर मकदार में गोश्त उन लोगों तक भी पहुंचता है जिनकी दस्तरस से ये बाहर हो चुका है। कुछ लोग तो वैसे भी बकरे का गोश्त साल के बाद ही मिलता है ईद पे, वो भी कम ही मिलता है, मगर कभी कभी मिल ही जाता है। मगर ये है कि ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, ब्लेसिंग है कि तमाम लोग जो हैं वो इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ लोग फ्रिजों में भर लेते हैं और कुछ लोग इसको ड्राई भी कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं धूप में, जिनके पास फ्रिज की फैसिलिटी नहीं होती वो इसको ड्राई कर लेते हैं, उसको बाद में पकाते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में मिला के। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है वो बढ़ती रहती है और अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहनी चाहिए, तभी ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, तभी ये त्यौहार भी खूबसूरत लगते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो फिर बहुत लुत्फ आता है। कुछ कलाबाजियाँ हाले हैं। और जनाब हम भी जब छोटे होते थे तो जनाब बिस्तर के ऊपर जब चादर बिछती थी ना, अम्मी जब चादर बिछा देती थी साफ सुथरी बेड के ऊपर, चारपाई के ऊपर, तो हमारा काम क्या होता था कि उसके ऊपर कलाबाजियां लगाना, उन पंजाबी कहते थे उल्टबाजियां लानी ने, बड़ा मजा आता था। और उसके साथ साथ सवैयां भी खा रहे होते थे, सवैयां जो है वो थोड़ी के ऊपर से होते हुए कपड़ों के ऊपर भी आ जाते थे, और हम कहते थे कि हमें अम्मी जी जरा कैंची दे दें, हमने सवैयों को गाड़ना है। खूबसूरत यादें, खूबसूरत बातें, और थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे ईदी जो होती थी, तो मेले ठेले लगते थे घर के आसपास, अब भी लगते हैं, अब सिर्फ मरियल किस्म के घोड़े लेके फिर रहे होते हैं कुछ घोड़ों वाले, उनके ऊपर बैठ के डर लगता है बंदे को कि ये घोड़े बेचारा कहीं गिर के मार ही ना जाए, इतने कमज़ोर घोड़े लेके फिर रहे होते हैं बच्चों के लिए। मगर पहले ये होते थे झूले झूले लगते थे, आसमानी पंगूड़े भी लगते थे, है ना, और गोल घूमने वाले भी झूले होते थे। तो अब तो प्ले लैंड में जाना पड़ता है, बड़ी दूर दूर जाके ज्यादा से ज्यादा पैसे देके झूले लेने पड़ते हैं। मगर पुराने जमाने में या कुछ अर्सा पहले तक के जमाने में हम ये हमारे इर्द गिर्द के इलाकों में इस तरह के मेले ठेले लगते थे ईद के ऊपर, सर्कस भी लगती थी, सर्कस के साथ एक जादू का एक वो एक स्टॉल होता था जिसके बाहर ना वो एक चुड़ैल की सर की फोटो लगी होती थी, उसका सर जो होता था वो बकरी के सर के आगे लगा होता था। एक वाटर टैप होता था जो नीचे से कटा होता था, यानी पानी का नलका जो होता था वो बगैर वो नीचे से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता था, मगर उसमें से पानी गिर रहा होता था। इसी तरह से हॉरर हाउस भी बने होते हैं, अभी बने होते हैं। तो एक दफ़ा मैं हॉरर हाउस में घुस गया, मैंने कहा चले देखे तो सही बच्चों के साथ मैं भी जाके देखूँ इसके अंदर क्या लोग इतनी चीखें क्यों मार रहे हैं। यकीन माने वो इतना खतरनाक हॉरर हाउस था कि एक बंदा ना थोड़ी सी जगह उसने छोड़ी और एक बड़ा सा खंजर लेके ना वो लोगों की तरफ हमलावर होना शुरू हो गया, लोगों को डराना शुरू हो गया। तो इतना कम फासला था कि लोगों के मुंह से वाकई चीखे निकल रही थी, और थोड़ी सी चीखे निकालने के बाद ना वो पिछली तरफ से लोगों को बाहर निकाल रहा था ताकि ये अगली तरफ से निकल के लोगों को बता ना दे के ना ना ना ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फजूल है। फिर क्या है, फन तो है ना। तो फन जो होता है ये अपनी जगह पे मौजूद होता है, यानी मजा जो होता है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है। इसको इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा हौसला चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट चाहिए, थोड़ा सा अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, फिर आप सभी चीज़ों को इंजॉय करते हैं। कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, उनको भी हम बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त होते हैं, पुराने ज़माने के दोस्त होते हैं, मुलाकात हुए अरसा हो चुका होता है, मगर कभी आपको काम पड़ता है तो आपके भरपूर तरीके से काम आते हैं। इसी को कहते हैं कि दोस्ती होती है, यही दोस्ती रंग लाती है और यही दोस्ती यादगार हो जाती है। और जब ईद के मौके पे हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से मिलते हैं, तो ईद का लुत्फ दुबाला हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपकी दीद हो गई, हमारी ईद हो गई। कौन है हमारे साथ, किसने मुझे कॉल किया है? हेलो
2: भाई, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन?
2: मैं लतीफ मुगल बोल रहा हूँ।
0: लतीफ
2: कैसी मुगल?
0: आपकी आवाज नहीं सही आ रही।
2: लतीफ मुगल बोल रहा
0: हूँ जी। जी लतीफ मुगल जी, कैंची, अभी मैंने सवैयों को काटने के लिए कैंची का जिक्र किया था। कहिए कैसे आप लतीफ मुगल साहब?
2: मैं कहता हूँ, मैंने नमाज पढ़ने के लिए उठा हूँ तो वजू के बाद मैं तो पहले प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: चले चले,
2: आपका प्रोग्राम बेटा मैं सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रही है। ये अभी परी आपकी आई थी तो वो बोझी जाट का भतीजा बहुत हुआ है, हमें उनसे बहुत अफसोस है। अल्लाह तआला उनकी मदद करे,
0: आमीन।
2: तो मैं शमदीप बाबू के एडमिन बोल रहा
0: हूँ।
2: ये फरी अभी जो हमारी ये औरतों की कंपनी को बनाया हुआ है, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत मजा आ रहा है आपका प्रोग्राम सुन के। मैं अक्सर रोता हूँ जब मुझे कभी जाग आ जाए रात को, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत मजा आता है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए।
2: ये ईद गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है, क्योंकि हमारे एक दोस्त है अहमद रजा चौधरी साहब, ये शमशी काम पर है, उन्होंने शमशी काम पाया था, हमने काफी दोस्तों ने शुरू की है, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, तो भाई इस वक्त बहुत मजा आ रहा है, ये हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है।
0: चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ओके जी, आपका सलाम सारे सुनने वाले तक पहुंच गया। 111-000-101-0011-0001-0001 साठा टेलीफोन नंबर। हेलो,
1: मुझे आता है टेलीफोन नंबर, कहते तो मैं बता देती हूँ। 111-000
0: 111-0001-0001-0000-000
1: बड़ा छोटे गोश्त की जगह खा रहे थे, ये बड़ा छोटा तारक किधर है?
0: तारक वड्डा गोश्त खा के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल उठ के ना गुट हो के सो गया बिल्कुल।
1: वो आके कहते थे मैं छोटा छोटा तारक भाई जी और बड़े तारक भाई जी, और कितने गए हो? मैंने लाने बोटी मिठाई से मैंने खीरा खा लिया,
0: इन्होंने डियारियां पका के खा ली है,
1: बहुत मजा आ रहा है, बड़ी जबरदस्त रौनक लगी है, आप सॉन्ग प्ले किए, वाह वाह वाह वाह, अच्छी रौनक लगी।
0: जागो उठो।
1: चले जी, जिंदाबाद,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हो गए जी, अनिला जी एक दफा फिर आई, رونق لگا کے گئی ہیں. بہت شکریہ نیلا جی, آپ جب آتی ہیں تو رونق لگ جاتی ہے. اور عثمان بن امداد کہتے ہیں کہ جدہ سے سن رہا ہوں آپ کو اور دا پروگرام از آسم بھائی, گاڈ بلیس یو آلویز, تھینک یو ویری مچ. عثمان بن امداد آپ کا اتنی دور سے ہمارے پروگرام کو سننے کا بہت شکریہ, اور آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. آپ کے کمنٹ کرنے کا بھی بہت شکریہ, یعنی میسج کرنے کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں تمام سننے والوں کو سلام. اس وقت آپ کو سننے کے لیے ہم جاگتے رہتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہلو, او ہو, اچھا بس کافی ہے, میں کال بند کر دوں گا.
2: بند کر کے دیکھو جناب,
0: کیا بات ہے محمد شہزاد
2: جی, کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک
0: شکر اللہ تعالیٰ. محمد شہزاد آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں,
2: آپ کی دعائیں. دیکھیں جی ہمیں کیسے نیند آئے گی, ویسے میں بڑی دیر سے ملا رہا ہوں, ہمارے سارے بہن بھائی جاگ رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے, تو ہمیں کیسے نیند آئے گی.
0: بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
2: ماشاء اللہ رونق لگائی ہے, کیا بات ہے, دل خوش ہو گیا اور عید کا پروگرام بیسٹ ہو گیا جی.
0: کیا بات ہے میرے پرادی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یادگار عید کون سی تھی, آج کی ہے یا اس سے پہلے کوئی اچھی زبردست عید آپ کی گزری جو آپ کی یادگار عید ہے؟
2: میرے ساتھ جو بچپن میں عید گزری ہے نا وہ آپ کو بتا دی نا, آپ سوچے گا یہ کیا ہوا ہے. بچپن میں ہم نانکے گئے تو ان کا بکرا پالا ہوا تھا, تو میرے تھوڑا سا نا مجھ سے تھوڑا سا بڑے تھے, 2 سال بڑے ماموں میرے, میں چھوٹے چھوٹے تھے بچے تھے نا, وہ ہم نے بکرا آرام سے کھولا اور باہر نکل گئے. اس کو نا ایک آدمی بولتا ہے یہ بیچنا ہے, میں کیا ہو جی بیچنا ہے, پیسے وٹ کے جاواں گے. لو جی جناب جی سان کی پتا ہوگی کنے کا بکرا تو کنے کا نہیں, وہ 5 روپے کا اسی بکرا ویچتا.
0: 5 روپے کا؟ اچھا کیا بات ہے,
2: بکرا ویچیا وہ دوڑا لگ گیا جی, بکرا لبیا تو نہ ہی وہ بندہ لبیا, تو فینٹی چگی پی بچپن عید دیا یادا ویکو نا بکرا ویچتا 5 روپے.
0: مطلب پہ دن چڑھ گیا ہونا ہے نا, خطرناک بچے, خطرناک بچے. بہت شکریہ محمد شہزاد, بڑی مہربانی.
2: جس نے مار رہی ہے نا پھر نہ چاہ نہ پانی نہ کیک نہ راستے, بس وہی بس.
0: اوکے اوکے, اللہ حافظ, اللہ بڑی مہربانی, اللہ حافظ. محمد عمران فرام شیخو پورہ, وسیم بھائی عید مبارک. محمد عمران فرام شیخو پورہ جی, وعلیکم السلام, دے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. نائس شو, آل مسلمز عید مبارک. پلیز پلے ٹریک ایک تے فراری ساڈی. اوکے, کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے اگلے پروگرام میں یہ گانا میں اگر ہو سکا تو میں آپ کو سنا دوں. آپ کا بہت شکریہ محمد عمران کہ آپ شیخو پورہ میں ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں اور آپ نے ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے. ایس ایم ایس کرنے پہ تھوڑے سے پیسے بھی لگتے ہیں آپ کے, تو آپ کا بہت شکریہ. عبد النور ہاشمی رواز گارڈن لاہور سے, اور احمد رشدی کا گانا پلے کر دیں, کوکو کرینا کوکو کرینا. اوکے جی, بڑی مہربانی عبد النور ہاشمی, میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کسی اگلے پروگرام میں آپ کی پسند کا گانا ضرور شامل کریں. 1111001 از دا نمبر ٹو ڈائل. فیس بک کا پتا ہے www.facebook.com/fm101. لاہور نے تو کیا جمیا نہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کالز کر سکتے ہیں और कॉल्स के साथ साथ आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं और अपने खूबसूरत से कमेंट्स वहाँ पे भिजवा सकते हैं और हम उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे तो प्रोग्राम और खूबसूरत हो जाएगा। रात का ये खूबसूरत पहर, बल्कि अब तो सुबह का खूबसूरत पहर हम कह देंगे, 3:35 हो चुके हैं, 4 बजे तक मेरा आपका साथ है, आपकी कॉल्स को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ईद के हवाले से बातचीत हो रही है, आप जिनके आपकी दीद है तो हमारी ईद है, आप जिसके पास हैं उन्हीं की तो ईद है। हेलो, ओके ओके ओके ओके, आए भी और चले भी गए। एनीवेज आपके नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, आपके टेलीफोन कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं और कभी कभी नंबर कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है, फिर भी एनीवेज प्रोग्राम को आप एंजॉय करते रहिए। और ईद का दूसरा दिन जो है उसके क्या प्लान्स हैं उसके बारे भी तो कुछ बताइएगा, देखते हैं कि कॉलर क्या कहते हैं। हेलो,
3: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तीसरी दफा मैं बात सुन रहा हूँ, तीसरी कॉल आप माशाल्लाह से जीती रही है, जीती
3: रही है, पता ही बंदा मिलती नहीं वसीम, वसीम से बात करने के लिए तो हम तरसते रहते, इतना गंदा टाइम कर दिया आपका भाई,
0: बहुत शुक्रिया।
3: कुछ तब्दीली का है, कुछ उम्मीद है वापस आएंगे,
0: उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद
3: ये तो है।
0: बस आप दुआएं करती रहिए, हम उम्मीद लगा के रखते हैं इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा,
3: अल्लाह करे जी, हम तो बहुत दुआएं करते हैं भाई अपने प्यारे से वसीम भाई के लिए और सारी फैमिली के लिए, आपके अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखे,
0: आमीन।
3: अच्छे अच्छे रहे, अच्छे अच्छे लोग आ रहे थे, सुन के मजा आता है।
0: आप बताए ना आपकी यादगार ईद कौन सी थी?
3: वैसे यादगार ईद तो अगर देखा जाए तो सभी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक थी। हाँ, एक ईद पे मेरा ऐसा हुआ था कि मेरी एक बहुत करीबी रिश्तेदार थी मेरी, और बहुत लविंग और बहुत ही अच्छी थी ना, बहुत ज़्यादा, कोई भी आता था ऐसा इवेंट आए या ऐसा मौका कोई भी हो तो बहुत जोर शोर से बड़ी खुशी से मनाती थी उसको, सबको बुला के अपने घर रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को, बाकायदा बहुत खुश होती थी। और इतफाक ऐसा हुआ वसीम के ऐन बकरीद के दिन पर, जब बिल्कुल कुर्बानी की तैयारी हो रही थी, खबर आई कि उनकी डेथ हो गई, बेचारी आगा खान में थी वो एडमिट, और वो खबर आई कि उनकी डेथ हो गई। आप यकीन करें इतनी अजीब सी खलबली मच गई ना कि सब बकरे वकरे रखे तैयारी के लिए, बिल्कुल वो कसाब भी आ गए थे सब, और जनाब ऐसा हुआ, लेकिन खैर जाने वाले तो भागे, हम लोग सभी गए वो, लेकिन कुर्बानी का तो होना ही था, वो तो लाजमी बात है, लाजमी थी, कुर्बानी भी होती हुई यकीनी तौर पे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि किसका गोश्त गया, कहाँ गया, किधर गया, क्या हुआ,
0: हाँ, वो सारा वो
3: बहुत खबर
0: आ गई ना, डिस्टर्ब हो गया
3: बस एकदम, बस बहुत बिचारी होंगी, वो मुझे आज तक याद है, बाकी तो अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि खैरियत से गुजर जाती है, लोगों की खुशियों में खुश हो लेते हैं, हम भी कुछ अपनी बांट देते हैं, कुछ या कुछ ले लेते हैं दूसरों से।
0: अच्छा ये बताइए कि छोटी ईद पे तो खवातीन बहुत ज्यादा तैयारी करती हैं, तो क्या बड़ी ईद पे भी खवातीन बहुत ज्यादा तैयारी करती हैं?
3: वो वसीम असल में मेरे ख्याल में खवातीन की फटीक तो इसी ईद पे ज्यादा होती है भैया, इस कदर सारा दिन हो जाता है ना, गोश्त वोश ये वो देखभाल, अंदर बाहर गंदे पैर वो खून के सब अंदर भी आ रहे हैं और जा रहे हैं,
0: मगर इसके बावजूद ब्यूटी पार्लर वालों के खूब पैसे बनते हैं, क्या ख्याल है?
3: पता नहीं वसीम, मैं तो जिंदगी में आज तक नहीं गई भाई यकीन करे मैंने आज तक कभी
0: सारी गल ही गोल ही कर दी।
3: हाँ जी, अब मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि 2-2 बजे तक मेहंदी लगाने बैठी रहती है, अल्लाह मियाँ भाई कहाँ का स्टेमिना है, मुझे तो मुझे कभी शौक ही नहीं रहा ना मेहंदी का ना चूड़ियों वूड़ियों का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
0: अच्छा,
3: मुझे
0: अच्छा।
3: नहीं शौक बिल्कुल भी,
0: अच्छा,
3: तो मेरी तो ईद बड़े आराम से वो कहा तो कपड़ा बना लिया, और नहीं तो वो जो रखे हुए उन्हीं में से कोई पहन लिया, क्या फर्क पड़ता है,
0: ग्रेट ग्रेट जबरदस्त,
3: लोग आते जा रहे हैं उनकी खुशियों में शरीक हो गए, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि प्यारे प्यारे लोग आ जाते हैं, जरा थोड़ा सा दिल में शायद मैल रखते होंगे, वो भी मुंह दिखाई के लिए आ जाते हैं कि चलो भाई
0: सही बात है। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, खवातीन के वाले से बात हो रही है तो ईद वाले दिन आप कौन सा सालन जो है वो मतलब गोश्त से बनता है आपके घर में?
3: हमारे यहाँ वसीम तो कलेजी बहुत खाते हैं शौक से सब ना, कि कलेजी बने, और कलेजी के बाद फिर ये है कि बिरयानी बहुत लाजमी है, कोरमा भी बड़ा लाजमी है, आजकल वो दूसरी सिस्टम आ गए, वो पता नहीं क्या कहते हैं वो
0: पुलाव
3: गोश्त और वो कढ़ाई गोश्त, तो पता नहीं कौन कौन सा गोश्त।
0: अच्छा एक एक गोश्त होता है जिसे कहते हैं भुना हुआ गोश्त,
3: ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਗੋਸ਼
0: ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ बुनावा गोश्त होता है ना उसके एक अलग ही टेस्ट होता है और साथ खमीरी खमीरी रोटियां होती हैं तो वो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो भी बनाते हैं और साथ कढ़ाई गोश्त बनता है ज्यादा।
3: अच्छा
0: हमारे यहाँ ये वाला तो नहीं जो आप बता रहे हैं ये पंजाब का है खासतौर
3: पर हमारे यहाँ वो जरूर बनता है वो नमकीन गोश्त जिसको कहते हैं सिर्फ नमक डाल के उसको बनाया जाता है।
0: हाँ जी नमकीन गोश्त
3: हमारी बड़ी खावतीन जो है बुजुर्गों ज्यादा इसको
0: तो आज आपने नमकीन गोश्त बनाया मेरा ख्याल है ना।
3: मैंने कुछ भी नहीं बनाया वसीम यकीन करे कुछ भी नहीं बनाया
0: यकीन करे परवीन आसिफ मुझसे कसम ले ले मैं आपसे कुछ नहीं खाऊंगा आप बता दे आपने क्या बनाया।
3: मैं आपको 10 बात बता देती थी बड़ा चढ़ा के सच्ची बात है वो ये कि मैंने ना कुछ बनाया ना कुछ खाया सच्ची बात
0: वो एक वो गाना मैं लगाता होता हूँ पंजाबी प्रोग्राम में लोको वे लोको इस मुंडे नू रोको ठीक है ना तो उसमें रंगीले की आवाज है तो वो कहती है वे परा इनू रोकी जरा वो आगे से कहता है खबरदार मेनू परा ना आखी कुड़िए आपने मुझे कह दिया खबरदार गोश का नाम ना लेना है ना।
3: नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हमारी वसीम तो बहुत प्यारे भाई हमें वसीम की हर बात अच्छी लगती है
0: आप बहुत अच्छी है जीती रहिए और मुझे बड़ा मजा आया मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैंने पहले भी रहमान के प्रोग्राम में आपकी दो कॉल्स आई थी मैंने वो भी सुनी मुझे लग रहा है कि मैं वो कॉल्स भी मुझे ही आई थी और ये भी मुझे आई है ठीक है
3: यकीनन यकीनन। अच्छा दूसरी मैंने बहुत मजबूरन की और खुदा का शुक्र है कि मिल गई थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मैंने मोबाइल पे ही पढ़ी कि वो इस दफ़ा 9 तारीख को हज के अरफे के दिन 577 अमवात हुई हैं या शहादतें कह लें जो भी कह लें तो मैं रहमान से बात कर रही थी वो वहाँ से किसी ने ना मैसेज करके बताया कि नहीं ये गलत बात है ये 2 साल पहले हुआ था इस दफ़ा नहीं हुआ है तो आप लोग उसमें देख के ना मत यकीन कर लिया करें बातें मोबाइल में तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी खबर और गलत आई और मैंने उसको।
0: अच्छा मैंने वैसे सुना नहीं मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था मुझे आपकी कॉल का बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ था तो हल्की सी मुझे आवाज आई थी आपके बोलने की तो मुझे पता नहीं है कि वो सब्जेक्ट क्या था। एनीवेज बहुत शुक्रिया आपका
3: मुझे भी बहुत खुशी
0: थैंक यू वेरी
3: मच बात होती आपकी सारी पूरी फैमिली को माशाल्लाह और सारे सुनने वालों को
0: बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज ओके जी आपको भी ईद मुबारक। दिन जो है वो सफेदी जो है वो हल्की हल्की आसमान पे मौजूद होगी ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका आज भी माशाल्लाह से ढेर सारी कुर्बानियाँ होंगी जिन लोगों ने कल नहीं की वो आज करेंगे और कल भी करेंगे तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो डीप फ्रीज़र्स हैं या फ्रिज के फ्रीज़र हैं सिर्फ वहीं तक गोश्त महदूद नहीं होना चाहिए और वैसे आमतौर पे होता भी नहीं है ये सिर्फ हंसने के लिए मजाक करने के लिए लोग बात करते हैं मगर कुछ लोग इसको सीरियस भी ले लेते हैं वो सेव कर लेते हैं मगर ये कि जो आपका हिस्सा बनता है उसकी बात तो ठीक है जो जिसका हिस्सा बनता है उस तक जरूर पहुंचना चाहिए। 343 ऑन द डायल मशीन दिस इज योर आरजे वसीम अहमद और इंटरनेशनल प्रोग्राम आप सुन रही हैं गुंजे शौक। ईद के हवाले से आज के प्रोग्राम में एंटायरली डिफरेंट प्रोग्राम है कुछ हंस रही हैं कुछ मुस्कुरा रही हैं कुछ आपके खूबसूरत से मैसेजेस और आपकी खूबसूरत सी कॉल्स भी हम तक पहुंच रही हैं और देखते हैं कि फेसबुक के ऊपर हमीद गुल साहब मौजूद हैं फैसल अब्बास ने प्रोग्राम को लाइक किया है। फैसल अब्बास आपको एक कमेंट भी करते तो बहुत अच्छा लगता सैरज फातिमा ने प्रोग्राम को ऑफ कोर्स लाइक किया है और उस्मान बिन इमदाद ने प्रोग्राम को लाइक किया है। जन्नत सलीम का भी कमेंट कोई नहीं पहुंचा महजबी का कमेंट हम तक पहुंचा साकिब वदूद साहब का कमेंट भी नहीं हम तक पहुंचा कभी कभी ये डिले हो जाते हैं डाउनलोड होने में तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं चला जाता हूँ तो बाद में ये मैसेजेस जो होते हैं वो हम तक पहुँचती हैं आपके कमेंट हम तक पहुँचती हैं तो इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कुछ और लोग भी शामिल हैं कैसरा लाहौर से तमाम सुनने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त और हम आपको वेलकम कहते हैं हमारी ईद यादगार हो जाती है जब 101 FM के साथ गुजरती है वाह वाह वाह बहुत अच्छे जी बहुत शुक्रिया आपका 101 FM के साथ आपकी जब ईद गुजरती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब फौजिया लाहौर से। तमाम सुनने वालों को सलाम, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल हो। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। ईद की बहुत सारी मुबारकबाद आपको भी मिले, आपको भी पहुँचे। और यादगार ईद वही होती है जिसमें जो ज़रूरी फ़राइज़ हैं वो पूरे हो जाएं, और उसके साथ साथ हमारी तरफ से यकीन मानिए ज़िंदगी का कोई भी लम्हा हो, कोई भी ज़माना हो, उसमें हमारी तरफ से अगर लोगों तक मोहब्बत पहुंचती रहे, हमारा पैगाम मोहब्बत का पैगाम उन तक पहुंचता रहे, हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें, हम लोगों के काम आ सकें, किसी के दुख दर्द में शामिल हो सकें, किसी के दुख दर्द को कम कर सकें, किसी की उदासी को दूर कर सकें, किसी बच्चे की हेल्प कर सकें, किसी बूढ़े की हेल्प कर सकें, चाहे वो माली इमदाद हो या आप उसको पढ़ा सकते हैं बच्चे को, उसको एजुकेशन में आपकी ज़रूरत है, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप वो दे सकते हैं। और इसी तरह से किसी भी तरह की मदद अगर हम करते हैं किसी की, एक दूसरे के काम आते हैं, तो यकीन मानिए वो भी ईद का समा ही होता है, जब हमारा दिल खुश होता है। और जब किसी का दिल खुश होता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि दिलों में तो रब जो है ना वो बसता है, तो जब किसी का दिल खुश होता है तो रब खुश होता है, और जब रब खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, तो फिर बाकी क्या चाहिए, बाकी तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए, फिर तो सब कुछ खुश हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। ज़रूरत इस बात की है कि हम बढ़ते रहें, हाथों में हाथ लेके बढ़ते रहें, ईद की खुशियों को अपने तक महदूद मत रखें, दूसरों तक पहुंचाएं, खुशियों में लोगों को हिस्सा दें, अपनी मुस्कुराहटों में हिस्सा दें, साथ चलने में साथ लेके चलें। किसी भी तरह से अगर हम खुशियां बांट सकते हैं तो यकीन मानिए खुशियां बांटते चले जाइए, वो मल्टीप्लाई होती जाती है, और हम जो देते हैं ना वही कुदरत हमें वापस दे देती है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वो पलट के वापस आ जाता है, और अगर हम खुशियां बांटते हैं तो खुशियां पलट के वापस आ जाती हैं। तो क्यों ना सिर्फ खुशियां ही बांटी जाए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिल में रखी जाए और मोहब्बत ही बांटी जाए। फॉर्मूला एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, मैं आपका मेज़बान वसीम अहमद आपके साथ, और ये जनाब प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आप अभी भी कॉल कर सकते हैं 0420100101 हमारा टेलीफोन नंबर है, और आप के मैसेजेस आपकी कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुबशर अहमद कसूर से, और इन्होंने कहा कि जी प्रोग्राम खूबसूरत, आपका आना बहुत अच्छा लगा, और यकीन मानिए कि रात का वक्त नहीं लग रहा, यानी सुबह का वक्त नहीं लग रहा, बल्कि बहुत ही पुर रौनक जो प्रोग्राम है आपका, उसने हमारे दिल को खुश कर दिया है। तो बहुत शुक्रिया मुबशर आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सुनते रहिए वर्मन एफ एम पाकिस्तान अपने आरजे वसीम अहमद के साथ, प्रोग्राम गुंजा शौक ईद स्पेशल, ऑफ कोर्स ईद स्पेशल।

कि उस्मान बिन इमदाद हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर इन्होंने अपने कमेंट भेजा है। इन्होंने कहा कि जी आपको बहुत सुनता हूँ और आपका प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है, आज आपने न्यू स्टाइल में बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी कि फास्ट मूड का शो भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे, किया कर सकते हैं। अरे भाई आप उस्मान बिन इमदाद आपने सुना नहीं है वरना आपकी पसंद जैसी होती है हम वैसे ही उसी ही रूप में आ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान बिन इमदाद प्रेम को लाइक करने के लिए और प्रेम को पसंद करने के लिए, प्रेम को स्टाइल को पसंद करने के लिए। ईद है तो ईद के मौके पे हम फास्ट फास्ट ही बात करेंगे ना, हैरा क्या ख्याल है आपका, फास्ट फास्ट ही बात करनी चाहिए ना, खुशी खुशी वाली बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम को लाइक करने के लिए, प्रेम को पसंद करने के लिए। और इसी तरह से हमारे प्रेम में उस्मान बिन इमदाद जद्दा से प्रोग्राम में शामिल हुए और अभी हमने उस्मान बिन इमदाद का ही मैसेज पढ़ा था। हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। फैसल अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, वेलकम टू द शो, आई एम फ्रॉम, मतलब लाहौर से ये हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं फैसल अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और प्रोग्राम को लाइक करने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। हमीद गुल साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर हमें भेजा है, वो कहते हैं कि वो भी मिलता जो गले से तो खुशी ईद की थी, वो भी मिलता तो गल वो भी मिलता जो गले से तो खुशी ईद की थी, कोई रह रह के नसीर आज बहुत याद आया, कोई रह रह के नसीर आज बहुत याद आया। वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन और डियर लिस्टनर्स प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत सारी दुआएं और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा और हम आपको दिल की गहराइयों से प्रोग्राम में वेलकम भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कल के प्रोग्राम्स को भी ज़रूर सुनेंगे। कल मैं तो नहीं आऊँगा मगर हमारे दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो आपके लिए प्रोग्राम लेके आएंगे। ईद उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं, जो पिछड़ गए हैं उनकी बातें उदास करती हैं। ना हाथ मिलाया ना गले मिले, ना हाथ मिलाया ना गले मिले, ना मयसर तुम्हारी दीद हुई, अब तुम ही बताओ ये क्यामत हुई या ईद हुई। वरुण एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, ईद की बहुत सारी मुबारकबाद एक दफा फिर कबूल कीजिए और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पंजाबी के शो में ज़रूर सुनिएगा पीर की दोपहर 1 बजे, हंसते मुस्कुराते हुए हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे। तुम्हारे आने से ईद होगी कि मुस्कुराने से ईद होगी, तुम्हें ही देखूँ मैं आज हर पल इसी बहाने से ईद होगी, बुला लो सबको मगर तुम्हारी मुझे बुलाने से ईद होगी। बुला लीजिए उन लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ईद मिलने चले जाइए, क्या ख्याल, या बुला लीजिए ईद मिलने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ अगले प्रोग्राम तक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به